मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: रामपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news.
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर बाद। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देवव्रत जोशी की रचना समूह स्वर में।

अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में खयाम का संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी का लिखा ये भजन।

कविता पौडवाल की आवाज में सुनते हैं ये भक्ति रचना। गीत बलबीर निर्दोष का है, संगीत श्याम सुरिंदर और सुरिंदर सोढ़ी का है।

0: समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्री भाव सिंह हिरवानी का है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी युग पुरुष थे। उनके जीवन आदर्श का अनुसरण विश्व के सारे देशों में किया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा यूं ही नहीं मिला, उन्होंने अपना सारा जीवन हम भारतवासियों के लिए न्यौछावर कर दिया। इस संसार में महात्मा गांधी ऐसे अकेले राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने जिंदगी भर सत्य और अहिंसा व्रत का पालन किया। इसीलिए लोगों ने उन्हें नेता नहीं बल्कि महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया। इस फकीर की झोली में इंसान के लिए ही नहीं वरन समस्त प्राणियों के लिए प्रेम, दया, करुणा और ममता का अकूत भंडार भरा हुआ था, जिसे वे जिंदगी भर लुटाते रहे पर कभी खत्म नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी सचमुच अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा के बिल्कुल अंत में लिखा है, सत्य से भिन्न किसी परमेश्वर के होने का अनुभव मुझे नहीं हुआ है। सत्यमय होने के लिए अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ बहुत व्यापक है। हमारे कर्म के अतिरिक्त मन वचन से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी के हृदय में हर जीवधारी के लिए दया का भाव था, इसीलिए वे हिंसा के सख्त विरोधी थे। और ये मानवीय सद्गुण उन्हें माता पिता से विरासत में मिला था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी स्वभाव से सदचरित्र, कुटुंब प्रेमी, सत्यवादी, साहसी और उदार थे। माता पुतलीबाई भी धर्मपरायण, सदाचार निष्ठ और बुद्धिमान थी। गांधी जी जब वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाने लगे तब उनकी माता ने गांधी जी को 3 प्रतिज्ञाएं कराई थी। मैं मदिरा, मांस और स्त्री संघ से दूर रहूंगा। इसका कारण था, उस वक्त जो युवक विलायत जाते थे वे सुरा सुंदरी और मांसाहार में लीन हो जाते थे। मगर गांधी जी ने इंग्लैंड में रहते हुए प्राण प्रण से अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। गांधी जी का संपूर्ण जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण रहा है। वे सादा वस्त्र पहनते थे और मिर्च मसाले से रहित सादा भोजन करते थे। मांस, मछली, अंडा और हर प्रकार के नशे से दूर रहते थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे हद दर्जे के मितव्ययी थे। माचिस की तिली भी गिनकर उपयोग किया करते थे। उन्हें उपलब्ध संसाधनों की फिजूल खर्ची कतई गवारा नहीं थी। इसके कई उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। एक बार वे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आनंद भवन में ठहरे हुए थे। सवेरे सोकर उठे और एक लोटा पानी लेकर कुल्ला करने गए। बातों ही बातों में पानी खत्म हो गया तो वे जवाहरलाल से बोले, जवाहर, असावधानीवश पानी खत्म हो गया और मैं ठीक से मुंह भी नहीं धो पाया। जवाब में नेहरू जी ने कहा, कोई बात नहीं बापू, जमुना में पानी की कमी नहीं है। तब गांधी जी बोले, सो तो ठीक है जवाहर, पर जमुना के पानी पर मेरा ही नहीं लाखों लोगों का अधिकार है। ऐसे सजग मितव्ययी थे महात्मा गांधी। गांधी जी जीवन भर अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। दूसरों की गलती पर खुद को सजा देने की प्रवृत्ति के कारण ही वे मानव से महामानव हो गए। उनके इस अनोखे स्वभाव के कारण ही साबरमती आश्रम में रहने वाले भाई बहन गांधी जी की तरह ही अनुशासित और मितव्ययी थे, जिसका परिणाम था कि उनके आश्रम में कभी घाटा नहीं पड़ता था बल्कि बचत ही रहती थी। गांधी जी ने जातिगत भावना को मिटाने के लिए आंदोलन चलाया और इन सबसे ऊपर उठकर मानव सेवा को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया। एक बार वे सवेरे सैर करके लौटे तो देखा कि एक कुष्ठ रोगी आश्रम के बाहर पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए गांधी जी से कहा, मैं आपके पास शांतिपूर्वक मरने आया हूं, आपके सानिध्य में मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। गांधी जी ने बिना देर किए अपने बराबर की कोठी में उसे आश्रय दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसके घाव धोए, मवाद साफ किया और दवा लगाई। अंत तक रोगी वहीं रहा और परम शांति के साथ उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। महात्मा गांधी जी का आदर्श अद्वितीय है, हमें उनके प्रकाश पुंज जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।
0: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्री भाव सिंह हिरवानी।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्री राम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्री राम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्री राम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में गायन स्वर सुरेश वाडकर का था। आकाशवाणी की संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं आगामी खरीफ फसल हेतु हरी खाद का महत्व विषय पर डॉक्टर राकेश वनवासी की ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, खरीफ का फसल हमको लेना है। खरीफ की फसल के लिए हमारे प्रमुख फसल धान है, तो हम देखते हैं कि धान की खेती के लिए हम किस प्रकार से अपने खेतों में हरी खाद का उपयोग करते हुए पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरी खाद है क्या। हरी फसलों को ही खेत में मिला देना हरी खाद देना कहलाता है, लेकिन हम हर फसल को हरी खाद के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी फसलें जो अपनी जड़ों में नत्रजन का स्थिरीकरण करती हैं और उनको जमीन में मिलाए जाने पर शीघ्र अपघटित होकर के भूमि में नत्रजन की मात्रा बढ़ाती हैं और आने वाली फसल के लिए लाभदायक होती हैं, ऐसी फसलों को हरी खाद की फसल कहा जाता है। धान की खेती में यदि हम बात करें, हरी खाद का उपयोग करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि धान की खेती में हम विशेष करके रोपा विधि में खेतों में पानी भरकर रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हरी खाद की फसल को सड़ने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है और आसानी से उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो धान की भूमि को अधिक मात्रा में जीवांश पदार्थ प्रदान करती हैं और नत्रजन प्रदान करती हैं। हरी खाद के कई लाभ हैं, जैसे यह मृदा में कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि करती है, मृदा में कई प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि करती है, भूमि के सूक्ष्म जैविक और भौतिक गुणों में वृद्धि करती है, नत्रजन की पूर्ति के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक है। इसके उपयोग से हम रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की मात्रा में भी कमी कर सकते हैं। तो ऐसी तेजी से बढ़ने वाली दलहनी फसलें जो भूमि में अपनी जड़ों में नोड्यूल बनाकर नत्रजन स्थिर करती हैं और इनको यदि हम फूल आने से पहले यानी उनके नर्म अवस्था में ही भूमि में मिला दें तो वो अपघटित होकर के हमारी फसलों को लाभ प्रदान करती हैं। कई फसलें हैं, विशेष करके सनई या सनहिंग, ढेंचा, मूंग, लोबिया, उड़द, ये सभी फसलें हरी खाद की फसल के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। खरीफ की फसल में यदि हम देखें तो सन और ढेंचा ये दो इतनी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनका हरी खाद के रूप में उपयोग करके हम अधिकतम लाभ ले सकते हैं। सामान्य तौर पे मई और जून में इसे खेतों में लगाया जाता है, ऐसे खेतों में जिसमें हमें धान की फसल लेनी है, और लगभग 40 से 45 दिन की फसल जब हो जाती है तो इसे काट करके जिस खेत में हम लगा रहे हैं या तो उसी खेत में इसे मिला दिया जाता है, या चाहें तो हम एक जगह इसकी खेती करके और किसी दूसरे धान की खेती में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी काट के वहां पर ले जा करके और उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। सन या सनई या सनहिंग जिसे कहते हैं, ये हरी खाद की फसल को लगाने के लिए लगभग 20 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से हम लगा सकते हैं। इसको लगाने से हमें लगभग प्रति एकड़ 6 से 7 टन जो है हरा पदार्थ प्राप्त होता है या जीवांश पदार्थ जिसे हम कहते हैं, और यह लगभग एक एकड़ के पीछे 30 से 35 किलोग्राम तक नत्रजन फसलों को प्रदान करती है। ढेंचा भी एक बड़ा ही लोकप्रिय फसल है जो हरी खाद के रूप में काम में लाया जाता है। इसको भी हम मई जून के आसपास खेतों में लगा सकते हैं और जिन खेतों में पानी भरा होता है, जिन खेतों में हम रोपा विधि का प्रयोग करते हैं, उन खेतों में इसे लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए ढेंचा की लगभग 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज हम उपयोग में ला सकते हैं। इसको जब 40 से 45 दिन का पौधा हो जाता है तब इसको काट करके खेत में मिला देते हैं। इससे लगभग 8 टन प्रति एकड़ के आसपास की हमको हरे पदार्थ की मात्रा मिल जाती है। साथ ही यह 35 से लेकर 40 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति एकड़ स्थिर करता है। इसके अलावा मूंग और लोबिया भी प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन सनहेम और ढेंचा अधिक लाभदायक हरी खाद की फसलें हैं। सामान्य तौर पर जब हम हरी खाद की फसल अपने खेत में लेते हैं तो इन्हें अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए हरी खाद बोने के समय लगभग 20 किलोग्राम नत्रजन एवं 40 से 50 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस देना चाहिए। यदि हम हरी खाद की फसल में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस दे रहे हैं तो हमें इसके बाद ले जाने वाली जो फसल है, धान की फसल है, उसमें स्फूर डालने की आवश्यकता प्रायः नहीं पड़ती है, क्योंकि स्फूर खेत में फिक्स भी होता है, जमा होता है, और हरी खाद की फसल से जो अवशोषित स्फूर है वो वापस भूमि में मिल जाता है। हरी खाद की पलटाई में ये खास ध्यान रखना चाहिए कि फूल आने से पूर्व जब शाखाएं और पत्तियां नरम हों तभी खेत में हल या डिस्क हैरो चलाकर पौधों को सड़ने के लिए मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने धान की खेतों में हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं, हरी खाद की फसल ले सकते हैं और पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे आगामी खरीफ फसल हेतु हरी खाद

0: अमहत्व विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश वनवासी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पब्लिक स्पीक सुनिएगा रात 9:30 पर और स्पोर्ट्स कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। अब से कुछ ही पलों बाद यानी सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें सुनिएगा विश्व संग्रहालय दिवस पर खैरागढ़ के राजा रविंद्र बहादुर संग्रहालय की विरासत पर संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर आशुतोष चौरे से खास बातचीत। डिजिटल ठगी से बुजुर्गों की सुरक्षा में एआई चैटबॉट अभय की भूमिका पर डीएसपी साइबर निशित अग्रवाल से सुनिएगा विशेष चर्चा। और आईआईटी नया रायपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास से जानिए कैसे 45 दिनों में नॉन इंजीनियर्स भी सीखेंगे एआई फॉर बिजनेस। प्रस्तुत करता होंगी शीतल अटकड़े। सुबह 8:30 पर प्रसारित होगा छत्तीसगढ़ के लोक सुर कार्यक्रम का 22वां भाग। आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू, संयोजक पंकज मिश्राम, वाचक स्वर तारकेश्वरी आसुदानी। कवि विजय दिल्लीवार का कविता पाठ सुनिएगा सुबह 9:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे अंबर कुमार देव। इस कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा शंकर शंभू के गाए सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनिएगा दयाशंकर और साथियों का राग गुजरी तोड़ी में शहनाई वादन। इस कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया ताल धमार। फोन इन कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो प्रसारित होगा सुबह 11:05 पर। फोन संवाद और प्रस्तुति तारकेश्वरी आसुदारी। लोकरंजनी में दोपहर 12:30 पर सुनेगा बिसौहा राम जांगड़े और साथियों के स्वर में पंथी गीत। शहरी महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात का विषय होगा समय के साथ खुद को बदलना। होंगे क्रम आपकी चिट्ठी आई, एक ही कलाकार और टिप्स। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:10 पर आजकल में सुनिएगा मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क। क्रम विज्ञान मंच में सुनिएगा रोबोटिक्स और मानव जीवन पर विषय पर ईशा पांडे की जानकारी और सुनिएगा क्रम शाम गजल। शाम 7:21 पर किसानों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा दीर्घकालीन उत्पादकता हेतु प्राकृतिक संसाधनों के बचाव। आज की सलाह में पौध संरक्षण पर जानकारी देंगे पी रजनी राव, पादप रोग विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर सुनिएगा रात 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दोपहर 12:00। शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। पहले सुनिए संस्कृत में फिर हिंदी में।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्रीमोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्रीमोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्रीमोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
3: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है।

0: श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और छत्तीसगढ़ की माटी की महक के साथ आप सभी को जय जोहार। बहुत दिनों बाद बातों, मुस्कुराहटों और एहसासों के साथ इस सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं, आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े, आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में। श्रोताओं, आज सुबह जब मैं अखबार के पन्ने पलट रही थी तो मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत बात पर जाकर टिक गई। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आज सुबह हम इसे अपने दिल में उतार लें तो शायद हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाए। वो बात है, अपने शब्दों को स्वच्छ रखें, क्योंकि वो बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जाने अनजाने हमारे मुंह से निकले शब्द सामने वाले पर क्या असर डालते हैं? सच तो यही है ना कि हमारे शब्द या तो किसी के दिल पर ताउम्र रहने वाला घाव बन जाते हैं, या फिर किसी टूटते हुए इंसान के लिए सबसे बड़ा मरहम। हम कई बार मजाक या गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को अंदर तक चुभ जाता है। और इसका दूसरा पहलू भी कितना सच है, कई बार कोई दूसरा हमें चलते फिरते कुछ कड़वा कह देता है, हमें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, और हम क्या करते हैं, हम उस बात को दिल से लगा लेते हैं, पूरा दिन उदास रहते हैं और अपनी ही नजरों में खुद को कमतर आंकने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी की कहीं छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब किया हो? लेकिन दोस्तों, आज की सुबह खुद से एक वादा कीजिए, अगर कोई आपको छोटा कह रहा है तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ उसकी अपनी समझ है, वो अपनी सच्चाई, वो आपकी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अपनी बुद्धि, अपनी समझ के हिसाब से बोलता है, इसलिए हर बात को व्यक्तिगत बनाना यानी पर्सनली लेना आज से ही छोड़ दीजिए। आज जो भी काम हाथ में लें, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का, उसे बस पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कीजिए। यकीन मानिए, यही मन की असली शांति का रास्ता है। तो चलिए आज अपने शब्दों को थोड़ा स्वच्छ बनाते हैं, किसी को एक प्यारी सी मुस्कान और हौसले वाले शब्द तोहफे में देते हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। इसी खूबसूरत विचार के साथ शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर और कानों में घोलते हैं थोड़ी सी मिठास। लीजिए, पेश है आपके रेडियो सेट पर श्रेया घोषाल की मखमली आवाज में ये बेहद खूबसूरत और रूह को सुकून देने वाला गीत।

0: कन्या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े के साथ। श्रोताओं, आज है 18 मई और आज का इतिहास वाकई बेहद दिलचस्प और गर्व से भर देने वाला है। चलिए रेडियो की सुरीली दुनिया में समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जिन्होंने देश और दुनिया को बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि आज भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। साल 1912 में आज ही के दिन दादा साहब तोरणे की बनाई पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। यानी आज हमारे सिनेमा ने अपनी उम्र का एक और गौरवशाली साल पूरा कर लिया है। दोस्तों, साल 1974 में आज का ही वो ऐतिहासिक दिन था जब राजस्थान के पोखरण की रेत ने एक नया इतिहास रचा। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। इस धमाके के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा हो गया। श्रोताओं, किस्मत और काबिलियत कब कहां ले जाए कोई नहीं जानता। 1990 में आज ही के दिन 27 साल की हेलेन शॉरमैन ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। दिलचस्प बात यह है कि वो एक चॉकलेट कंपनी में केमिस्ट थी और उन्हें ये मौका किसी भारी भरकम टेस्ट से नहीं बल्कि रेडियो पर एक पहेली का सही जवाब देने की वजह से मिला था। उन्होंने सोवियत सोयूज यान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। दोस्तों, आज

मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। हमारी अनमोल विरासत और इतिहास को खुद में समेटे म्यूजियम्स को याद करने का दिन। साथ ही आज दोस्तों, तारीखें सिर्फ जश्न की गवाह नहीं होती, कभी कभी ये कुछ खूबसूरत किरदारों के हमेशा के लिए अलविदा कह जाने की उदासी भी समेटे होती है। वनस्पति विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पंचानन माहेश्वरी जी ने 1966 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था और साल 2017 में आज ही के दिन जब भारतीय सिनेमा के आंगन में से एक ऐसी मखमली छांव हमेशा के लिए सिमट गई जिसने पर्दे पर माँ के किरदार को एक नई परिभाषा दी थी। जी हाँ, अपनी सहज अदाकारी और खूबसूरत मुस्कान से सबका दिल जीतने वाली रीमा लागू जी आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। मैंने प्यार किया कि समझदार माँ हो, हम आपके हैं कौन की समधिन या वास्तव की कड़क माँ, रीमा जी ने हर किरदार को जीवंत कर दिया। 90 के दशक के सिनेमा में उनकी मुस्कुराहट और उनका स्क्रीन प्रेजेंस हम कभी नहीं भूल सकते। आज नमस्कार रायपुर में रीमा लागू जी की यादों को नमन करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी बेहद खूबसूरत फिल्म हम आपके हैं कौन का ये सदाबहार और सुरीला गीत।

श्रोताओं, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से जुड़ने का एक खूबसूरत अवसर है। हर साल 18 मई को पूरी दुनिया में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय यानी वो जगह जहां वक्त थम जाता है। यहां इतिहास सिर्फ किताबों में बंद कोई कहानी नहीं, बल्कि हर पत्थर, हर तस्वीर और हर कलाकृति में धड़कता हुआ एक एहसास है, जहां सदियों पुरानी धरोहरें, दुर्लभ वाद्य यंत्र, कलाकृतियां, मूर्तियां

0: और लोक परंपराएं हमारे विरासत की कहानी कहती हैं। संग्रहालय हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध, विविध और जीवंत रही है। तेजी से बदलती इस आधुनिक दुनिया में संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी पहचान और विरासत को सहेजने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। और जब बात कला, संगीत और संस्कृति की हो तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अपने आप ही विशेष हो जाता है। आज संग्रहालय दिवस के मौके पर हम बात करेंगे उस दुनिया की जहां पत्थर भी इतिहास सुनाते हैं, पुराने वाद्य यंत्र भी संस्कृति की धुन छेड़ते हैं और हर कलाकृति अपने भीतर सदियों की कहानी समेटे होती है। इन्हीं खास पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खैरागढ़ के राजा रविंद्र बहादुर संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर आशुतोष चौरे जी। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: सर, अक्सर लोग संग्रहालय को सिर्फ इतिहास से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आपके अनुसार एक संग्रहालय समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: ये उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे हमारे लिए सांस लेना, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी एक मेमोरी होती है, एक स्मृति होती है और उसको जीवंत रखने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए संग्रहालय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इतिहास जो है वो राष्ट्र की मेमोरी है और उसको जो सिद्ध करने वाली चीजें हैं कि ऐसा हुआ वो दिखाते हैं संग्रहालय। तो हमको संग्रहालय में जाकर के वो चीजें देखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने पहले क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें की। और ये केवल एक मतलब इतिहासकार के लिए जरूरी नहीं है, ये पूरे देशवासियों के लिए जरूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें।
0: जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, अब ये बताइए कि इस संग्रहालय की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देखकर लोग सबसे ज्यादा रुक जाते हैं या हैरान हो जाते हैं?
1: ये उनकी रुचि पर निर्भर करता है कि वो किस फील्ड का है। यदि वो संगीत का है तो वो संगीत वाद्य यंत्र को देखता है, यदि पेंटिंग से संबंधित है तो पेंटिंग को देखेगा, यदि वो पुरातत्व से संबंधित है तो मूर्तियों को देखेगा, सिक्कों को देखेगा, पुरानी चीजों को देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण और आश्चर्य में डालने वाली चीज जो है वो ये है कि जो चामुंडा की मूर्ति है वो पत्थर के ऊपर क्रोध करते हुए, मतलब पत्थर में क्रोध करते हुए दिखाया गया, अट्टहास करते हुए, मतलब डराते हुए, क्योंकि चामुंडा जो है वो युद्ध की देवी और तांत्रिक देवी है, उनके जो अट्टहास है उसको दिखाया गया है और वो भी शिल्पी ने उस पत्थर के अंदर खोद निकाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ये उस समय की 11वीं शताब्दी की, लगभग उसको 1000 साल हो गए। आप सोचिए कि उस समय के शिल्पियों ने पत्थरों को मुस्कुरा दिया, पत्थर मुस्कुरा रहे हैं, पत्थर है तो अट्टहास कर रहे हैं या पत्थर डरा रहे हैं, इस तरीके की चीजें जो उन्होंने बनाई तो ये उन्होंने अपने मनोभाव को उन पत्थरों को उकेरा और वो चीजों को वो पत्थर के ऊपर लेकर के आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप दूसरी चीजों को मिटा सकते हैं, उसमें कलर को वो कर सकते हैं, लेकिन आप मूर्ति में इस तरीके से काम नहीं कर सकते। यदि कोई गलती हो गई तो पूरी आपकी मूर्ति खराब हो जाएगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण।
0: सर, इस संग्रहालय में मौजूद मूर्तियां, सिक्के, वाद्य यंत्र वाकई में सिर्फ वस्तुएं नहीं इतिहास की गवाही है, तो सर ये बताइए कि इन्हें सुरक्षित रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: देखिए, चुनौतीपूर्ण तो ये रहता है कि है ना, सबसे पहले वो यदि मिल गए तो मनुष्य को, मनुष्य से ही खतरा रहता है, जानवर इस चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन मनुष्य ही उसको नुकसान पहुंचा। कहीं पर भी किसी स्मारक में जाएंगे, कुछ भी लिख करके आ जाएंगे, गंदा करेंगे, तो हमको उस चीजों को बचाने के लिए और विशेष करके जो मूर्तियां हैं या जो ऐसी जो जिन चीजों को उठा करके ले जाया जा सकता है उनको सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय में और उसको रिजर्वेशन होता है, उसको संरक्षित किया जाता है, उसका रासायनिक उपचार किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहां पर जो लोग आते हैं वो लाखों लोग उसको देख सकते हैं। जैसे ताजमहल को आज तक तो करोड़ों नेत्रों ने या आंखों ने उसको देख लिया, शिल्पी ने जिसने बनाया, जिन कलाकारों ने उसको बनाया, वो चीजें तो आज भी लोग याद रखते हैं ना उस चीज को। ये महत्वपूर्ण होती है कि वो चीजों को हम अच्छे रखें, सुरक्षित रखें। सबसे बड़ी हमारी जो जवाबदारी वो ये है कि हमको अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में देना है, सुरक्षित कर, ऐसा नहीं कि टूट फूट जाए। इस तरीके से हमको चीजें मिली है उसी को हमको दूसरी आने वाली पीढ़ी को देना है, तो यदि आने वाली पीढ़ी को देना है तो उसके लिए हमको उस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा, इतिहास उनको बताना पड़ेगा। और ऐसा केवल इतिहास वाले विद्यार्थियों के लिए जवाबदारी नहीं, ये सारी जनता के लिए है, सभी जन सामान्य के लिए, कि वो अपने इतिहास को जाने और जान करके उस पर गर्व करें, उनके अपने पूर्वजों की जो उन्होंने जो चीजें बनाई हैं उन चीजों को जाने समझे और उसको सुरक्षित करके उसको अगली पीढ़ी को देने का इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी जो 1000 साल पुरानी, तो हमारे पहले भी तो पीढ़ियों ने उसको संभाल करके रखा, तो वो हमारी भी जवाबदारी रहती है कि हम उसको अगली पीढ़ी को सुरक्षित रूप से दें।
0: और सर, अब आखिर में आज विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?

0: राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को और आपके पूरी टीम को और आपके श्रोताओं को सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनको आह्वान करता हूँ कि वे लोग अपने आसपास के जितने भी म्यूजियम है उसको एक बार जरूर विजिट करें, एक बार जरूर देखें और न केवल खुद देखें बल्कि अपने परिवार को, अपने छोटे बच्चों को, सबको लेकर के जाएं ताकि उनमें वो संस्कार आए और वो अपने इतिहास को जाने।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की बातचीत ने ये महसूस कराया कि संग्रहालय सिर्फ इतिहास को संभाल कर नहीं रखते बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं।
0: थैंक यू मैम, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए अपनी विरासत पर गर्व करें, उसे समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। इतिहास के यही खुशबू हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारी यादों में हमेशा बनी रहे, इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब सुनते हैं फिल्म लापता लेडीज का ये बेहद सुरीला गीत।

0: श्रोताओं, आज का हमारा ये अंक एक बहुत ही जरूरी और गंभीर चेतावनी से जुड़ा है। तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, साइबर ठग भी उतनी ही नए और डरावने तरीके अपना रहे हैं। इन दिनों देश में डिजिटल अरेस्ट, टेरर फंडिंग या सीबीआई के फर्जी नोटिस दिखाकर लोगों को, खासकर हमारे घर के बुजुर्गों को, मानसिक दबाव में लाकर ठगा जा रहा है। लेकिन इस डिजिटल डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के लिए अब हमारे पास एआई अभय चैटबॉट जैसी एआई तकनीक और कुछ बेहद जरूरी नियम है। इसी विषय पर हमें जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, छत्तीसगढ़ पुलिस के डीएसपी साइबर श्री निशीथ अग्रवाल जी। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: नमस्कार मैडम।
0: सर, जैसे कि इन दिनों डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए एआई चैटबॉट अभय की काफी चर्चा है, तो एक आम नागरिक इसके जरिए किसी भी फर्जी नोटिस या कॉल की हकीकत कैसे जांच सकता है?
1: जी मैडम, जैसे कि आपने बताया डिजिटल चैटबॉट इसका सहारा लिया जा सकता है। तो जैसे ही हम कोई भी नोटिस जो है सीबीआई संबंधित अगर इस हम चैटबॉट में डालते हैं तो यह चैटबॉट हमको बता देता है कि वो नोटिस जो है सीबीआई के द्वारा जारी किया गया है कि नहीं किया गया।
0: जी बिल्कुल सर। लेकिन सर, आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल ठगी का शिकार होने वालों में 60% से ज्यादा हमारे बुजुर्ग और रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो साइबर ठगों के निशाने पर सबसे ज्यादा यही वर्ग क्यों रहता है, इसके पीछे क्या वजह है?
1: जी मैडम, डिजिटल ठगों के निशाने पर हमारे बुजुर्ग इसलिए रहते हैं क्योंकि मैडम बुजुर्गों के सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे धीरे धीरे इस तरह से नहीं वर्क करती है जैसे कोई एक यंग इंसान समझता है चीजों को। तो जैसे ही कोई उनको फोन कॉल आता है, कोई उन्हें पुलिस के नाम पे डराता धमकाता है, तो वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाते जिस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए। उनके डर को ही वह अपना हथियार बनाते हुए उनको डराते धमकाते हैं और मुख्यतः ये लोग ऐसे बुजुर्गों को ज्यादा निशाने पर लेते हैं जो कि अकेले रहते हैं, जो कि अगर एक संयुक्त परिवार में जो बुजुर्ग रहते हैं ये लोग उनको टारगेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके आसपास लोग रहते हैं और वो उनको बताते हैं कि नहीं पापा ये सही नहीं है। ये ऐसा कोई भी डिजिटल अरेस्ट जो है कोई भी पुलिस या कोई भी प्रवर्तन एजेंसी ऐसी तरह का कोई भी कार्य नहीं करती है, यह एक ठगी करने का एक छद्म नाम है।
0: जी सर, जागरूकता के चलते अब लोग डिजिटल अरेस्ट को जानने तो लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद ठग आज भी बुजुर्गों को फंसाने के लिए कौन से नए भावनात्मक हथकंडे अपना रहे हैं?
1: मैम, जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट तो ट्रेंडिंग रहा ही है मैडम अभी में, जो कि ठग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मैडम ठग जो है बोलते हैं कि आपके अकाउंट में हमने इतना पैसा डाल दिया है या बिजली बिल के नाम पर ये एपीके आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आपको बिजली बिल सही आने लगेगा वगैरह वगैरह तरीके, जो भी नया तरीका आता है उसके हिसाब से वो अपने पैटर्न को बदलते हैं, उनको ठगते हैं। बेसिक सी बात यह है मैडम, अगर आपकी डिजिटल लिटरेसी कम है तो हम अपने अकाउंट में जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है उसको लिमिट करवा दें कि इस अमाउंट से ज्यादा हमारे अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं हो। अगर ऐसा हम अपने बैंक में जाके करवा देते हैं तो उसके बाद से मैक्सिमम जो ठगी होगी, मान लीजिए आपने अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट आपने 10,000 की, तो 10,000 होगी, उसके ऊपर जो आपके पैसे की ठगी नहीं हो पाएगी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और जानने वाली बात है कि हमें अपने अकाउंट में लिमिट लगा के रखनी है।
0: सर, इन मामलों में ठग बुजुर्गों पर इतना मानसिक दबाव बनाते हैं कि वे डर के मारे अपने परिवार तक को कुछ नहीं बताते, तो ऐसे डरावने माहौल में हमारे बुजुर्ग खुद को शांत कैसे रखें और ये कैसे समझें कि अपनों से बात करना ही सुरक्षा है?
1: मैडम, सबसे ज्यादा परिवार की ही भूमिका है क्योंकि जो सबसे पहले एक चैनल जो उनके पास आएगा वो परिवार ही है। परिवार को ही उनको बताना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कृत्य हो रहा है। कभी भी किसी बात में भी कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात होती है या कोई शोषण वाली बात होती है तो हम सबसे पहले हमें परिवार को बताना है या नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करना है, या कुछ भी नहीं हो तो 1930 पर हमें कंप्लेंट करना है। उनके द्वारा जो कॉल सेंटर है वो कॉल सेंटर भी हमें बता देगा कि इस तरह से ये ठगी की जा रही है, इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं होता। बेसिकली मैडम बात यही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी ऐसा चीज नहीं है जिससे कि हम किसी को डिजिटल अरेस्ट करते हो। डिजिटल अरेस्ट जो है ये ठगों के द्वारा दिया गया शब्द है ठगी करने के उद्देश्य से।
0: सर, अगर कोई बुजुर्ग इस ठगी का शिकार हो जाए तो उन्हें तुरंत किस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करनी चाहिए और आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: मैडम संदेश यही है कि हमें डिजिटल लिटरेसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। जैसे कि हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्लों में, आसपास में कोई भी अगर बुजुर्ग रहते हैं और वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, तो हमको एक ग्रुप बना के उन्हें जागरूक करना है। हमें उन्हें बताना है कि इस तरह से डिजिटल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, और इस तरह से अगर कोई आपको डराता है तो उस डर में नहीं आना है। बेसिकली हमको हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना है और हमारे बुजुर्गों को अकेला नहीं करना है किसी भी कीमत पे। जैसे ही वो अकेले हो जाते हैं तो वो उनपे डर हावी हो जाता है। जब वो अकेले नहीं होते हैं, जब उनको एक बीच में लोग जो है उनको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उनको इस बारे में अवेयर आती है। तो हमको यह जानना है कि हमको किसी भी तरह से बुजुर्गों को अकेला नहीं करना है, उनको अवेयर करना है। ये जिम्मेदारी यंग लोगों की है। मैडम कभी भी हमको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि हमें कभी भी किसी बात से घबराना नहीं है। ऑनलाइन अगर कोई कुछ हमको डरा धमका रहा है तो हमको नजदीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट करना है या www.cybercrime.gov.in

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: रिलेटिव स्कैम या इमरजेंसी स्कैम, यह एक बेहद खतरनाक स्कैम है, क्योंकि इसमें स्कैमर्स आपकी भावनाओं और परिवार के प्रति लगाव का फायदा उठाकर ठगी करते हैं। इसमें स्कैमर्स आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार बनकर आपसे बात करते हैं। ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी रिश्तेदारों की और आपकी निजी जानकारी निकालते हैं और AI वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल कर आपके रिश्तेदार की हूबहू आवाज़ की नकल करते हैं। स्कैमर्स फ़ोन में कोई मेडिकल इमरजेंसी होने की बात कर या कोई पुलिस स्टेशन का नाम लेकर तुरंत पैसे डालने की बात आपको बात करता है और ठगी करने का प्रयास करता है। ऐसे ठग से सतर्क रहें। ऐसे कोई कॉल आता है तो आप तुरंत अपने रिश्तेदार के ओरिजिनल नंबर पर कॉल करें। सावधान रहें, जागरूक बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या

0: अपनी नजदीकी थाने में भी आप जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आपकी रेडियो साथी शीतल अटकड़े के साथ। श्रोताओं, अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, जहां सुबह की पहली किरण आपकी पलकों को सहला रही है। ठंडी मखमली हवा आपके चेहरे से होकर गुजर रही है और दूर कहीं झरनों के गिरने की आवाज आपके दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही है। रोज रोज की वही भाग दौड़, वही लैपटॉप की स्क्रीन, गाड़ियों का शोर और अचानक शब्दों की इस उंगली को पकड़कर आप पहुंच गए हैं प्रकृति की एक बेहद खूबसूरत गोद में। कहते हैं ना कि जिंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो आपकी सांसें थाम दें। इसीलिए साल में किसी एक लंबी छुट्टी का इंतजार ना करते हुए आप भी हर छोटे मौके को एक खूबसूरत सफर में बदल सकते हैं। आज के इस कॉरपोरेट और डिजिटल युग में, जहां बर्नआउट यानी मानसिक थकान और तनाव बहुत बढ़ गया है, वहां स्ट्रेस दूर करने का एक नया और शानदार तरीका है माइक्रो वेकेशंस या रीबूट ट्रिप्स। शनिवार और रविवार बस दो दिन का एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये छोटा सा ब्रेक आपके मानसिक तनाव को कम करने का काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ये सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से दूर होने के लिए यानी डिजिटल डिटॉक्स के लिए प्लान करें। रील्स को स्क्रॉल करने और नोटिफिकेशन की जालिम पिंग से दूर होकर ट्रैकिंग, नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। खुद को रिचार्ज करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का इससे खूबसूरत तरीका भला क्या हो सकता है। तो अगर आप भी लगातार स्क्रीन को देखते देखते थक चुके हैं, तो इस वीकेंड एक छोटा सा ब्रेक जरूर प्लान कीजिए। फोन को कीजिए साइलेंट और प्रकृति को खुलकर सुनने की कोशिश कीजिए, सोचिएगा जरूर। चलिए, जब तक आप इस ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तब तक नमस्कार रायपुर में हम आपको सुरों के सफर पर ले चलते हैं। आइए अनुपम रॉय की खूबसूरत धुन और श्रेया घोषाल शान की मखमली आवाज में सुनते हैं फिल्म पीकू का ये बेहद प्यारा सा गीत और महसूस करते हैं कि हम सचमुच बहारों की तरफ निकल पड़े हैं। सुनिए, हम चले बहारों में।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आपके रेडियो साथी शीतल अटकड़े के साथ। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में एक नाम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब यही AI सिर्फ इंजीनियर्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट और कॉरपोरेट दुनिया का भी सबसे बड़ा स्किल बन चुका है। इसी सोच के साथ IIIT नया रायपुर लेकर आया है एक बेहद खास और जॉब ओरिएंटेड 45 दिनों का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम AI फॉर बिजनेस। एक ऐसा कोर्स जो MBA, MCOM और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों को भी डिजिटल दुनिया के नए अवसरों से जोड़ने का काम करेगा। तो आखिर इस कोर्स की खासियत क्या है, युवाओं को इससे कैसे फायदा मिलेगा और आने वाले समय में AI करियर की तस्वीर को किस तरह बदलने वाला है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज नमस्कार रायपुर में हमारे साथ मौजूद हैं IIIT नया रायपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास जी। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: जी नमस्कार।
1: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि IIIT नया रायपुर में इस AI फॉर बिजनेस वोकेशनल ट्रेनिंग को शुरू करने के पीछे संस्थान का मुख्य विजन क्या है।
2: जी, जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव है वो सिर्फ इंजीनियर या सॉफ्टवेयर कंपनी तक सीमित नहीं रहा है, अब इसका असर हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। चाहे किसी प्रकार का आप फील्ड देख लें तो अब हर जगह जब इसका उपयोग बढ़ रहा है तो ये जरूरत होगी कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने काम में AI की कैसे उपयोगिता हो सकती है, क्या प्रभाव वो डाल सकता है, ये जानने की आवश्यकता होगी। तो इसी सोच के साथ IIIT नया रायपुर ने एक NEP इंस्पायर्ड कोर्स करिकुलम में स्पेशलाइजेशन ब्रांच डाली है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, और उससे ही निकला हुआ कार्यक्रम है जिसे हमने एक 45 दिवसीय कार्यक्रम के तौर पर AI फॉर बिजनेस के नाम से लॉन्च किया है। वैसे तो इसमें कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, लेकिन प्राइमरीली हमने इसको बिजनेस से जुड़ा हुआ रखा है। तो जो MCOM है, MBA है, इसके जो छात्र छात्राएं हैं जो इस पे कोई भी पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ कर रहे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, और दूसरे ब्रांच के भी अगर बीटेक और BSc के भी स्टूडेंट अगर शामिल होना चाहें तो उनका भी स्वागत है।
1: जी बिल्कुल सर। सर, आज प्रोसेस इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती डिमांड के बीच 45 दिनों का ये कोर्स स्टूडेंट के करियर और स्किल्स के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है।
2: देखिए, ऐसे तो हम सब समझ सकते हैं कि 45 दिनों का एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जो किसी को एक पूरे करियर का बहुत ही स्थायी समाधान तो नहीं देता, लेकिन ये निश्चित रूप से जो संभावनाएं हैं और नए अवसर हैं और आने वाले समय में और कुछ सीखना चाहें तो उनके लिए संभावनाओं के रास्ते खोल सकता है। और जिस क्षेत्र पे हम लोगों ने विशेष तौर पे कार्यक्रम का निर्माण किया है वो कहा जाता है कि प्रोसेस इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में चाहे आप शासकीय कार्यालय देखें चाहे बिजनेस हाउसेस देखें, तो जो कार्य पुरानी प्रोसेस से पद्धतियों से चल रहे थे उनमें अब सभी को एक बदलाव की आवश्यकता नजर आ रही है। जो पुरानी प्रोसेसेस थी कई जगहों पर वो रिपीटेटिव एक्शन होते हैं, कई जगह पर डिले होते हैं, तो पूरी दुनिया में एक प्रकार का ये नया स्पेशलाइजेशन का चलन बढ़ा है जिसको हम प्रोसेस इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करके उसको शॉर्ट और स्मार्ट बना के और फिर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए।
1: जी सर। सर, इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस एनालिस्ट या AI से जुड़े नए करियर ऑप्शंस के कितने अवसर खुल सकते हैं।
2: जी, पहली बात तो ये है कि जो अभी वर्तमान में ही जो जॉब लोग कर रहे हैं उनको भी अपने जॉब को बचाने के लिए AI से अपने आप को सुसज्जित करना पड़ेगा। इसलिए जो रिक्वायरमेंट थी और जो जॉब की पोजिशन थी जो खत्म हो रही है उसके बाद जो नई पोजिशन आ रही है उसमें आपको आया कि एआई बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, प्रोसेस एनालिस्ट हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव हैं और ऐसे बहुत सारे एआई एनेबल्ड नए नए प्रोफाइल तैयार हो रहे हैं जिनके आने वाले समय में काफी आवश्यकता होगी, डिमांड होगी। और इसी को नजर रखते हुए ये प्रारंभिक कोर्स है ताकि स्टूडेंट्स को एक फंडामेंटल्स मिल जाए, एक आधार मिल जाए। इसके बाद तो अभी इन दिनों ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे इसमें आ रहे हैं जिसमें अपने आप स्वयं भी वो कर सकेंगे।
1: और सर अब आखिर में ये बताइए कि जो युवा इस समय हमें सुन रहे हैं और इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें ट्रिपल आईटी नया रायपुर में किस तरह की प्रैक्टिकल लैब्स और सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया को लेकर उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए?
2: मैं जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी प्रतिभागियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल आईटी नया रायपुर एक रेसिडेंशियल हाईटेक कैंपस है जिसमें बहुत ही अच्छी लेबोरेटरीज और क्लासरूम्स का निर्माण किया गया है। और इस कार्यक्रम के लिए चूंकि ये गर्मी की छुट्टियां होंगी तो हमारे हॉस्टल्स की भी उपलब्धता रहेगी, तो जिनको थोड़े दूर से भी आ रहे हों तो ये सुविधा भी रहेगी कि उनको यहाँ आवश्यकता पड़ने पर हॉस्टल भी प्रोवाइड हम कर सकेंगे। इसके अलावा फिर जो कार्यक्रम रहेगा उसके दौरान हम उनको विशेष प्रकार के एआई के ऐसे टूल्स हमने ढूंढ के निकाले हैं जिनपे हमने टीचिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल तैयार किया है। इसमें बहुत तकनीकी बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होगी और वो उसको एक टूल या एक सॉफ्टवेयर की तरह से भी उपयोग करके एक प्रारंभिक ज्ञान एआई से संबंधित प्राप्त कर सकेंगे।
1: जी बिल्कुल सर, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। आकाशवाणी रायपुर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।

श्रोताओं, आज सुबह का हमारा ये सुरीला सफर अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से घड़ी की सुइयां मुझे विदा लेने का इशारा कर रही हैं। आज हमने जाने कितने खूबसूरत एहसास जिए हैं, लेकिन इस पूरे सफर की जो सबसे खूबसूरत और अनमोल धरोहर है वो है आप, आपका ये साथ। आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद जो अपने पत्रों, संदेशों और ईमेल्स के जरिए आप हमें इतना स्नेह, इतना विश्वास और इतना अपनापन देते हैं। आपके शब्द ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब आप लिखते हैं ना, तो लगता है जैसे दूरियां सचमुच मिट जाती हैं और रेडियो की ये डोर दिल से दिल को जोड़ देती है। इसी प्रेम और आत्मीयता के लिए आप सभी को हृदय से नमन और आभार। एक नई सुबह नए विचारों के साथ फिर होगी मुलाकात। मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रायपुर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शीतल लटकड़े, अब आपसे लेती हूं विदा। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रायपुर और सराईपाली का प्रसारण। 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
8: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी आकाशवाणी ने दशकों की इस यात्रा में तमाम मील के पत्थर स्थापित किए हैं और अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने कार्यक्रमों में पिरोते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया है। जन जन की वाणी बन मूक को वाचाल बनाने का प्रयास आकाशवाणी ने किया है। आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर केंद्रित इस कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी की इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों से भी परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है हमारे सुधी श्रोताओं के लिए ये प्रयास उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के अंक में हम छत्तीसगढ़ के विविध गीतों की चर्चा करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे कुछ सरगुजिहा गीत। इससे पहले आइए आकाशवाणी की इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। प्रसारण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उद्घोषक पर। किसी भी प्रसारण केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनने के लिए श्रोता जब रेडियो ऑन करते हैं तो आकाशवाणी संकेत धुन के बाद केंद्र की आरंभिक परिचयात्मक उद्घोषणा सुनाई देती है। फिर जो भी कार्यक्रम उस प्रसारण सभा में निर्धारित होते हैं वे कार्यक्रम बारी बारी से श्रोताओं तक पहुंचने लगते हैं। एक कार्यक्रम के समाप्त होते ही दूसरे की उद्घोषणा, फिर अगले कार्यक्रम की। ये उद्घोषणाएं प्रसारण को एक आकार देती हैं, उसे व्यवस्थित करती चलती हैं, उसे निखारती हैं। किसी भी केंद्र का श्रोताओं से जीवंत परिचय उद्घोषक की उद्घोषणाओं के माध्यम से ही होता है। केंद्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम निर्माताओं, प्रसारणकर्ताओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है उद्घोषक की। प्रसारण सभा चाहे एक या दो घंटे की हो या उससे अधिक की, उसमें उद्घोषणाएं जितनी जीवंत, सारगर्भित और ऊर्जावान होंगी, प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम श्रोताओं को उतने ही रुचिकर लगेंगे। इतना ही नहीं, उस जीवंत उद्घोषणाओं से श्रोताओं में उत्साह और उमंग का संचार होते रहता है। लेकिन यदि उद्घोषणाएं नीरस, बुझी बुझी सी, काम चलाऊ और खाना पूर्ति वाली होंगी तो ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम चाहे कितने भी अच्छे और रोचक हों, श्रोताओं को प्रभावित करने में असफल रह जाएंगे। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उद्घोषक। वो कार्यक्रमों और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। जीवंत और प्रभावी उद्घोषणाओं के लिए एक उद्घोषक में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। संप्रेषण हुनर, संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल, जो भी कहा जाए, एक उद्घोषक की पहली शर्त है। उद्घोषणाएं जो भी हों, उसमें विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज अच्छी तो हो ही, उस आवाज का सही प्रयोग और साफ होना भी उतना ही जरूरी है। उच्चारण में शुद्धता और स्पष्टता हो। उद्घोषक बहुआयामी भूमिका में होता है। विभिन्न विधाओं की प्रस्तुति में उसकी संबद्धता होती है, जैसे भेंटवार्ता, विवरण प्रस्तुतकर्ता और अन्य प्रसारण रूपों में भी उसे प्रतिभागिता करनी होती है, तो उनके लिए भी उसे अपने आप को तैयार करना होता है और ये तैयारी निरंतर अध्ययन और समसामयिक घटनाक्रमों की जानकारी रखने से बेहतर हो सकती है। उद्घोषक रेडियो का संपूर्ण प्रस्तुतकर्ता होता है, इसलिए उससे अतिरिक्त सजगता की अपेक्षा की जाती है। जितनी प्रभावपूर्ण उद्घोषणा होगी उतना ही प्रभाव श्रोता पर पड़ेगा। वास्तव में उद्घोषक पूरे कार्यक्रम का अहम सूत्रधार होता है, इसलिए उनसे उनकी भाषा में सरलता, सहजता, स्पष्टता

जन्म किसी अज्ञात कवि के मुख से लोक जीवन में हुआ। यही कारण है कि लोकगीत लोक जीवन का श्रृंगार ही नहीं, उसकी आत्मा भी है। लोकगीतों में वस्तुतः कवि की नहीं वरन जन समाज की वाणी मुखरित होती है। ये लोकगीत हमारे खेतिहर समाज की जीवन पद्धति और संस्कृति का दर्पण है। सदियों से प्रचलित लोकगीत वाचिक परंपरा का ऐसा प्रवाह है जिसमें उसके अंतर्मन की व्यथा कथा छलकती है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। लोक का भावुक और निर्लिप्त मन जन्म से मृत्यु तक लोकगीतों का संबल ढूंढता है। लोक जीवन के सुख दुख, उल्लास हर्ष, विषाद और संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए लोकगीत कोटि कोटि हृदयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पनिहारिन और बोझा ढोती हुई स्त्रियों के साथ साथ घर में चक्की पीसती हुई महिलाओं के सुरीले कंठों में रचे बसे लोकगीत जन जीवन में इतने गहरे बैठे हुए हैं कि जन जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं।

व्यक्ति अपने उल्लास और आक्रोश के साथ साथ मन में दबी इच्छा को सबके सामने रखता है। ग्रामीण जनजीवन में ही नहीं, गांव के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में भी ये लोकगीत रचे बसे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी सत्ता का ज्ञान लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। छत्तीसगढ़ी एक सरस, सरल और लचीली भाषा है, जिसमें सौहार्द, सामंजस्य और प्रेम के घुंघरू बजते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की समृद्ध परंपरा लोकमानस के कंठ कंठ में समाई है। छत्तीसगढ़ का ददरिया सावन भादों की बरखा की तरह नहीं, वरन बारहों महीने रस विभोर करते हैं और गुदगुदाते रहते हैं।

किसी भी देश के अंचल की सभ्यता और संस्कृति की झलक लोक गीतों में मिलती है। असंख्य नारियों के हृदय की झंकार का ये ताना बाना करुण, हास्य और श्रृंगार रस से लिपटकर सुरीले कंठों में गूंजता है। सुआ, भोजली, ददरिया, कर्मा आदि गीतों में उनके प्राणों की वेदना फूटती है। इन गीतों में भावनाओं का वेग इतना अधिक प्रबल होता है कि हृदय द्रवीभूत हो उठता है। बड़ी से बड़ी बात का उलाहना देने और नाराजगी जाहिर करने में लोकगीतों ने नारी जाति की बड़ी मदद की है। हृदय में लगी ठेस, दुख और पीड़ा को जिन्हें कई कारणों से जबान पर नहीं लाया जा सकता, उन्हें गीतों की लड़ियों में पिरोकर डंके की चोट पर समाज को सुना दिया जाना लोकगीतों का ही कमाल है।

आइए अब चलते हैं सरगुजा की सुरम्य वादियों में, जहाँ के लोक जीवन में लोकगीतों में श्रृंगार के सहज ही दर्शन होते हैं। मानव की श्रृंगारिक प्रवृत्ति सहजात है। वह अनादिकाल से अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। श्रृंगार प्रसाधन की ये प्रवृत्ति आज भी लोक जीवन में विद्यमान है। लोक जीवन में केवल नारी ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी नृत्य उत्सवों के अवसर पर प्राकृतिक उपादानों से अपने शरीर को सुसज्जित करते रहता है। ऐसे उपादानों में नृत्यरत होने के अवसर पर पगड़ी में पुष्पित टहनी खोसना, कौड़ियों का झालर कमर में बांधना, कमर में मयूर पंख बांधना आदि सम्मिलित है। सरगुजिया लोकगीतों में नारी सौंदर्य प्रसाधन के अनेक मनभावन चित्र अंकित हैं।

और अब आज के अंक को यहीं विराम देते हैं। वाचन तारकेश्वरी आसुदानी का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। विदा दीजिए, नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ के लोकसुर की 22वीं कड़ी अभी आप सुन रहे थे। वाचक स्वर था तारकेश्वरी आसुदानी का। आलेख संपादन और प्रस्तुति पीर भान साहू की। संयोजक पंकज मेश्राम। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कवि विजय दिल्लीवार का कविता पाठ।
1: रचना का शीर्षक है आइंस्टाइन ने कहा, जिस जगह पर सोए हैं बेसुध, रो रो कर भूखे अबोध बच्चे, सिसक रही है उसके नीचे की धरती भी, संभल नहीं रहा है अन्न न दे सकने का अपराध बोध। नदी में जल नहीं है, मृग मरीचिका है, तप रही है रेत बेतहाशा, मरी हुई नदी की जैसे सजी हुई चिता है, अपनी मौत पर बेबस नदी शर्मिंदा बे इंतहा है, लप लपाती सर्वनाशिनी आग की चपेट में, जिंदा जंगल और बेकसूर वन्य जीव भस्म हो रही जीवनदायिनी अनंत हरितिमा, चट चट चट चट, आग स्वयं हतप्रभ है अपने स्वभाव पर, पछतावे का अंत नहीं है। कितना अरसा हुआ याद करो, साफ दिखते नहीं चांद और तारे, अपारदर्शी होते मुंह छिपाते आसमान को, शर्म से कौन उबारे, पूरे शहर को हुआ है दमा, सांस लेकर जहां शर्मिंदा है वहां की हवा, क्षित जल पावक गगन समीर, सबके सब लज्जित गमगीन और अधीर, प्रसन्न सिर्फ मनुष्य है, गफलत में है या ना समझ है, न भयभीत है और न सावधान, इतना निश्चिंत कैसे है इंसान, है उसे अपनी अनुकूलन क्षमता पर शायद भरोसा महान, या निपट मूर्ख है या विकट विद्वान, कोई भला कैसे रह सकता है सामने खड़ी विपदा से यूं अनजान। अब समझ में आता है क्यों कही आइंस्टाइन ने बात इतने पते की, कि मूर्खता और बुद्धिमत्ता में होता है फर्क, बस इतना ही कि बुद्धिमत्ता की सीमा होती है, बुद्धिमत्ता की सीमा होती है। दूसरी रचना गंवार पगडंडी और बांका जवान। गांव की गंवार पगडंडी गांव के बांका जवान को पक्की सड़क तक पहुंचा कर वहीं खड़ी रहती है, इस उम्मीद में कि लौटेगा बांका जवान वापस और पहुंचा देगी उसे वापस गांव तक। निपट गंवार पगडंडी गई नहीं कभी शहर, उसे नहीं पता कि नहीं पैदा होते बांका जवान शहर में, शहर के लिए बांका जवान पैदा होते हैं गांव में, गांव का बांका जवान भी नहीं जानता कि वह आया है शहर गांव वापस नहीं लौटने के लिए, गांव का बांका जवान भी नहीं जानता कि वह आया है शहर गांव वापस नहीं लौटने के लिए, शहर में गांव का बांका जवान जुटा रहता है पक्की सड़क बनाने में, गंवार पगडंडी पहुंचा देती है दूसरा बांका जवान पक्की सड़क तक और राह देखती है अनंत काल तक, और राह देखती है अनंत काल तक। रचना का शीर्षक वह सुखी होना चाहता था। वह सुखी होना चाहता था, स्वादिष्ट भोजन सुंदर घर कीमती परिधान सबने हाथ खड़े कर दिए, स्वादिष्ट भोजन सुंदर घर कीमती परिधान सबने हाथ खड़े कर दिए, साहित्य संगीत नाटक खेलकूद कुछ देर साथ चले फिर अपनी राह चल दिए। एक दिन उसने सामने आए कुत्ते को नहीं दुत्कारा, फिर एक दिन दरवाजे पर आई, गैया को रोटी खिलाई और उसका माथा सहलाया। दिसंबर में एक सुबह सफाई कर्मी को अपना स्वेटर उतार कर दे दिया। मई में एक दोपहर हाथ ठेले वाले को अपनी चप्पलें दे दी। 26 जनवरी को मुंह अंधेरे स्टेडियम जाते बच्चों को लिफ्ट दी। 2 अक्टूबर को अपनी बेटी का एक गुब्बारा काम वाली के बेटे को दिया। 15 अगस्त को तिरंगे बेचने वाली बच्ची से झंडियां खरीद कर बच्चों में बांट दी। अब उसे याद नहीं रहता कि वह सुखी होना चाहता था। रचना का शीर्षक है अंतहीन। किसी भी समय शुरू हुआ युद्ध समाप्त कभी नहीं होता, चलता रहता है अनंत काल तक। किसी भी समय शुरू हुआ युद्ध समाप्त कभी नहीं होता, चलता रहता है अनंत काल तक। युद्ध के समाप्त होने की घोषणा दुनिया को छलने की है, आजमाई योजना। कभी नहीं खत्म होते युद्ध के द्वारा छोड़े गए युद्ध से बड़े युद्ध, महाविनाश के मलबे पर नवनिर्माण का युद्ध, मासूमों की मौतों को भूलने का युद्ध, बेबसों पर नासूरी घावों को भरने का युद्ध, अपनों को खोने के बाद अपनों के बिना जीने का युद्ध। युद्ध में मरने से बच गई लाशों में जीवन लौटाने का युद्ध, मरी हुई मिट्टी से रोटी मांगने का युद्ध, युद्ध की भयावह स्मृतियों से छुटकारा पाने का युद्ध, इंसानियत को पुनः बोने और उगाने का शाश्वत युद्ध, और इन सब के साथ साथ हर पल विश्व युद्ध के लिए तैयार होती भूमि का और सर्वनाश के लिए आतुर मुद्रा के प्रतिकार का युद्ध। युद्ध कभी खत्म नहीं होता, कहाँ खत्म हुआ है द्वापर का महाभारत आज तलक, त्रेता का राम रावण युद्ध आज भी जारी है अनवरत। कैसे कहें कि खत्म हो चुके हैं विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय? कौन दावा करेगा कि नहीं होगा विश्व युद्ध तृतीय? युद्ध होता है प्रारंभ हर पल, नहीं होता खत्म किसी पल, नहीं होता खत्म किसी पल। अगली रचना है सबसे बड़ी लड़ाई। बेहद सरल है गुस्सा आने पर उबल पड़ना, बेहद सरल है गुस्सा आने पर उबल पड़ना, बेहद कठिन है गुस्सा आने पर शांत रह जाना, बेहद कठिन है गुस्सा आने पर शांत रह जाना, सबसे कठिन है यह समझना कि नहीं लड़ना ही दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है, नहीं लड़ना ही दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है। अगली रचना है शहर कभी नहीं बताता। शहर अपने बूते कभी शहर नहीं बनता, वह शहर बनता है जब गांव अपना गांव छोड़ता है। गांव में गांव अपने अभाव में खुश रहता है, शहर में गांव किसी हाल में खुश नहीं रहता है। गांव अपने गांव का पेट भले न भर पाता हो, लेकिन गांव शहर का पेट भरने के लिए गांव के पेट को खाली करता जाता है। शहर दरअसल बिना खेत खलिहानों और बिना बाग बगीचों का गांव ही तो होता है। शहर में गांव हर समय हर जगह रहता है, शहर के सीने में गांव धड़कता है, शहर की रगों में गांव बहता है, शहर चलता है गांव के पैरों से, शहर काम करता है गांव के हाथों से, शहर के फेफड़ों में गांव की हवा होती है, शहर के पेट में गांव का अनाज होता है, शहर की सेहत में गांव के फल होते हैं। शहर गांव के बिना शहर नहीं होता, शहर गांव के कारण ही शहर होता है। शहर जानता है कि शहर के भीतर गांव का ही डीएनए है, शहर जानता है कि शहर के भीतर गांव का ही डीएनए है, शहर कभी नहीं बताता कि गांव ही शहर का पिता है, शहर कभी नहीं बताता कि गांव ही शहर का पिता है। अगली रचना है सुपली भर मोहब्बत। सुपली भर मोहब्बत, पल भर की नफरत सदियों की मोहब्बत को पल भर में मिट्टी में मिला देती है। पल भर की नफरत सदियों की मोहब्बत को पल भर में मिट्टी में मिला देती है। मायावी नफरत कभी बनती सलीब, कभी विष की प्यालियाँ, कभी पत्थर, कभी तलवार, कभी बारूद, कभी परमाणु गोला, कभी पगलाई गालियाँ। नफरत करती आई सभ्यताओं को नेस्तनाबूद, संस्कृतियों का विनाश, धरती के टुकड़े, मानवता का नाश। नफरत मिटने नहीं देती जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, रक्त और नस्ल का फर्क। हर लेती पल भर में विवेक, अक्ल और तर्क। रक्तपात उसका प्रिय शगल, रक्त सनी दाढ़ उसका प्रिय श्रृंगार, गूंजते चहुओर उसके क्रूर अट्टहास। कितने शक्ति संपन्न है नफरत, साधन है अकूत उसके पास। कितने मुफलिस है मोहब्बत, कितनी मुफलिस है मोहब्बत, कितने कम सामान है उसके पास।

0: झोली भर झप्पी, छटाक भर सहारा, करछुल भर करुणा, मुट्ठी भर मीठे बोल, अंजुरी भर आस और आकाश भर आत्मविश्वास, सुपली भर मोहब्बत, नफरत की सदियों की मेहनत को, सुपली भर मोहब्बत, नफरत की सदियों की मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला देती है, पल भर में मिट्टी में मिला देती है। अगली रचना है प्रेम करना आ गया। जब बिना इनकी चीनी की चाय तुम्हें मीठी लगे, समझो कि तुम्हें प्रेम करना आ गया। जब प्रेम के बदले तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, समझो कि तुम्हें प्रेम करना आ गया। जब तुम्हारा अधिकार भाव इनकी तिरोहित हो जाए, समझो कि तुम्हें प्रेम करना आ गया। जब प्रिय के लिए तुम्हारे भीतर सम्मान का सागर लहराए, समझो कि तुम्हें प्रेम करना आ गया। प्रेम इंसान को नीतिवान, साहसी और रचनात्मक बनाता है। प्रेम करने वाले को ही संसार गढ़ना आता है। समझो कि तुम्हें संसार गढ़ना आ गया। समझो कि तुम्हें प्रेम करना आ गया। अगली रचना है पहचान। इंसान होने के लिए ज़रूरी नहीं इंसान जैसी शक्ल और परिधान हो। इंसान होने के लिए ज़रूरी नहीं इंसान जैसी शक्ल और परिधान हो। इंसान होने के लिए ज़रूरी है इंसान के भीतर इंसान हो। कहते हैं चेहरा धोखा देता है, हाथ कभी धोखा नहीं देता। क्यों ना हम चेहरे को नहीं, क्यों ना हम चेहरे को नहीं हाथ को इंसान होने का प्रमाण माने, हाथ की लकीरों को नहीं हथेली के खुरदरेपन और गठानों को इंसान होने की पहचान माने, खुरदरेपन और गठानों को इंसान होने की पहचान माने। अगली रचना है सपना देखने का शऊर। मैंने उस दृश्य को देखा जिसमें मैं खुद शामिल था। मैंने उस दृश्य को देखा जिसमें मैं खुद शामिल था। सच से बचते हुए खुद को देखा, झूठ को गढ़ते हुए खुद को देखा। भीड़ को राह दिखाने के बजाय राह से भटकाते हुए खुद को देखा। यह सब करते हुए शर्मिंदा होने के बजाय ठहाके लगाते हुए खुद को देखा। कितना असभ्य हो गया हूँ मैं, सपना देखने का शऊर नहीं रहा, सपना भी देखने का शऊर नहीं रहा। यह भी मैंने सपने में देखा, अगले ही पल मैंने देखा। मेरी जात खत्म हो गई, मेरा वर्ग खत्म हो गया। मैं किसी एक देश का नागरिक नहीं रहा। विश्व की सभी भाषाएं मेरी मातृभाषा हो गई। अब आया सपना देखने का शऊर, यह भी मैंने सपने में ही देखा, यह भी मैंने सपने में ही देखा।
1: अभी आप सुन रहे थे कवि विजय दिल्लीवार का कविता पाठ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत इस संदेश के बाद।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। तीसरी कसम फिल्म का गीत सुनिए मन्ना डे की आवाज में। संगीत शंकर जयकिशन का है, गीत शैलेंद्र का।

0: उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुनिए फिल्म जंगली का गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन है और हसरत जयपुरी की शब्द रचना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। शकील बदायूनी की रचना सुनिए आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। रवि का संगीत है और फिल्म का नाम है 14वीं का चांद।

वो कौन थी, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, राजा मेहदी लिखा के बोल और मदन मोहन का संगीत।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 9:40 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत, कलाकार है अंबर कुमार देव। पहले सुनिए अब्दुल हमीद अदम की रचना अंबर कुमार देव की आवाज में।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सुगम संगीत में अब सुनिए तुलसीदास की रचना अंबर कुमार देव की आवाज में।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे अंबर कुमार देव। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। एक सूचना सुनिए, आगामी मंगलवार 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीष कुमार वर्मा। विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज और कल रायपुर तथा बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने कल धमतरी में 465 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर बीती शाम रायपुर पहुंचे। रायपुर विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री शाह का स्वागत किया। श्री शाह आज और कल रायपुर और बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद रायपुर के माना में स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज दोपहर वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 19 मई को जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव

0: साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये राज्य का पहला दौरा है। छत्तीसगढ़ के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा। 25 मई तक चलने वाला ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विकास के लिए 465 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धमतरी में 4-लेन सड़क, इंटरक्वेल और गौरव पथ निर्माण कार्य को मंजूरी दी। इसके अलावा उन्होंने कुरुत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। जगदलपुर के बालिंगा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज सुबह एक बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस रायपुर से कोंटा की ओर जा रही थी। जशपुर जिले में स्थित घोघरा डैम में डूब रही अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में मां ने भी जान गंवा दी। इस हादसे में मां और 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी किसी तरह तैर कर बाहर निकलने में सफल रही। बताया जा रहा है कि मृतक महिला गर्भवती थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज और कल रायपुर तथा बस्तर में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है और सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने कल धमतरी में 465 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजने को हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए दयाशंकर और साथियों का शहनाई पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। राग गुजरी तोड़ी में 2 गतें, दोनों ही गतें क्रमानुसार विलंबित 1 ताल और द्रुत 3 ताल में निबद्ध है। प्रस्तुत है दयाशंकर और साथियों का शहनाई पर बजाया राग गुजरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दयाशंकर और साथियों का शहनाई पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म बुलंदी का गीत लीजिए सुनिए, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फॉर वॉइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। झील के उस पार इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए, किशोर कुमार की आवाज में। संगीत आर डी बर्मन का है और आनंद बख्शी के बोल।

गुलजार की शब्द रचना और आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म सितारा का गीत सुनी लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाजों में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में महबूबा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आर डी बर्मन की धुन और आनंद बख्शी के बोल।

फिल्म सरगम का गीत लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन और आनंद बख्शी की शब्द रचना।

0: फिल्म सरगम का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी और आनंद बख्शी की शब्द रचना। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
2: ज्ञान वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में एक रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। फोन संवाद और प्रस्तुति तारकेश्वरी आसुदानी।

0: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम सुनैया जम संगवारी मन के कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार करो तारकेश्वरी के जय जोहार। संगी हो आज के ए कार्यक्रम पर आप मन सन गोट बात होए रही 7 मई के तावा सुने जाए आप मन सन होए हमर गोट बात और आप मन के पसंद के गीत कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ मा। हेलो फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: हाँ दीदी राम राम जय जोहार।
0: राम राम भैया जय जोहार।
1: ये कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से ध्रुवा राम साहू बोलत हो।
0: ध्रुवा राम साहू जी कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। हमारे सी का है जे तेंदू पत्ता तोड़े चालू है।
0: हाँ
1: हाँ हाँ और संग में जो तेंदू फल आए हैं तेंदू फल खा थे बैठ के।
0: कैसे बने मिठा थे तेंदू?
1: हाँ हाँ बढ़िया लगा थे।
0: ये गर्मी के मौसम में तेंदू खूब फल थे ना?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: और कौन कौन से मौसमी फल आते हैं आप मन के गांव तरफ?
1: अभी का है मौसमी फल में जो 4 दिखल मिलत है और तेंदू है और घर में से पपीता तो निकलते थे।
0: घर में बाड़ी घलो है?
1: हाँ बाड़ी है।
0: मने असन गर्मी के मजा उठाओ आने आने किसिम किसिम के फल खाओ और बताओ आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया हो तो क्या कहना चाहत हो भैया?
1: आज ही कॉल है भी है गर्मी के दिन आते और जो हवा तूफान घलो बहुत शाम के 3 बज से चालू हो जाते
0: हैं
1: वो पाके हमारे संगवारी है मन हवा तूफान चला थे या फिर ओला गिरा थे करा जैसे बोलते मन तो वो पेड़ के नीचे मत रहे बड़े सुरक्षित जगह में जाए काहे हवा धूखा में दंगाली पेड़ गिरे घलो संभावना बने रहती।
0: हाँ भैया बने कहा था और इसने मौसम में अलकरहा घटना होए के आशंका बनी रही थी तो बाज के रहना जरूरी है। और
1: हाँ हाँ
0: अब बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कला

0: कारमन के कौन से गीत आप मल्ला सुना देन?
1: चतुराम साहू का साथी मन के गीत है, आप अहुना बासी खाले वाले से गीत है। हाँ, आप अहुना बैठले चोंगी पीले वाली सासी खाली से गीत है। बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा है। आप मन के कार्यक्रम बहुत अच्छा लगते है। सुना रसन, अब एक अंतराल के बाद फोन लगाएं, लग गए, बहुत खुशी होते।
0: हम मल्ला खूब खुशी होते और आओ आपसे न जाए। आप मन के पसंद माँ ये गीत फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोला थो?
1: हाँ दीदी, मैं छोटी करेली से निर्मल साहू बोला था।
0: निर्मल साहू जी, कार्यक्रम आपन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ दीदी, मोला गाना सुनना है दीदी, लक्ष्मण मस्तुरिया जी के।
0: आज के कार्यक्रम आप फोन लगाए हो, का कहना चाहते हो?
1: कहना ये चाहता हूँ, संगीत लाइन से जुड़े हो, मैं धमतरी जिला से हूँ निर्मल साहू। अभी श्रीमद् भागवत कथा में लक्ष्मण मस्तुरिया के जन्म भूमि मस्तुरी में आए हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं बेंजो प्लस बांसुरी बजाता हूँ दीदी।
0: तो
1: लक्ष्मण मस्तुरिया जी के याद में लक्ष्मण मस्तुरिया के कोनो भी गीत सुना दो दीदी।
0: तो आप मन के पसंद माँ आवाज सुने जाए लक्ष्मण मस्तुरिया और संगवारी मन के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करा छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: फोन करा छत्तीसगढ़ी गीत सुना
0: जी। कौन बोला था बहनी?
1: मैं चापा कोसमंदा से रेणुका यादव।
0: रेणुका यादव जी, कार्यक्रम आपन के बहुत बहुत स्वागत है। बताओ क्या कहना चाहते हो आज के कार्यक्रम में?
1: बेहतर राम साहू के गाना सुनना चाहता हूँ। कोई सही
0: और कुछ कहना चाहते हो बहनी?
1: कुछ नहीं दीदी, सब तो ठीक है।
0: का करा तो आप मन?
1: खाना पीना बनाता हूँ, घर काम करता हूँ दीदी।
0: और परिवार में कौन कौन है?
1: हमारे घर में सब कोई है, सास ससुर ननन है और सब कोई दीदी।
0: लड़का मन घलो है?
1: लड़का घलो के हाँ, भाती भाते है, लड़का है, एक लड़का है।
0: स्कूल जाते है लड़का मन?
1: हाँ स्कूल जाते दीदी, पढ़ाते। सुनता दीदी रेडियो, हमारे पापा का नहीं था।
0: अच्छा, तो कब ले सुनता रेडियो?
1: बहुत दिन से सुना था दीदी।
0: तो इसने सुनत रहो रेडियो और रेडियो माँ अपन पसंद के कार्यक्रम सुनो, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। जेमा आज बजत है आपके पसंद के गीत बैतल राम साहू और संगवारी मन के आवाज माँ। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुनना।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: हेलो, फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनो।
4: राम राम दीदी।
3: राम राम, कौन बोला था भैया?
4: मैं कमलकांत मरावी, नॉर्मी ग्राम छिछड़ी ले बोला था दीदी।
3: कमलकांत मरावी जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप मन?
4: ठीक है दीदी, अभी धूप बढ़ गया, गर्मी है।
3: आज के कार्यक्रम में फोन लगाया, क्या कहना चाहता था भैया?
4: अब का कहबो दीदी, अब धूप बढ़ गए, अब धूप के अपन सावधानी बरतते हुए अब आदमी ला लोगन ला सावधानी रखना चाहिए।
3: आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहता हो?
4: तो शेख हुसैन के गीत सुना दे, मन के मन मोहनी, मोर दिल के पै जोगनी।
3: मन के पसंद माँ आवाज सुने जाए शेख हुसैन और संगवारी मन के गाय एक गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हेलो, फोन कर छत्तीसगढ़ी किस गीत सुना
0: जी। भैया कौन बोलत हो?
1: मैं हाँ सत्य प्रकाश कन्नौजी बोलत हूँ दीदी। राम राम जय जोहार।
0: राम राम जय जोहार। सत्य प्रकाश कन्नौजी जी, कार्यक्रम आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: सुनार देवी, तहसील पुलारी, जिला बड़ौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से बोलत हूँ दीदी।
0: आप मन के स्वागत है। बताओ आज के कार्यक्रम में कॉल लगाया हो, क्या कहना चाहते हो भैया?
1: बस ये थोड़ा बहुत पानी गिरी था गर्मी के साथ, थोड़ा कम हुई दीदी।
0: और आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत सुनना चाहते हो?
1: पंचराम मिर्झा, कुलवंतीन बाई, कोई भी गीत
0: हो अपन के पसंद में अब सुने जाए। पंचराम मिर्झा और कुलवंतीन बाई की गाय ये गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
2: न काम नहीं न काम नहीं

0: हेलो, फोन करा छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हेलो, जय जोहार। कार में छत्तीसगढ़ राजनाम गाँव ले वीरेंद्र गंधर्व बोलत हो।
0: वीरेंद्र गंधर्व जी, कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। धन्यवाद।
0: कहाँ करा था आप मन?
1: हाँ जी मैडम, मैं नेत्रहीन हूँ और पढ़ाता में है अपना अभिलाषा स्कूल में जी। मैं लड़का मतलब पढ़ाता हूँ, छोटे लड़का मल्ला।
0: अच्छा,
1: पहली दूसरी है, चौथी पांचवी है वो मल्ला।
0: और हमारे कार्यक्रम कब कब सुना था?
1: तुम्हारा कार्यक्रम तो मैं रोजे सुनत रहता हूँ, काबर के रेडियो के मैं बहुत पुराना संगवारी हूँ, 1975 ले सुनत हूँ।
0: हाँ, अतिक झुन्ना श्रोता हवो इसने माया दया बनाए रखो भैया। और अब बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत आप मल्ला सुना देना आज?
1: हाँ जी मैडम, बोला जयंती यादव के गाना सुना दे। मैं अर्जी करो प्रभु धिया रे मूर्ख का भुला रखिया रहे।
0: आप मन के पसंद माँ आवाज सुने जाए जयंती यादव के गाय एक गीत। फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: धन्यवाद दीदी।
0: कौन बोला था भैया?
1: राम कुशल पटेल बोला था दीदी, मेघा पारा लोर मिले।
0: राम कुशल पटेल जी, कार्यक्रम में आपन के बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: का हाल चाल भैया, का कहना चाहत हो आज के कार्यक्रम में फोन लगाया होता?
1: बहुत अच्छा कार्यक्रम सुन था दीदी, रायपुर लहर कार्यक्रम ला। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ा था मेघा पारा में।
0: अब बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार मन के कौन से गीत अपन ला सुना देना? आज
1: राम नारायण धुरी का है।
0: कौन से गीत?
1: धरतीला समार भैया मोर देश के लिए।
0: आपन के पसंद माँ आवाज सुने जाए राम नारायण ध्रुव और संगवारी मन के गाए ए गीत। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ई गीत सन से रात है आज के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम जाए के पहले अपन ला बता देन ओ फोन नंबर जेमा कॉल करके आप मन सुन सकत हो अपन पसंद के गीत कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ मा नंबर है 4003482 दूसर नंबर है 4003483 और तीसर नंबर है 4003484 और रायपुर के एसटीडी कोड हवे 0771 तय नंबर में कॉल करो गुरुवार बिहनिया 11 बजे और सुनो अपन पसंद की गीत सोमवार बिहनिया 11 बज के 5 मिनट में अपन ला बता देन आज के कार्यक्रम पर गीत जोड़े रहिन बीरभान साहू आप गीता देवा जम्मू संगवारी मल्ला तारकेश्वरी के राम राम
1: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो अभी आप सुन रहे थे फोन संवाद और प्रस्तुति तारकेश्वरी आसुदानी की थी आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
2: ये आकाशवाणी रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य और अब पेश है आज के मुख्य समाचार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है और जगदलपुर के पास बस पलटने से एक यात्री की मौत 30 यात्री घायल अब समाचार विस्तार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे ये कार्यक्रम माना स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया अभी तक प्रदेश के सिर्फ 16 जिलों में ये सुविधा थी लेकिन अब राज्य सरकार ने डायल 112 सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है इक्के नंबर सबोबर थीम पर आधारित ये सेवा पुलिस मेडिकल इमरजेंसी आगजनी सड़क दुर्घटना और आपदा जैसी हर आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी इस आधुनिक व्यवस्था के तहत 24 घंटे और सातों दिन अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी विकसित किया गया है इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए जहां वे नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी इसके बाद श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आज दोपहर वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों सुरक्षा बलों के जवानों नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे कल 19 मई को जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू होगा 25 मई तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के 8000 से अधिक गांवों में संचालित होगा आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म

0: भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। जगदलपुर के बालिंगा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज सुबह एक यात्री बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस रायपुर से कोंटा की ओर जा रही थी। जशपुर जिले में स्थित घोघरा डैम में डूब रही अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में मां ने भी अपनी जान गंवा दी। इस दर्दनाक हादसे में मां और 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो रहा है। और जगदलपुर के पास बस पलटने से एक यात्री की मौत, 30 यात्री घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। बारह बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
3: Hello, children. How are you?
4: We are fine, sir.
5: I am fine.
6: I am good, sir.
3: Fine. Good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
3: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
3: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
4: Yes, sir.
7: We like.
3: Lovely butterflies?
4: Yes, sir.
3: And lovely colorful chirping birds?
4: Yes, sir. We like it.
3: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
3: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
4: Yes, sir.
3: The rivers, the mountains, and the green trees.
4: Yes, sir.
3: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
4: Like us?
3: Would you like to listen?
4: Yes, sir.
7: We love to listen to the story.
3: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
4: Okay, sir.
3: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
4: Okay, sir. We love to recite it.
3: As I lie on my back, looking up at the sky.
4: Looking up at the sky.
3: I see a big white bear.
4: I see a big white bear.
3: Looking down at me.
4: Looking down at me.
3: As I lie on my back.
4: As I lie on my back.
3: Looking up at the sky.
4: Looking up at the sky.
3: I see a ship sailing. On a white sea.
4: On a white sea.
3: As I lie on my back.
4: As I lie on my back.
3: Looking up at the sky.
4: Looking up at the sky.
3: I see an elephant.
4: I see an elephant.
3: Waving its trunk at me.
4: Waving its trunk at me.
3: As I lie on my back.
4: As I lie on my back.
3: Looking up at the sky. Oh, it's fun. It's fun to me.
4: Oh, it's fun. It's fun to me.
3: To see whatever I want to see.
4: To see whatever I want to see.
3: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
4: Yes, sir.
7: They are beautiful.
6: They are very big.
5: They change the shapes.
3: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
4: Yes, sir.
3: So kids, here comes the song, As I Lie. What?

0: ध्यान की जानकारी देता है। विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
1: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
2: तुलसी गौडा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
3: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
4: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौडा।
1: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौडा
5: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
6: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
7: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
6: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
8: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाईं।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।

0: इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
1: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
2: अच्छा,
1: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
2: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
1: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
2: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
1: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
2: अच्छा,
1: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
2: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
1: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
2: बिल्कुल होता है।
1: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
2: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
1: है ना?
2: जी।
1: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
3: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
3: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
0: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
3: आइए जानते हैं कि मातृवृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृवृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृवृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
3: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
0: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लोक रंजनी आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंथी गीत कलाकार हैं बिसोहा राम जांगड़ी और साथी।

0: के पूजा करत वही गुरु के प्रार्थना
1: वही गुरु ला त याद कर ले
0: वो हमर तन के दुखला
1: हरण कर ले है।
0: हाथ जोड़ के मैया सतगुरु के प्रार्थना करे भैया।
1: अच्छा जी
0: सतनाम पिता महात्मा भेद बना के गुरु बाबा आंगन में प्रकट हो आंगन में प्रकट हो गुरु के दर्शन पा गए मैया याद जाके चरण में गिर गए भैया।
1: वाह भाई
0: गुरु परमात्मा भय वरदान दिए जाकर के मातम तिल्ला और जाकर अंतर ध्यान हो गए गुरु बाबा।
1: अच्छा गुरु जी
0: रात के समय महमूदा तो मातम तीर्घाट जाकर अपन शयन करी।
1: अच्छा
0: मातम के कान में नाना प्रकार बाजा का आवाज गूंजे लगे भैया।
1: हरे हरे
0: महमूदा बल कथे स्वामी
1: कैसे कैसे
0: हमारे गांव में मादर झान बजते ऐसे लगते
1: लागा थे हो
0: जाके तो देखा
1: देख ला
0: महमूदा बल कथे सुना था जो अमरो तीन
1: आ
0: परसों के दर्द से बाग व्याकुल हो समरो तीन ओगर सती तोर कान में नाना प्रकार गुंजार हुआ
1: थे। आ हा बात दिखाई देवत हो
0: 12 बजे में कहां तू कोनो जाके मादर पंथी बजाही।
1: हां
0: मातम जी के थे स्वामी
1: आए
0: ए लोक में नहीं मगर सतगुरु के लोक में जरूर
1: बाजा थे।
0: तो मातम जी का कहे
1: का कहे
0: ये संग

0: स्वामी हमारे घर में सुंदर बालक जन्म
1: बालक जन्म लेके आ गए है।
0: जान सुन मातल बुला के ले
2: वाली सुनला बुला के ले लान
0: अमर लोक में सतनाम पिता मियाँ सतु दिल कहे बेटी
2: कैसे
0: सहजन महंगुदास के घर में सुंदर बालक बन के जन्म ले लीजिए जल्दी ते जाके सेवा बजा के आ जा गाँव के सुन माता भेष बना के माता सती चले आवा
1: थे
0: महंगुदास बुलाए पर जात
2: अच्छा
0: बीच में मुलाकात हो ना
2: जी
0: महंगुदास बहा जोड़ के प्रणाम करे मैया चल मोर घर में सुंदर बालक जन्म लेके आए माता सत्वती जाके गुरु बाबा के घर में जब पहुंची
1: अरे
0: पलंग में बालक ला देखी
1: अच्छा
0: हाथ जोड़ के प्रार्थना करे पिता
2: अच्छा
0: तोर दर्शन पा गए मैं धन हो गया गुरु नहला धुला के शेख जुबर के मियाँ अमरोदिनी गोद में दे दी
2: दे दिएगा
0: और माता सत्वती अमर लोक में
1: चले गए।
0: सुबह के समय गांव के नर नारी में जाके आज खलबली मच गया कि महंगुदास घर में सुंदर बालक जन्म
1: लेके आए
0: भैया।

0: महमूद आजमा के घर में सुंदर जा कर गया, संत समाज माता पिता की भीड़ लगे।
1: अच्छा,
0: बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी गुरु बाबा के घर में पधारे भैया।
1: वाह,
0: आनंद भाई के बाजा बजा थे गुरु के घर में।
1: हाँ,
0: कैसे
1: कैसे

लोक रंजनी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंथी गीत। कलाकार हैं बिसोहा राम जांगड़े और साथी।

0: चर्चा कर्मा कर्मा अठी आनंद भाई के बाजा बजावत है भैया
1: बाबा जी
0: अमर लोक ले सदगुरु परमात्मा दाम के लोटा बेद के सोटा छोटे से बगल में दबा के अलग जगह दे चले
1: आवत है जी।
0: गिरधपुरी में जब गुरु बाबा पहुंची ना
1: हरे हरे
0: महंगू दास बाग के घर के दरवाजे के सामने जब वो आज मारे सतगुरु परमात्मा
1: अच्छा
0: महंगू दास बाग जान गए
1: हरे हरे
0: आज मो घर में सतगुरु परमात्मा आवत
1: आवत है तो इसे लगते
0: जाकर दरवाजा के पास में हाथ जोड़ गया गुरु के चरण में शीस नवा में भैया
1: वाह
0: गुरु बाबा लान की सुंदर आंगन ऊंचा सिंहासन में बैठा
1: हरे हरे
0: और हाथ जोड़ के कहते पिता
1: अच्छा
0: आज मोर घर में सुंदर बालक जन्म ले गया है पिता मोर बालक के नाम ला
1: बता देते गुरु बाबा
0: तो सतनाम पिता कथे महंगुदास
1: कैसे
0: अरे तोर बालक ला मोर गोद में लान के तू दे
1: दे दे
0: मातम रो तीन लुगरा कचरा मोड़ा के बालक ला सुंदर सतनाम पिता के गोद में दे दी
1: अच्छा जी
0: सतनाम पिता मस्तक की रेखा देख के कथे महंगुदास ये बालक के नाम ला चार वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण में खोजबे
1: ता नहीं

0: तोर बाला के नाम ला मैं घासी रख देता हूँ।
1: घासी रख दे
0: घासी नाम ला जब सुनिस ना।
1: हाँ जी
0: संत माता पिता मगन हो गए जय हो बाबा जय हो तोर गुरु।
1: अच्छा
0: बड़ा सुंदर था नाम ला बाबा के बता
1: बता दे गुरु बाबा।
0: छोटे से लगने मंगा जमीन में तीन रेखा खींचे।
1: अच्छा
0: और जन्म कुंडली बना के कथे महागुदास। जब तोर बालक बड़े बाढ़ी भैया जंगल में जाके धुनी रमाही
1: धुनी रमाही
0: बाघ भालू के कान पकड़ के खेला करी
1: खेला खेली भैया जी।
0: हाँ जोड़ के महागुदास में कथे पिता।
1: अच्छा
0: अभी तो मोर बालक छोटे 5 दिन जन्म लेके आए।
1: हाँ
0: और कहाँ पहाड़ पर्वत में लेके बाबा।
1: अच्छा
0: विलगोद में पाले और सुंदर मोर बालक के कीर्ति संत ला बता
1: संत मल्ला बता दे बाबा।
0: सत माता सत तो जा करके बालक गोद में पाली।
1: हाँ
0: और पा के गुरु बाबा खड़ा हो के का कहे
1: का कहे

0: मांगू दाद बा मैया हमरो दिन लगे पास में जाके कथे सुन तो हमरो दिन।
1: आहा का बात है का बात है।
0: हमर बालक के नाम ना गुरु बाबा बतावा थे
1: बतावा थे।
0: चल कहे कुछ दान दक्षिणा गुरु बाबा
1: दान दक्षिणा गुरु बाबा नामकरण में दे दे।
0: थाली मारती से जाके मात हमरो दिन महाबूदास बा सतनाम पिता के चरण में गिर गए।
1: जय हो
0: गुरु बाबा।
1: हरे हरे।
0: जिस प्रकार मोर बालक के नाम ल बताया है
1: बता हज गुरु बाबा
0: ओकर नाम के उपलक्ष्य में
1: अच्छा
0: पांच गाठा गोड़ धोआ डोली तोला दान में दे
1: दो बाबा। दान में दे दे गुरु बाबा।
0: सतनाम पिता कथे बाबू अरे रमता जोगी बहता पानी आज तोर गांव में हूं कल दूसर गांव में चले जाऊं
1: दूसर गांव में चल दे होगा।
0: अरे खेती बाड़ी का करूं
1: का करहु बाबू।
0: महंगू दाद बाबा जाकर घे देख दो बाबा मोर लाज बचा ले पिता
1: बचा ले बाबा।
0: ये दाना खून से इनकार कर देबे
1: तब
0: ये संत बना है तेरे मुल्क का कही।
1: अच्छा
0: सतनाम पिता दान लेकर के गोपाल पटेल के घर में जाकर के गोपाल पटेल के हस्तल में खेती छोड़ के अमर लोक में चले
1: गए
0: बाबू। सगा बहना रहा सब भोजन पानी खावे एक दिन दो दिन चार दिन रहने के बाद अपन घर में चले गए। मांग के महीना बाबा जन्म ले है भैया ठंडा ठंडा हवा चलत रहे।
1: अच्छा जी
0: बादल गजे तो उसके समय मातम दिन मन में सोचते
1: ऐसे
0: देख तो दाई
1: यहाँ
0: ठंडा ठंडा हवा चलत
1: हवा चलत हो
0: मोर बालक ला सर्दी लग जही जूड़ धर ली मातम दिन गोरसी भरा गी दगाली।
1: अच्छा
0: और दोनों पाँव लमा गा गई आंस देखे गुरु बाबा
1: सेकत है
0: मातम दिन कैसे सेके
1: कैसे सेके
0: सोच

लोक रंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंथ गीत। कलाकार थे बिसोहा राम जांगड़े और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है, 1 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गुलजार का लिखा गीत। संगीता डी बर्मन का है। फिल्म का नाम है आंधी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं हंसते जख्म। इस फिल्म का गीत गीतकार कैफी आजमी, संगीत मदन मोहन का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना साहिर का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर, पब्लिक स्पीक का समय होगा रात 9:30। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर बिंदिया कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा समय के साथ खुद को बदलना। सुनिएगा आपकी चिट्ठी आई और आप सुनेंगे एक ही कलाकार।

शाम 5:10 पर युवावाणी कार्यक्रम में आजकल का विषय होगा मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क। विज्ञान मंच में सुनिएगा रोबोटिक्स और मानव जीवन इस विषय पर जानकारी देंगी ईशा पांडे और आप सुनेंगी शामी गजल।

सुगम संगीत शाम 6:30 पर कलाकार होंगे शंकर शंभू और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे अंबर कुमार देव को।

चौपाल कार्यक्रम में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा दीर्घकालीन उत्पादकता हेतु प्राकृतिक संसाधनों की बचाव। आज की सलाह में पौध संरक्षण के बारे में जानकारी देंगी पी रजनी राव, पादप रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।

पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम शुरू का सफर सुनिएगा रात 10 बजे। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं इसी सभा में दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 9:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे। हम आपको एक बार फिर बता दें श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर, पब्लिक स्पीक का समय होगा रात 9:30। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

खत्म हुई आपकी प्रतीक्षा, खत्म हुआ आपका इंतजार। आज है सोमवार, आ गई है बिंदिया आपकी द्वार, लेकर ज्ञान और मनोरंजन की बहार। तो स्वीकार कीजिए आपकी अपनी बिंदिया सखी श्वेता बहुरा का स्नेह भरा नमस्कार। सखियों, देखिए गर्मी के मौसम में अचानक कैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है। कभी तेज गर्मी लगती है तो कभी अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो जाती है। मौसम में ये परिवर्तन अनेक प्रभाव के कारण होते हैं और समय के साथ मौसम बदल भी जाता है। बहनों, आज से 15-20 वर्ष पूर्व की बात करें तो सबके हाथ में जो मोबाइल होता था वो छोटा होता था, है ना। तकनीकी रूप से ये उतना उन्नत भी नहीं था। फिर समय बदला और फोन भी बदले। आज दुनिया आपके फोन में सिमट गई है। समय के अनुसार बदलना यही प्रकृति का नियम भी है। जो व्यक्ति खुद को समय के अनुसार नहीं बदलता है वो जीवन में एक समय बाद पिछड़ जाता है और फिर वो खुद को एकाकी और अकेलेपन के कारण कुंठा से ग्रसित भी हो जाता है। बहनों, समय के अनुसार खुद को बदले। हर वो नई चीज सीखें जो आपकी प्रगति में सहायक हो। वैसे सखियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद को बदलना चाहते हैं पर एक झिझक हमें रोक लेती है ना। जैसे कि चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कभी हम आलस्य भी करते हैं तो कभी हम ये कहते हैं कि अपने समय में हमने बहुत सीख लिया, अब हमारी उम्र नहीं है नया सीखने की, अब तुम ही सीख लो। ऐसे बहुत से कारण हैं जो हमें खुद को बदलने से रोकते हैं। बहनों, जीवन में हमें जो जीवन है हमें वो एक बार मिलता है, तो क्यों ना हम समय के अनुसार साथ चले और आगे बढ़ें, खुद को बदलने से रोके नहीं। बहनों, इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ गई। लॉकडाउन का समय था, जो जहां है वो वहां रह गया था। ऐसे में पड़ोस में रहने वाली एक आंटी थी जो बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके बच्चे जो थे वो दूर थे और वो एक जगह दूसरे जगह में थी, मतलब एक शहर से दूसरे शहर। तो उनके बच्चों से वो फ़ोन में तो बात कर पा रही थी पर उनका वो चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। ऐसे में सखियों, माँ की व्याकुलता को तो आप सब समझ ही सकती हैं। उनके पास स्मार्टफोन तो था पर उनको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता था। जब उन्होंने ये हमें ये समस्या बताई तो हमने कोशिश की और उन्हें स्मार्टफोन में वीडियो कॉल करना सिखाया। पहले तो उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई, फिर बच्चों को देखने के मुँह में उन्होंने कोशिश जरूर की और यह कोशिश जो है वो सफल भी हुई। फिर क्या था, तब से अब तक वो वीडियो कॉल में ही अपने बच्चों से बात करती हैं कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारा चेहरा तो दिखाओ मुझे, तुम कैसे दिख रहे हो, ये क्या हो रहा है। वैसे बहनों, उन्होंने समय के अनुसार खुद को बदला और ये बदलाव एक सार्थक पहल लेकर आया। इसलिए समय के अनुसार बदलने से खुद को रोके नहीं, क्योंकि यही बदलाव जिंदगी को एक नई दिशा देगा। वैसे सखियों, हम भी समय के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी आपने गाइड फिल्म से ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र की लिखी शब्द रचना को संगीत से सजाया था SD बर्मन ने। और सखियों, आज है माह का तीसरा सोमवार। आज हम लाते हैं वो क्रम जो आपकी भावनाओं से लिपटे पत्रों से जुड़ा है। सखियों, आज है क्रम आपकी चिट्ठी आई है का। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्रम आपकी चिट्ठी आई। सखियों, ये पहला पत्र जो मेरे हाथ में है वो आया है सिमगा से, भारतीय सेन, सुनंदा, विजया, ललिता, मीरा और रामेश्वरी सेन ने। ये सखियां लिखती हैं कि 22 मार्च को प्रसारित बिंदिया की महफिल में खुशियों की बौछार लेकर आई थी हमारी रेडियो सखी मंजुला जैन जी, जिन्होंने मधुर मिठास

अमलेडी से प्रभा देवांगन जी ने। ये सखियां लिखती हैं कि 23 मार्च की बिंदिया लेकर आई रीता श्रीवास्तव जी। इस दिन नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता पर युवा बहनों की जागरूकता के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण विचार सुने, साथ ही जो इन्हें बेहद उपयोगी भी लगे। साथ ही इस दिन प्रसारित एक परिचर्चा विवाह का बदलता स्वरूप और समाजीकरण, इस विषय पर ये जो परिचर्चा हुई इन्हें बहुत उपयोगी लगी। इन्होंने कार्यक्रम में सहभागी रत्ना नौरंगे, सीमा कैंसरवार, डॉक्टर वर्षा वर्मा जी को भी इन्होंने अपनी बधाई प्रेषित की है और सफल प्रस्तुति के लिए इन्होंने बिंदिया अनुभाग को बधाई दी है। तो धन्यवाद सखियों, आप हमारा कार्यक्रम इतने मन से और तल्लीनता से सुनती है और हमें ऐसे समीक्षात्मक पत्र लिखती हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है और हमारा प्रयास रहता भी है कि आपको ऐसे ही विषय पर परिचर्चा सुनाए और ऐसे विषय जो आपको ज्ञानवर्धक लगे और विचार उत्पन्न करे, ऐसे विषय हम समय समय पर प्रसारित भी करते रहेंगे परिचर्चा के माध्यम से और वार्ताओं के माध्यम से। और सखियों, पत्रों का सिलसिला यूं ही बनाए रखिएगा। और इस दिन के कार्यक्रम को हमारी इन सखियों ने भी पसंद किया है। ये हैं सिमगा से भारती, विजया, सुनंदा, ललिता, रामेश्वरी, मीरा सेन। सखियों, ये जो अगला पत्र मेरे हाथ में है वो 26 मार्च की बिंदिया के लिए हमें प्राप्त हुआ है। 26 मार्च को विश्व थिएटर दिवस और रामनवमी पर चर्चा हुई थी। इस दिन सेहत की बात में डॉक्टर आंचल अग्रवाल से पूजा अग्रवाल की बातचीत ज्ञानवर्धक लगी। विशेष कार्यक्रम भय प्रकट कृपाला गीता शर्मा की प्रस्तुति इन्हें मनमोहक लगी। सफल प्रस्तुति के लिए इन्होंने बिंदिया अनुभाग को और पेयर साथी पूजा अग्रवाल, गीता शर्मा और डॉक्टर आंचल अग्रवाल को भी बधाई प्रेषित की है। और ये पत्र लिखा है सिमगा से नेहा साहू, ममता, दीपा और दुर्गा साहू ने। तो धन्यवाद सखियों कि आपने हमें ये ऐसा समीक्षात्मक पत्र लिखा। हम आपकी बधाई स्वीकार करते हैं और आपकी बधाई हम अपनी बिंदिया सखियों को भी प्रेषित करते हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम के माध्यम से आंचल अग्रवाल तक भी आपकी बधाई को प्रेषित करते हैं। यूं ही पत्रों का सिलसिला बनाए रखिएगा। सखियों, ये अगला पत्र मेरे हाथ में है 5 अप्रैल की बिंदिया के लिए। ये लिखा है अम्बागढ़ चौकी परसा टोला से सुलोचनी मसिया, तुषारणी, पायल, गरिमा, दीपिका, रोहिणी, काजल, मेघा, वर्षा और जुनियाबाई मसिया ने। ये सखियां लिखती हैं कि इस दिन सरिता मिश्रा जी की प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी। आपकी रसोई से अनूठे उस सभी व्यंजन लेकर आई रचना सिंह, जो हमें बहुत अच्छे लगे और ज्ञानवर्धक भी लगे। मनमोहक गीत ने मन को मोह लिया। अच्छी प्रस्तुति के लिए बिंदिया अनुभाग को और रचना सिंह जी को इन्होंने बधाई प्रेषित की है। धन्यवाद बहनों, आपके ये ऐसी पत्र जो है और ईमेल जो है हमें हमारे उत्साहवर्धन करते हैं कि हम आपके लिए नए से नए कार्यक्रम और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम की हमेशा प्रस्तुति तैयार करते रहें। धन्यवाद सखियों, यूं ही पत्रों का सिलसिला बनाए रखिएगा। और बहनों, इसी के साथ आपकी चिट्ठी आई का ये क्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपको पत्र भेजने के लिए हमारा पता बता दें। क्रम आपकी चिट्ठी आई, बिंदिया अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रायपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन नंबर है 492001। और हमारा ईमेल का जो पता है जिसमें आप मेल भी कर सकती हैं, अपने विचारों को साझा भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है raaiapkichitti11@gmail.com। सखियों, आप अपने पत्र पोस्ट के माध्यम से और मेल के माध्यम से हमें अपने विचार ज़रूर प्रेषित कीजिए। हो सकता है अगला विचार और अगले पत्र ईमेल जो है आपका भी शामिल हो जाए। इसी के साथ आपकी चिट्ठियाँ आई का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। सखियों, आज है क्रम एक ही कलाकार का। आज के इस क्रम में हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बारे में। हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1980 और 90 का दशक जो था वह दशक था माधुरी जी के नाम। इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री और सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। इनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू चला कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई।

माधुरी दीक्षित ने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत वर्ष 1984 में अबूद नामक फिल्म से की थी। बचपन से ही उन्हें नृत्य में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने 8 वर्ष तक कथक का प्रशिक्षण लिया और अपनी नृत्य प्रतिभा अपने अभिनय के क्षेत्र में उन्हें बहुत सहायक भी रही। माधुरी दीक्षित अपने इस नृत्य प्रतिभा के सहारे धक धक गर्ल के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

वर्ष 1984 से 1988 के बीच माधुरी दीक्षित की अन्य भी बहुत सारी फिल्में भी आई, पर वर्ष 1988 का वह समय आया जब उनकी तेजाब फिल्म प्रदर्शित हुई। तेजाब फिल्म सुपरहिट साबित हुई और माधुरी ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। रामलखन, परिंदा, त्रिदेव, कृष्ण कन्हैया, प्रहार, ये वो फिल्में थी जब माधुरी दीक्षित हिट फिल्मों का दूसरा नाम बनी। वर्ष 1990 में दिल फिल्म ने माधुरी दीक्षित के अभिनय को सराहा और उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। माधुरी दीक्षित के फिल्मी सफर के बारे में बात करेंगे तो साजन, खलनायक, अंजाम, राजा, याराना, मृत्युदंड, लज्जा, पुकार, आजा नचले, देड़िश्किया, भूलभुलैया 3 जैसे फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनाया। सखियों, माधुरी की दीक्षित जी 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी हुई। दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला तो वर्ष 2003 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए देवदास फिल्म के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो चलिए सखियों, आइए सुनते हैं उनकी प्यार इनके फिल्म हम आपके हैं कौन का ये प्यारा सा गीत।

वर्ष 1999 में माधुरी दीक्षित जी विवाह के बंधन में बंधी। माधुरी दीक्षित जी ने लगभग 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। वर्ष 2023 में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। माधुरी दीक्षित जी आज भी अनवरत रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही है। तो आइए सुनते हैं उनके फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम एक ही कलाकार, जो कि केंद्रित था फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। सखियों, आज हम टिप्स में जागरूकता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, जो कि 18 मई को मनाया जाता है। एचआईवी टीकाकरण के समर्थक इस दिन एचआईवी संक्रमण और एड्स की रोकथाम के टीके की निरंतर और अत्यंत आवश्यक आवश्यकता पर बल देते हैं, और यह एड्स टीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके इसलिए भी यह दिवस मनाया जाता है, और इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को हिम्मत दी जाती है। सखियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है जाने का, पर जाने से पहले एक विचार। अनजानी पगडंडी सी है जीवन की भी राहें, अनजानी पगडंडी सी है जीवन की भी राहें, है लक्ष्य उन्हें मिल जाता जो सच्चे मन से चाहे, है लक्ष्य उन्हें मिल जाता जो सच्चे मन से चाहे। इसी के साथ दीजिए विदा और स्वीकार कीजिए आपकी अपने बिंदिया सखी श्वेता बोहरा का स्नेह भरा नमस्कार।

बिंदिया ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में कामचोर इस फिल्म का गीत, बोल इंदिवर के, संगीत राजेश रोशन का।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अब सुनिए हीरा पन्ना। इस फिल्म का ये गीत संगीत आर डी

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अगर तुम ना होते इस फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की है, संगीत एक बार फिर आरडी बर्मन का।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
4: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
1: രാജ്യപാൽ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറിനെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കെ 20 നയ മന്ത്രിയോക്കു ശപഥ ദിലായി നയ ക്യാബിനറ്റ് മേ ഷാമിൽ 16 സദസ്യ പഹലി ബാർ മന്ത്രി ബൻ രഹേ ഹേ ഇസ്മേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കെ 11 പ്രതിനിധി ഹേ ജബ്കി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കെ 5 മന്ത്രി ഹേ നയ സർക്കാർ മേ ഷാമിൽ വരിഷ്ഠ നേതാവോ മേ പൂർവ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ രമേശ് ചെന്നിത്തല വർത്തമാൻ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സന്നി ജോസഫ് കെ മുരളീധരൻ ഓർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കെ നേത പി കെ കുൻഹാലിക്കുട്ടി ഷാമിൽ ഹേ शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
5: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी

0: इसे फैले। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

0: मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए जब दिल किसी पे आता है, इस फिल्म का गीत, आवाज़ ए हरिहरन की, गीतकार देव कोहली।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए
7: कहिए कहिए।

विजयपति इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजी का ये गीत। आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की, मजरू के बोल अनु मलिक का संगीत।

घात इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और ए हरिहरन की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।
1: प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चा अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्तु।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूल के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया गया है। महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। एक ऐतिहासिक फैसले में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्रुप बी के पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष की रहेगी। और IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Oslo, Norway as part of his multi-nation tour. This visit includes bilateral talks between India and Norway and also the third India-Nordic summit. The visit will give impetus to India's relations with the Nordic countries. The Prime Minister, after concluding his two-day visit to Sweden, said his visit was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. In a social media post, Mr. Modi said, from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor, to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Congress leader V.D. Satheesan was sworn in as the new Chief Minister of Kerala today at a grand ceremony held at the Central Stadium in Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Satheesan. A 21-member cabinet took office alongside the chief minister. 16 members in the new ministry are becoming ministers for the first time. The Congress party has 11 representatives in the new cabinet. The Indian Union Muslim League has 5 ministers. Immediately following the swearing-in ceremony, the newly formed government convened its first official cabinet meeting today. The cabinet of the government of West Bengal has given in principle approval to the formation of the 7th pay commission for the employees of the government of West Bengal, various government boards, corporation and other state-aided bodies and schools. In a significant decision, the cabinet today also gave in principle approval to stop various direct benefit transfers from the 1st of June under the Information and Cultural Affairs Department and Minority and Madrasa Department of the state government. The scholarship schemes will continue under these departments. The state government also gave approval for the free transport facility for women in the state. The Annapurna scheme will be introduced from the 1st of June for the women of the state, under which 3,000 rupees will be transferred under the direct benefit transfer. Chief Minister Shubhendu Adhikari chaired a cabinet meeting today at the State Secretariat, Nabanna. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today flagged off a fleet of state-of-the-art Dial 112 emergency response vehicles and modern forensic mobile vans at a state-level function held in Raipur. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties, launching the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi today. Mr. Goyal emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
5: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest-growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly, and keep bringing new ideas and innovations forward.
4: U.S. President Donald Trump has warned Iran the clock is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. Iranian state media said a lack of compromise from Washington would lead to an impasse in the negotiations. Benchmark domestic equity indices were trading down during the last hour of trade today. The Sensex dropped 73 points to 75,165, while the Nifty slipped 38 points to 23,606 when reports last came in. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.A. Chidambaram Stadium at 7:30 p.m. this evening. And with that, we end this news bulletin.

हाँ जी, अब और नहीं किया जाता होल्ड अपनी एक्साइटमेंट और क्या, क्योंकि आ चुका है मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम FM गोल्ड aayateri@gmail.com पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। और हम हैं रूमी मलिक, जिसका हमें था इंतजार, आखिर वो घड़ी आ ही गई है।

जिसका मुझे था इंतजार। देख लो मंडे आफ्टरनून्स को बनाने के लिए दिलकश आ गए हम आपके पास। मन भावन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 101 मेगाहर्ट्ज पर, और झड़ी लगी हुई है, झड़ी रे झड़ी, मैसेजेस की ये झड़ी। कुमकुम जी, हाँ जी, इन्होंने अपने आप को, देखो क्या बात है, बहुत कमाल की बात है, ऐसे एड्रेस करना चाहिए, अपने नाम में इन्होंने लिखा है। कुमकुम जी हमें क्या लिख रही हैं, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, आवाज मुकेश, फिल्म अनाड़ी। अच्छा सुनना है ये गीत मेरी जान, अभी सुनाते हैं। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। कुमकुम आपके साथ कौन कौन है, विजय सुरलकर हैं, रत्नमाला हैं, और मोताला महाराष्ट्र से आप लिख रही हैं। रूमी जी वेलकम, इन्होंने लिखा है मुझे, भाई मेरी जो स्पेलिंग ठीक से लिखा करो यार, म में बड़ी ई की मात्रा, रूमी रूमी रूमी नहीं है ये, है ना, ठीक है कुमकुम जी। ओके जी, अब बाकी कितने उन्होंने लिखा है हमें, हम उनके नाम तो पढ़ दें, अटेंडेंस तो लगा लें। अरे पांडु, चंदन, शमसुल, कमर, राही, गंड, जुंड, गंड डुंडवारा, देखो मैं पूरा पढ़ती हूँ, हरजिंदर शिंडा, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, धर्मेंद्र छीपा जी, एचआर पांड्या, रुपेश सांघाई, बबलेश पंवार, देखो ये अटेंडेंस हो रही है, ठीक है ना, नाम बोले जाते हैं अटेंडेंस में, एड्रेस नहीं बोला जाता। अस्मा खातून, और देखें किशन वंजानी, संदीप मक्कड़, चंदूलाल पटवा जी, और अकरम हुसैन प्रिंस, ठीक है ना, ये सारे नाम मैंने ले लिए। अनंता वाड़े, सतीश अनेजा जी, कौशल्या देवानगन जी, है ना, एक मिनट रुको, और कोई है नाम, फारूक अली खान है, रोशन जहान है, ठीक है, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब तक ये आए हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ मैंने पढ़ दिए सबके नाम, कौशल्या जोशी, किशोर गुप्ता, आर कुमार, संदीप सिंह, अहमद फूलवाले, मेहर अरोड़ा, हनुमंत शिंडे, अनिल मोहन, ताज मोहम्मद, नीटू मल्होत्रा, देखो फागुराम यादव, है ना, ठीक है। तो अब मैं कह रही थी विश्वनाथ साहू जी, आप सभी का, बबलेश पंवार, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये सुन लें हम गीत, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान हमारे साथ है, और नहीं तो क्या।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और अनंत वाड़े जी हमको लिख रहे हैं मेल, वाड़ी खामगांव से। अनंता के साथ में रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार सुनना चाहते हैं फिल्म काम चोर का गीत। हाय हाय, गर्मी में काम करने का दिल नहीं करता ना, काम चोर नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी से आप बच के रहें और ख़ासकर अपने सिर को भी ढक के रखें। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, पहले के ज़माने में पगड़ी पहनते थे या आँचल सिर पे रखते थे, आजकल हैट या कैप लगाते हो, स्कार्फ पहनते हो, बात तो वही है ना, क्योंकि हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा दोनों एंड्स पे सिर और पैर से बहुत जल्दी एस्केप होती है। तो अपने दिमाग को भी ठंडा रखो अच्छे से। कई बार होता है ना गर्मी में लोगों का बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, तो ठंडे रहो, कूल रहो और अच्छे अच्छे गाने सुनते रहो आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एफएम गोल सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी पर मन भावन कार्यक्रम चल रहा है। गिरीश बैम हमको मैसेज लिखते हैं वडोदरा गुजरात से। मैंने ठीक नाम आपका पढ़ा पर आपने बहुत अच्छा मेल बहुत अच्छे से लिखा। यही फर्क होता है। देखो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आपकी भाषा ही आपके पूरे व्यक्तित्व की परिभाषा है। आप किस तरह से ईमेल लिखते हैं उसी से मालूम चल जाता है सब कुछ। ज़्यादा क्या कहने की ज़रूरत। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड रुम्मी जी, आर यू एम आई है, एम एम आई नहीं है जी, रिस्पेक्टेड रुम्मी जी। वी आर रेगुलर लिसनर्स ऑफ AIRFM गोल्ड दिल्ली, थैंक यू सो मच। मैसेजेस आर नॉट टेकन इन मन भावन। नो दैट इज़ नॉट द केस गिरीश जी, वी डू टेक मैसेजेस एज एंड व्हेन वी गेट इट, है ना। कई बार जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ईमेल्स का, तो कुछ ईमेल्स नीचे चली जाती हैं, तो आरजे अपने ही सॉर्टिंग जिस भी तरह से करते हैं। कोशिश तो यही होती है सबके नाम पढ़ने की। अभी कह रहे हैं कि प्लीज़ प्ले द सॉन्ग फ्रॉम अवतार। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। गिरीश बैम, वैशाली, अजिंक्या, अंजलि, जीत, रिया, अतुल, स्वाति, गुजरात से सुनिए ये गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आपका स्वागत है। हमारे साथ अगले लिसनर जुड़ चुके हैं चुरू राजस्थान से, भंवर सिंह मीणा जी, राजा नंदवाणी जी, जगदीश मंडल जी, अरविंद खारडिया जी। ये चाहते हैं फिल्म अनुरोध का गीत सुनना, मेरे दिल ने तड़प के क्या कहा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: gmail.com पर बड़े सारे लोगों के संदेश आ रहे हैं। हम भी तो आपकी क्लास में बैठे हैं मैडम। नई दिल्ली उत्तम नगर से जयराम खोरवाल लिख रहे हैं हमें, सचिन के साथ, अमन दीपांशु के साथ, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म शालीमार का गीत, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। तो ये गाना कहा है आपने, हम नहीं बात करते आपसे जयराम जी की, जयराम जी की कह रही हूँ आपको, पर गाना आपके पसंद का सुना देती हूँ। जयराम आपको वो गीत नहीं पसंद शालीमार का, मेरा प्यार शालीमार, क्या गाना, ये पत्थर ये है रूबी, क्या कमाल का गाना गाया है आशा जी ने वो। पर चलिए अब हम ये गीत सुनाते हैं आपको, ये बेवफा वाला गीत है ना। अपनी पसंद बता दी है ना, देखो क्या कहें, चलो इस गीत के उस पर कुछ कहेंगे अगर कहा तो।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी।

अपने काम के प्रति, अपने आकाशवाणी के प्रति, तभी हम आज तक यहाँ हैं, आपके सामने प्रूफ है। सचमुच में क्या बताना था आपको शालीमार फिल्म के बारे में भाई? सबसे पहले तो ये पता लगा कि इस गाने में झींगा लाला उ, झींगा लाला उ, तो झींगा लाला जो है, जो शब्द काफी इस्तेमाल होता है मजाक मजाक में, वो देखिए इस गीत में है। दूसरी चीज, शालीमार फिल्म में धर्मेंद्र थे और रेक्स हैरिसन भी थे क्योंकि ये फॉरेन कोलैबोरेशन से बनाई गई थी ये फिल्म, और ये दोनों एक्टर्स जो हैं हिंदुस्तान के, बहुत मुझे लगता है विश्व के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक बार गणना हुई थी धर्मेंद्र जी की, तो धर्मेंद्र और रेक्स हैरिसन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दोनों को एक दूसरे की भाषा भी नहीं आती थी, तो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते थे। धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी और रेक्स हैरिसन अंग्रेजी, पर उनको एक दूसरे को समझ में नहीं आता। खैर, फिर भी फिल्म तो बनी और गीत तो हिट रहे। रिस्पेक्टेड आरजे, योर वॉइस इज सो स्वीट। अच्छा, सचमुच में कौन लिख रहे हैं? सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली, और आप सुनना चाहते हैं गीत अपने प्यार के सपने सच हुए। मैं सचमुच में दुआ करती, दिल से दुआ है, दिल से दुआ है, जो ये कार्यक्रम सुन रहा है आप सारे सपने आप लोगों के पूरे हो। आप सुन रहे हैं आरजे रूमी मलिक को आकाशवाणी एफएम गोल्ड मन भावन कार्यक्रम में 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, खरा सोना।

सच हुए। भारत भूषण जी मुझे व्हाइटफील्ड बैंगलोर से लिख रहे हैं, देखो इनका एड्रेस याद हो गया। लिखते हैं, इंडीड यू आर अ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मन भावन स्कूल, यू डिडंट इंक्लूड माय ईमेल डिस्पाइट माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ भारत भूषण जी, व्हेन डिड आई सी योर ईमेल, मैंने देखा ही नहीं। देखिए इन्होंने लिखा, नमस्कार, एक ज्योतिषी से मैंने पूछा कि आपके पास कोई ऐसा तंत्र मंत्र या टोटका है जिससे मेरा मेल मन भावन में अवश्य शामिल हो जाए। जानती हैं ज्योतिषी ने क्या कहा? उसने कहा कि यदि मेरे पास ये सब होता तो मैं अपना मेल मन भावन में शामिल नहीं करा लेता। क्या बात है, लवली जोक। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, आई रियली लव यू ऑल, पौर संस्कृति पौरुष, मेरी जान हो आप सब। और देखो इतने अब जो है वक्त, कितना जितना भी वक्त बचा है, कोशिश कर रही हूं ना सबके ईमेल्स लेने की। बब्बा उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव, सत्यम, ये हमें लिख रहे हैं पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, और आदाब मुझे लिख रहे हैं नवी हसन, शहनाज, नवेद, रसीद, सुहेल, है ना। और ये कह रहे हैं कि इनका भी गीत जरूर शामिल करूंगी, चिंता न करो, 4:10 से 4:20 के बीच में शामिल कर लूंगी पक्का। किशोर गुप्ता हमारे साथ है, माहिरा मलिक, रूमी जी प्यार भरा आदाब, बेशुमार मोहब्बत, क्या बात है। इनके साथ में आयशा जोशा जैनब है, ठीक है। और मुझे क्या करना था, और किसका ईमेल आया था, दिग्दर्शन गौर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर खिल्लू परवेज ये लिखते हैं, सेफ सेव वाटर सेव लाइफ, जी हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और प्रॉमिस करती हूँ आपको, गुम है किसी के प्यार में अभी आप सुनेंगे 4:10 पे पक्का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉरस्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ का उनका स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की और साझा प्राथमिकताओं पर WHO के साथ सहयोग और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए कल रात स्विट्जरलैंड पहुंचे। स्वास्थ्य सभा का समापन शनिवार को होगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल में राज्य विस्तार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य के महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया गया है। 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐतिहासिक फैसले में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्रुप बी पदों के लिए सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा वर्ष अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has concluded his visit to Sweden and arrived in Norway as part of his five-nation tour. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0, and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor. The talks also set a goal of doubling bilateral trade in the next 5 years. Mr. Modi thanked the people of Sweden, the government of Sweden, and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's

नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्ले सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सब के साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष्य पर हम सब इतने खुश हैं और तरक्की करें आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

0: Director, National Bal Bhavan, Kotla Road, New Delhi 11002. And the website is www.nationalbalbhavan.nic.in. The Institute of Secretariat Training and Management has invited applications for faculty and administrative posts on deputation basis, including Additional Director, Joint Director, Deputy Director and Assistant Director. These posts are open to officers from central or state governments, universities, research institutions, PSUs and autonomous organizations. Selected officers will also receive training allowance as per government norms. Applications with biodata, vigilance clearance, cadre clearance and APARS must be submitted within 60 days. For details, kindly refer to the website, that is at www.istm.gov.in. I repeat, it is www.istm.gov.in. The Department of Agriculture and Farmers Welfare has announced a vacancy for the post of Scheme Officers in Pay Level 7. The post will be filled through deputation or promotion. Applicants should have qualifications in agriculture, agricultural chemistry, entomology, plant pathology, weed science or related fields, along with experience in plant protection and handling insecticides. Applications in the prescribed format must be sent through proper channel within 60 days from the date of publication of the vacancy notice. For details, kindly refer to the website at www.agriwelfare.gov.in. NISBUD, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, has invited applications for the post of an administrative officer at its Noida campus on deputation basis. There is one post in level 10 pay scale as per the 7 CPC. Detailed eligibility conditions, application format and recruitment rules are available on the institute's website. Kindly apply within 30 days from the date of publication of this advertisement in the employment news. For details, kindly refer to the website at www.niesbud.nic.in. NEGRIMS Shillong has invited applications for the post of Executive Engineer Civil on deputation or promotion basis. There is one vacancy in level 11 as per the 7 CPC. Eligible officers can apply through proper channel within 45 days from the date of publication of this advertisement in the employment news. Detailed eligibility criteria, application form and updates available on the official website. Do refer to www.negrims.gov.in. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has invited applications for 5 posts in the budget press on deputation or absorption basis. The vacancies include press assistant maintenance, foreman bindery, offset machine man grade 2, plate maker and bindery assistant. These posts are meant for eligible central government employees with experience in printing technology, offset machine operations, bindery maintenance and related technical trades. The pay scales range from level 2 to level 6 as per the 7 CPC. Applicants must send their applications through proper channel along with APARS, vigilance clearance, integrity certificate and supporting documents within 60 days from the date of publication in the employment news. For details, do refer to the website at www.dea.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। IRGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस, रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु ये है कैंपस। रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए बीई बीटेक सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। टीजीटी गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं। संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। टीजीटी हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं। संविदात्मक आधार पर टीजीटी सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त है संविदात्मक। टीजीटी मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त हैं संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में 1-1 स्थान अनारक्षित संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद 3 स्थान यहाँ रिक्त है संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे सहयोगी हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
5: हेलो प्रियंका।
4: जी हाँ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या है खास। इसके अलावा खेल के मैदान की भी हलचल रहेगी, आर्थिक जगत पर भी हम डालेंगे नजर। तो बहुत कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में। आगाज करते हैं आज का कार्यक्रम अपने सहयोगी अभिषेक के साथ।
5: Yes, hello and a very warm welcome to the news magazine program Parikrama on 100.1 FM Gold. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me, of course, today is my co-host Priyanka Arora. Well, listeners, he was an

0: 11th century Persian polymath, famous worldwide for his profound philosophical poetry, pioneering mathematical discoveries, and highly accurate astronomical calendar. Yes, he's none other than the Persian poet and polymath Umar Khayyam. And today we observe his birth anniversary. We shall talk about him late in the program. But first of all, we start with the news headlines at this hour.
1: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे. श्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर के बीच वार्ता जारी.
0: Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double the trade in the next 5 years.
1: कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
0: West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया.
0: And in IPL cricket, host Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. Yes, and now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Museum Day. Well, Priyanka, International Museum Day has been celebrated today. And this year's theme, Museums Uniting a Divided World, highlights the role of museums in fostering dialogue, understanding, inclusion and peace across cultural, social and geopolitical divides. And the objective of International Museum Day is to raise awareness about the fact that museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples.
1: जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में बात करें तो उससे पहले बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं मेरे पास और किसी ने क्या खूब लिखी है कि एक वस्तु जब किसी को अपना हृदय देती है तो जीवन भर के लिए दे देती है. वह अपना शरीर भी उसको करती है समर्पित और इतनी अंतरंग हो जाती है कि सिर्फ उसी को देखकर पहचान लिया जा सकता है आदमी को. पटरियों के किनारे या अनजान सड़कों पर कितनी ही शिनाख्त वस्तुओं से हुई और वस्तुओं ने लोगों को लावारिस नहीं रहने दिया. कई बार वे कहानियों के सिंहासन की तरह या वरदान में मिली पोशाक की तरह पेश आती हैं. जी हाँ, संग्रहालय में रखी अमूल्य वस्तुएं सदियों पुरानी सभ्यता को सहेजे हुए हैं. महाद्वीपों और पीढ़ियों तक संग्रहालय मानव सभ्यता के निशानों को सहेज कर रखते हैं, अपने साथ यादें, संस्कृति और वे कहानियां लिए हुए जो लगातार इस बात को आकार देती हैं कि हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं. हालांकि वे अलग अलग इतिहासों और परंपराओं से गढ़े गए हैं, फिर भी वे ऐसे स्थान बने रहते हैं जहां लोग समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए एक दूसरे से रूबरू होते हैं.
0: Yes, Priyanka, and museums are trusted public spaces where people encounter stories, objects and one another. And in times of social fragmentation, polarization and unequal access to knowledge and culture, museums help rebuild connection across generations, across communities and across borders, fostering dialogue, understanding, inclusion and peace within and between communities worldwide.
1: जी, और शुरुआत में जैसे आपने इस बार का जो विषय है बताया है कि संग्रहालय विभाजित दुनिया को जोड़ने वाले, और इस लिहाज से ये विषय बहुत ही सटीक है क्योंकि ये सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों के बीच सेतु का काम करते हैं. ये दुनिया भर के समुदायों के भीतर और उनके बीच संवाद, समझ और शांति को बढ़ावा देते हैं. सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक दृष्टि से जो मतभेद हैं, ऐसा नहीं है कि संग्रहालय इन्हें एकदम से मिटा देते हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनमें मतभेदों को समझा जा सके और उनका सम्मान के साथ समाधान किया जा सके. ऐसा वे विरासत और स्मृतियों को सुरक्षित रखकर सीखने और चिंतन के अवसर प्रदान करके तथा ऐसे स्वागत योग्य स्थान उपलब्ध कराकर करते हैं जहां विविध आवाजों को सुना जा सके. खुले और सभी के लिए सुलभ होने के कारण संग्रहालय विविधता और निरंतरता को बढ़ावा देते हैं.
0: Since its inception, Priyanka, UNESCO has recognized museums as one of its most important partners for building peace in the minds of women and men. Today, museums specialize in everything from human ingenuity and cultural expressions to natural heritage. They may be indoors, open air, underwater and virtual, attracting and inspiring millions of visitors each day. And as museum attendance continues to grow around the world, UNESCO is working to link their work with sustainable development and peace building.
1: बिल्कुल सही कहा, और संग्रहालय न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकते हैं बल्कि वे सांस्कृतिक मध्यस्थता और संवाद के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में भी काम कर सकते हैं। नई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से संग्रहालय संस्कृति तक सभी को पहुंच बनाने में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में विविधता, संवाद और खुलेपन के इन मूल्यों को दर्शाने के कारण संग्रहालयों को निशाना बनाया गया है, लूटा गया है और उन पर हमले किए गए हैं। संग्रहालयों की सुरक्षा और संवर्धन, उनकी विविधता तथा समाज में उनकी भूमिका से संबंधित 2015 की यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने के बाद से ये संगठन विशेष रूप से संरक्षण, शिक्षा, संचार, अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मामलों में दुनिया भर की सरकारों, स्थानीय हितधारकों और संग्रहालयों पेशेवरों के साथ मिलकर इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए काम कर रहा है।
0: As part of these efforts, UNESCO established a high-level forum on museums, which met for the first time in Shenzhen, China, in November 2016 and resulted in the adoption of the Shenzhen Declaration, which stresses the importance of museums in reinforcing ethical, professional and technological standards, preserving heritage in times of peace and conflict, and increasing international cooperation.
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मुंबई स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र ने प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्विज, हेरिटेज वॉक, आकाश अवलोकन सत्रों और परिवार उन्मुख विज्ञान गतिविधियों का आयोजन किया है, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ावा देना है।
0: And the celebration aims to showcase the immense power of museums in shaping an informed, creative and progressive society. Museums and science centers today are not merely places for preserving objects and artifacts. They are vibrant centers of education, innovation, scientific awareness, cultural understanding and community engagement. They inspire curiosity, encourage lifelong learning and connect people with science, heritage, history and sustainability through interactive and meaningful experiences. And a special attraction of this year's celebration is the exhibition My Own Collection, showcasing rare and fascinating historical objects along with unique personal collections, reflecting the richness of India's cultural and scientific heritage.
1: सही कहा आपने अभिषेक, इस अवसर पर पणजी स्थित गोवा विज्ञान केंद्र ने गोवा सरकार के संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिनमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने में संग्रहालयों के महत्व को रेखांकित किया गया। और इन समारोहों के एक हिस्से के रूप में माई ओन कलेक्शन यानी मेरा अपना संग्रह शीर्षक से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें गोवा के विभिन्न हिस्सों से 25 लोग अपने अनूठे संग्रह प्रदर्शित कर रहे हैं। इन संग्रहों में सिक्के, डाक टिकट और जीवाश्म कलाकृतियां, खिलौने, पुरानी वस्तुएं, दुर्लभ पुस्तकें और अन्य वस्तुएं शामिल की गई हैं।
0: And as the world celebrates International Museum Day today, to underscore the importance of museums in our lives, let us go to Mumbai and explore a museum which not only offers an iconic collection of where we came from, but also shows us how brilliantly an architect can bring together different styles of architecture to create a marvelous structure. We have more from a Mumbai correspondent.
2: Standing in the bustling streets near the Shyama Prasad Mukherjee Chowk in Mumbai, one simply can't help but take a second glance at the iconic building of Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, which partially resembles the Taj Mahal in Agra, Gol Gumbaz in Vijaypura, and fort-like structures serving as reminders of Maratha forts. Considered the biggest museum in the financial capital of India, it not only offers an intricate tour of our past, but the museum itself has a story in store for us. Let's listen to archaeologist and historian Ruta Vaghmare Baptista.
3: Situated on the southern tip of Mumbai on the Crescent site, the museum was founded in 1905 by prominent citizens of the city with the help of the government to commemorate the visit of the Prince of Wales, who later becomes George V, Emperor of United Kingdom. The museum building was finally completed in 1915 but was used as a children's welfare center and a military hospital during the First World War before being handed over to the committee in 1920. The museum was inaugurated on 10 January 1922 by Lady Lloyd, was the wife of George Lloyd, former governor of Bombay.
2: A part of the Gothic and Art Deco ensemble, which is one of UNESCO's World Heritage Sites, let's learn how the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya presents a fine example of a blend of multiple architectural styles from Ruta Vaghmare Baptista. As the famous quote goes, every step in a museum is a dance with history. Places like Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya offer history lovers

0: वो म्यूज़ियम है गुजरात में, और अगर 1947 के भारत विभाजन की जो दर्दनाक यादों को संजोए है अमृतसर का एक संग्रहालय, अगर आप जाते हैं द पार्टीशन म्यूज़ियम, उसको देखना बहुत ही बेहद भावुक अनुभव रहता है। तो अभिषेक, गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चों को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो देश की विविध सांस्कृतिक विरासत कैसी है, तो संग्रहालय बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं।
1: Absolutely, I completely agree with you. It would be a very enriching vacation for them.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और ये देखने का कि उनके पास क्या है विशेष। सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए महत्वाकांक्षी द्वीप्ति योजना को मंजूरी दी है। क्या है ये योजना और कैसे ये महिलाओं को लाभान्वित करेगी, इस पर खास रिपोर्ट है हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की, आइए सुनते हैं।
2: दीप्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी यानी ऊर्जा सखी का एक विशेष समूह तैयार किया जाएगा। चुनी गई महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं गांवों में सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई प्रणाली और अन्य सौर उपकरणों का संचालन करेंगी। क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर जिले के कुछ समूह पहले ही अधिकृत विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। योजना में पे पर यूज और पे एज यू गो जैसी व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। बिहार नेटवर्क के जरिए लागू होने वाली इस योजना में लगभग 270,000 स्व सहायता समूहों की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और इस बदलाव का नेतृत्व सोलर दीदियां करें। दीप्ति योजना छत्तीसगढ़ को महिला नेतृत्व आधारित हरित विकास मॉडल के रूप में राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: Yes, and from Raipur, we now go over to the sun-kissed, picturesque beaches of Goa. And the Goa government is taking steps to strengthen tourism infrastructure and improve facilities at popular tourist destinations across the state. And Tourism Minister Rohan Khonte reviewed the proposed development works at Kelsi and Benolim beaches in South Goa. And the plans include pedestrian walkways, beautification projects, public toilets and other tourism-related facilities. We have a report.
3: The Goa government is focusing on improving tourism infrastructure to provide better experiences for visitors and support local communities dependent on tourism. As part of these efforts, development plans have been proposed for Kelsi and Benolim beaches in South Goa. The projects include construction of pedestrian walkways, beautification of beach areas, improved public sanitation facilities, and other amenities for tourists. In a media interaction, Tourism Minister Rohan Khonte said that,
4: although this is one of the premier destinations of tourism, certain elements need to be added. The Department of Tourism or Director Bab Kedar Naik has already initiated a lot of things which we have already spoken with the plan. Certain things from him in terms of improvised infrastructure for toilet, shower, other things what he has noted, pathways, entrance to the beach, whatever he has put across, our team has noted it, try and implement most of these issues.
3: The minister also interacted with fishermen, water sports operators and shack owners regarding tourism related activities, cleanliness and the livelihood of local communities connected to tourism sector. The Goa government has reiterated its commitment to developing beaches and tourism destinations while ensuring better infrastructure and sustainable growth for the tourism industry. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
0: बिल्कुल अभिषेक, जो गोवा है वो पर्यटन के लिहाज से सबसे पसंदीदा स्थल है, ना केवल देशवासियों के लिए बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते हैं उन्हीं के लिए भी बहुत ही।
1: इट्स नॉट ओनली अ वेरी पॉपुलर डोमेस्टिक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बट ऑल्सो अ वेरी इक्वली एन्चेंटिंग प्लेस फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑल्सो।
0: बिल्कुल, और अगर ऐसे काम कर रहे हैं पर्यटन जो अवसंरचना को मजबूत करने के लिए जो काम हो रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और एक और सराहनीय कदम हो रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में बरगढ़ जिले का बारपाली समृद्ध टाई एंड डाई अर्थ करघा विरासत का पर्याय बन गया है, और विशेष रूप से यहाँ की जो मशहूर संबलपुरी साड़ियों के लिए स्थानीय

0: बॉलीवुड में माँ के किरदार में कई अदाकाराओं ने अपनी खास जगह बनाई है, जैसे निरुपा राय, ललिता पवार और सुषमा सेठ। और इसी फहरिस्त में एक और लोकप्रिय नाम है रीमा लागू का। जी हाँ, आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। फिल्म मैंने प्यार किया की सपोर्टिव माँ हो या वास्तव की कठोर माँ या फिर ये दिल लगी की माँ, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जबाने की जो माँ की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। उन्हीं की फिल्म मैंने प्यार किया का ये बहुत ही प्यारा डायलॉग सुनते हैं।
1: सुमन जरा चल तो।
2: कहाँ आंटी जी?
1: चल जरा प्रेम से उसकी शादी की बात कराए।
2: जी जी
1: हाँ, सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके इस घर में बहू ले आओ। चल आजा।
2: जी
1: आजा। प्रेम।
3: हाय माँ।
1: दफ्तर जा रहा है बेटे?
3: हाँ, क्यों?
1: कुछ नहीं, नाश्ता कर ले और थोड़ी देर बैठ हमारे साथ।
3: श्योर माँ।
1: आओ, क्या हुआ?
3: ना, कुछ भी तो नहीं।
1: प्रेम, हम लोग तेरी शादी की बात करने आए हैं।
3: शादी?
1: हाँ, तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है ना मैंने।
0: जी हाँ, उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में उनकी माँ की भूमिका निभाई और ऐसी मैंने प्यार किया थी। और एक इसके अलावा एक फिल्म और थी, उसी की फिल्म का एक आपका डायलॉग सुनते हैं। हम आपके हैं कौन? और समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो प्रियंका और अभिषेक को
4: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज,

0: बोझा मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ाझरिया, घासीडी, गढ़गांव, बैगहवा, बरडांड, कंडराजा, चोरकी, पानी के क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन पब्लिक स्पीक, रात 9:30 पर ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

बाद यानी 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवानी हिंदी में, जिसमें आजकल का विषय होगा मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क। विज्ञान मंच में सुनिएगा रोबोटिक्स और मानव जीवन, वार्ताकार होंगी ईशा पांडे और सुनिएगा शाम में गजल। शाम 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे शंकर शंभू और रात्रि 8:15 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे अंबर कुमार देव। शाम 7:00, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर सुनिएगा आज की बात में दीर्घकालीन उत्पादकता हेतु प्राकृतिक संसाधनों के बचाव, और आज की सलाह में सुनेगा पौध संरक्षण। जानकारी देंगी पी रजनी राव, पादप रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर सुनिएगा रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया ताल थमार। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर 7:05 पर। 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया, जिसमें सुनिएगा वार्ता छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मां डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। वार्ताकार हैं श्री विजय मिश्र अमित। सुनिएगा कहानी संगवारी के शर्त, कहानीकार होंगे श्री मान सिंह ठाकुर। और सुनिएगा कविता पाठ श्री तोषण कुमार चुरेंद्र जी का। 9:40 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे खुमान लाल साहब और साथी। 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, प्रायोजक छत्तीसगढ़ संवाद। 11:05 पर समूह गान शिक्षा में सुनिएगा पाठ असमिया भाषा में। 12:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप मन के गीत आप सुन सकते हैं 12:30 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन 1:30 पर, जिसमें आज के गोट में सुनिएगा रद्दा चलत राखव सावधानी। कविता पाठ श्रीमती द्रौपदी साहू का और दादी माँ के नुस्खा में सुनिएगा लूले बचाव घर माँ तैयार करब अचार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों।
1: कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
0: दोस्तों, दुष्यंत कुमार जी की इस खूबसूरत रचना के साथ युवाणी की महफिल सजाने आ गए हैं हम, आपके रेडियो दोस्त, बनाने आपकी शाम को खुशनुमा। मैं हूँ आरव शुक्ला
1: और मैं काजल साहू, तो स्वीकारे हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: आरव, आज ऑफिस आते वक्त ना मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे देर भी हो रही थी। आसपास में कोई गाड़ी बनाने की दुकान भी नहीं थी।
0: अच्छा, फिर क्या तुमने?
1: स्मार्ट वर्क बस।
0: कैसे?
1: मैंने अपनी गाड़ी के पास में एक दुकान में रखा और उस दुकानदार से कहा कि पास के किसी गाड़ी बनाने वालों को बुला लो, और उसने बुला भी दिया। इतनी धूप में मैंने सिर्फ मेहनत ही नहीं स्मार्ट वर्क भी किया।
0: हाँ काजल, मेहनत के साथ

0: दिमाग का इस्तेमाल करने से काम आसान हो जाता है और इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क।
1: वैसे आरव, आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बटे नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं बस मेहनत करो, और बाकी कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, स्मार्ट वर्क करो।
0: हाँ, और कुछ लोग तो इतने स्मार्ट बन जाते हैं कि मेहनत से उनका रिश्ता वैसा ही हो जाता है जैसे सोमवार का खुशी से।
1: बिल्कुल आरव,
0: जी
1: लेकिन सच तो ये है कि सफलता पाने के लिए मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों की जरूरत होती है।
0: सही कहा काजल, मेहनत वो ताकत है जो हमें गिरकर फिर उठना सिखाती है, और स्मार्ट वर्क वो समझदारी है जो सही दिशा में आगे बढ़ना सिखाती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला छात्र बिना योजना के 12-12 घंटे किताबों में लगा रहता है, और दूसरा पहले सिलेबस को समझता है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स नोट करता है और फिर समय बांट कर पढ़ाई करता है और बीच बीच में रिविजन भी करता है।
0: अगर देखा जाए काजल, तो दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे छात्र की मेहनत ज्यादा व्यवस्थित है, और यही स्मार्ट वर्क है।
1: बिल्कुल आरव, स्मार्ट वर्क का मतलब मेहनत से बचना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मेहनत को सही दिशा देना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा काजल तुमने। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, नई नई स्किल्स के इस दौर में वही आगे बढ़ता है जो खुद को समय के साथ अपडेट करता है और बदलता है।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि स्मार्ट वर्क कोई जादू नहीं होता दोस्तों। अगर मेहनत की नींव ही कमजोर हो तो स्मार्ट वर्क ज्यादा दिन टिक नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही, जैसे मोबाइल में कितने भी अच्छे एप्स डाल लो, अगर बैटरी ही ना हो तो सब बेकार बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही मेहनत बिना स्मार्ट वर्क अधूरा है, और स्मार्ट वर्क बिना मेहनत कमजोर।
1: बिल्कुल दोस्तों, कोई खिलाड़ी सिर्फ मैदान में दौड़कर महार नहीं बनता, वो अपनी डाइट, अभ्यास का समय, फिटनेस और रणनीति हर चीज पर फोकस करता है, तभी बनता है खिलाड़ी।
0: और साथियों, चींटियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बारिश आने से पहले चींटियां मेहनत करके अपने खाने का इंतजाम कर लेती है और सुरक्षित जगहों पर चली जाती है, यानी वे सिर्फ मेहनत ही नहीं करती बल्कि समय रहते समझदारी से योजना बनाती हैं।
1: बिल्कुल आरव, और यही तो है स्मार्ट वर्क। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि सही समय पर सही दिशा में की गई मेहनत सबसे ज्यादा असरदार होती है।
0: हाँ काजल, और यही कारण है कि कई बार कम समय में भी अच्छे लोग बेहतर परिणाम हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत नहीं समझदारी से मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर शॉर्टकट होता भी है तो वो अक्सर लंबा चक्कर बन जाता है।
0: और यही वजह है दोस्तों कि हमें मेहनत के साथ साथ समय प्रबंधन, नई तकनीक और सही योजना को भी अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस की। हर साल 18 मई यानी आज के दिन को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है।
0: और दोस्तों, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की शुरुआत वर्ष 1998 से हुई थी। इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन बनाने के लिए शोध और जागरूकता को बढ़ावा देना है।
1: साथियों, दरअसल 18 मई 1997 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वैज्ञानिकों से अपील की थी कि एड्स की रोकथाम के लिए वैक्सीन विकसित करना दुनिया की प्राथमिकता होनी चाहिए। उसी के बाद से ये दिवस मनाया जाने लगा।
0: साथियों, अगर सरल शब्दों में कहें तो एड्स एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो एचआईवी वायरस के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है।
1: इसलिए दोस्तों, जागरूकता, सही जानकारी और वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि एड्स से पीड़ित लोगों के प्रति भेदभाव नहीं बल्कि संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए।
0: आज विज्ञान और शोध की बदौलत दुनिया कई बीमारियों से लड़ रही है, और शायद आने वाले समय में एचआईवी एड्स के खिलाफ भी पूरी तरह प्रभावित वैक्सीन विकसित हो जाए।
1: तो दोस्तों, मेहनत कीजिए लेकिन समझदारी के साथ, अपने सपनों के लिए काम कीजिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए।

0: यूपीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आरव, आजकल जिस तरह रोबोटिक्स हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है, उसे देखकर लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं रहा जब रोबोट्स हमारे बीच आम लोगों की तरह दिखने लगेंगे।
4: बिल्कुल काजल, अब रोबोट सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है बल्कि मानव जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और इसी विषय पर आधारित विज्ञान मंच क्रम में रोबोटिक्स और मानव जीवन पर बात करने जुड़ रही हैं ईशा पांडे।
5: का जाल है, चिप्स का कमाल है, ये रोबोटिक्स आधुनिकता की नई ढाल है। इंसान ने बनाया इसे अपनी सहूलियत के लिए, पर क्या ये बन पाएगा हम जैसा? बस यही सवाल है। काम में फुर्ती है, थकावट का नाम नहीं, इसके जैसा वफादार दुनिया में कोई आम नहीं। पर याद रखना है दोस्तों, मशीन कितनी भी बड़ी हो जाए, इंसानी जज्बातों का इसके पास कोई पैगाम नहीं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है रोबोटिक्स और मानव जीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ईशा पांडे। दोस्तों, आज हम जब सुबह उठकर अपने स्मार्टफोन का अलार्म बंद करते हैं या वैक्यूम क्लीनर को घर साफ करते देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी तेज़ी से एक रोबोटिक युग में कदम रख चुके हैं? दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे क्लासरूम की जहां टीचर के साथ एक छोटा सा रोबोट बच्चों को कोडिंग सिखा रहा है, या एक ऐसा अस्पताल जहां मीलों दूर बैठा डॉक्टर रोबोटिक हाथों से सर्जरी कर रहा है। यह अब कोई फिल्म नहीं बल्कि हमारी नई हकीकत है। दोस्तों, एक ज़माना था जब रोबोट्स सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और कहानियों तक सीमित थे, लेकिन आज ये हमारी रसोई से लेकर अंतरिक्ष के कोनों तक पहुंच चुके हैं। चाहे वह भारी सामान उठाने वाली मशीनें हों या अस्पतालों में बारीक सर्जरी करने वाले रोबोटिक हाथ, इन्होंने हमारे काम को न केवल आसान बल्कि एकदम सटीक बना दिया है। लेकिन क्या रोबोटिक्स का मतलब सिर्फ मशीनें हैं? नहीं, यह उससे कहीं ज़्यादा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ मिलकर ये रोबोट अब इंसानों की तरह सोचने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जापान जैसे देशों में तो रोबोट्स बुजुर्गों का सहारा बन रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे रोबोट से जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। क्या आप जानते हैं, सोफिया दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है जिसे सऊदी अरब ने पूर्ण नागरिकता दी है। सोफिया न केवल बात कर सकती है बल्कि इंसानों की तरह 60 से ज़्यादा चेहरे के हाव भाव भी दिखा सकती है। जब वह इंटरव्यू देती है तो लगता ही नहीं कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत भी पीछे नहीं है। इसरो ने व्योम मित्र नाम की एक हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट बनाई है। यह हमारे गगनयान मिशन का हिस्सा बनेगी और अंतरिक्ष में इंसानों की तरह काम करके डेटा जुटाएगी। यह हमारे वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अगला रोबोट है दा विंची। मेडिकल की दुनिया में एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जिसने सर्जरी की परिभाषा ही बदल दी है। इसकी मदद से डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर स्क्रीन पर देखते हुए मरीज का ऑपरेशन इतनी बारीकी से कर सकते हैं जितना इंसानी हाथ भी नहीं कर सकते। तो देखा आपने, सोफिया से लेकर व्योम मित्र तक, ये मशीनें अब सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि हमारे भविष्य के साथी बन चुके हैं। दोस्तों, अभी हमने जाना फेमस रोबोट्स के बारे में, चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं रोबोटिक्स का शिक्षा पर प्रभाव के बारे में। आज रोबोटिक्स छात्रों के लिए केवल एक विषय नहीं बल्कि सीखने का एक जरिया बन गया है। छोटे छोटे किट्स के जरिए बच्चे अब खुद मशीनें बनाना सीख रहे हैं, जिससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है। इतना ही नहीं, स्पेशल बच्चों के लिए रोबोट्स एक धैर्यवान दोस्त की तरह काम कर रहे हैं, जो उन्हें बिना थके बार बार अभ्यास कराते हैं। और अगर बात करें स्वास्थ्य यानी हेल्थ केयर की, तो यहाँ तो रोबोटिक्स ने क्रांति ला दी है। रोबोटिक सर्जरी से अब घाव छोटे होते हैं, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही अस्पतालों में रोबोट्स अब दवाइयाँ पहुँचाने और मरीजों की निगरानी करने में मदद कर रहे हैं, जिससे नर्सों पर काम का बोझ कम हुआ है। दोस्तों, जो लोग अपना हाथ या पैर गंवा चुके हैं, उनके लिए बायोनिक लिम्ब्स यानी कि रोबोटिक अंग एक नया जीवन लेकर आया है। साथियों, ये तो हमने बात की रोबोटिक्स के सकारात्मक पहलुओं की, लेकिन याद रखिए, क्लासरूम में टीचर का प्यार और अस्पताल में डॉक्टर का ढांढस, ये वो चीज़ें हैं जो कोई मशीन कभी नहीं दे सकती। रोबोटिक्स हमें सुविधा तो दे सकते हैं, पर सुकून तो इंसान ही देता है। मतलब तकनीक तो अपनाइए, पर अपनों का साथ भी बनाए रखिए। साथियों, हमने जाना कि शिक्षा और स्वास्थ्य में रोबोटिक्स कमाल कर रहा है, लेकिन एक सवाल हम सबको परेशान करता है, क्या रोबोट हमारी नौकरियां छीन लेंगे? दोस्तों, यह सच है कि जो काम बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री में पैकिंग,

0: या डेटा एंट्री, उन्हें अब रोबोट ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। इससे खुद क्षेत्रों में रोजगार के पारंपरिक तरीके बदल रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, रोबोटिक्स की वजह से हजारों नए तरह के जॉब्स पैदा हो रहे हैं। आज रोबोटिक इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और मेंटेनेंस एक्सपर्ट की मांग आसमान छू रही है। यानी रोबोट इंसान को ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि हमें खुद को अपग्रेड करने का मौका दे रहे हैं। पर इसके साथ आती है कुछ चुनौतियाँ। पहली चुनौती है सुरक्षा। अगर हमारे घरों में काम करने वाले रोबोट्स या AI सिस्टम हैक हो जाएं, तो हमारी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बड़ी बात है निर्भरता। अगर हम हर छोटे काम के लिए मशीनों पर निर्भर हो गए, तो हमारी खुद की सोचने की क्षमता और काम करने की क्षमता कम हो सकती है। और हाँ, मशीनी खराबी या तकनीकी एरर की वजह से होने वाले खतरों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मशीनें हाथ दे सकती है पर दिल नहीं। रोबोटिक्स हमारे कौशल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मानवीय संवेदना, करुणा और रचनात्मकता का विकल्प कभी नहीं बन सकते। चुनौती यह नहीं है कि रोबोट्स आ रहे हैं, चुनौती यह है कि हम उनके साथ तालमेल बिठाकर अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ाते हैं। मशीनें हमारे दिमाग की उपज है, हमारा विकल्प नहीं। अगर हम सही कानून और नैतिकता के साथ इनका उपयोग करें, तो ये खतरे कम और फायदे ज़्यादा देंगे। तो तैयार हो जाइए खुद को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। रोबोटिक्स का इस्तेमाल विकास के लिए करें, पर अपनी इंसानियत को हमेशा सबसे ऊपर रखें। तो दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है आने वाले कल की, आज से भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। वैज्ञानिकों का सपना है कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने से पहले वहाँ रोबोटिक कॉलोनियाँ तैयार की जाए। यानी इंसान के पहुँचने से पहले रोबोट वहाँ हमारे रहने का इंतज़ाम कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में हमारे पास ऐसे नैनो रोबोट्स होंगे जो हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का जड़ से सफाया कर सकेंगे। दोस्तों, हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां असंभव शब्द डिक्शनरी से गायब होने वाला है। साथियों, आपने इंटरनेट पर पीले रंग के रोबोटिक कुत्ते को तो देखा ही होगा। बोस्टन डायनेमिक्स का स्पॉट रोबोट ऐसी जगहों पर जा सकता है जहां इंसान भी नहीं पहुंच सकते, जैसे तंग गुफाएं, खदानें या आपदा प्रभावित क्षेत्र। दोस्तों, हमें मशीनों से डरना नहीं है, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना है। तकनीक एक बेहतरीन सेवक है, लेकिन इसे मालिक न बनने दे। रोबोट्स बिना थके लगातार और सटीकता के साथ काम करते हैं, जिससे त्रुटियों की संभावना न के बराबर होती है। और खतरनाक वातावरण जैसे परमाणु संयंत्र, खदानें या आपदा राहत कार्यों में रोबोट्स का उपयोग करके मानव जीवन को जोखिम से बचाया जा सकता है। जटिल कार्य को मनुष्यों को घंटों में करने पड़ते हैं, रोबोट्स उन्हें मिनटों में पूरा कर सकते हैं। यद्यपि रोबोटिक्स के लाभ असीमित है, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि बेरोजगारी का डर। चूंकि रोबोट स्वचालित रूप से काम करते हैं, इससे कुछ क्षेत्रों में मानव श्रमिकों की आवश्यकता कम हो सकती है। इसके अलावा रोबोट्स में भावनाओं और आत्म जागरूकता का अभाव होता है। मशीनों के दौर में नई राहें बनानी हैं, इंसानी जज्बे से अब दुनिया नई सजानी है। विज्ञान का ये हाथ थामकर हम चांद सितारों तक जाएंगे, रोबोट्स बनेंगे साथी हमारे, पर दिल हम अपना ही लगाएंगे। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस शानदार भविष्य का हिस्सा बनने के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक विषय पर चर्चा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।
1: साथियों, आप सुन रहे थे रोबोटिक्स और मानव जीवन विषय पर आधारित यह विज्ञान मंच वाचन। स्वर था ईशा पांडे का।
2: बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और

0: शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: साथ छूटे तो शेर होता है, कोई बिछड़े तो शेर होता है।
2: मुफलिसी छीन लेती है रोटी, भूख चीखे तो शेर होता है।
1: आप हैं बस की एब ढूंढते हैं, जैसे तैसे तो शेर होता है।
2: गजलें होती हैं बाद में पूरी, यार पहले तो शेर होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, शायर प्रतीक कश्यप ने इन शेर के साथ, आइए बढ़ते हैं सोमवार शाम की इस पसंदीदा, हम सब के पसंदीदा क्रम की ओर।
3: जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं क्रम शामे गजल की। आइए सुनते हैं इस क्रम की ये पहली दिलकश गजल।

0: साथियों, आपने सुनी आज के शाम की पहली गज़ल, जिसे स्वर दिया था गुलाम अली ने और शायर थे हसरत मोहानी।
1: और प्रस्तुत पसंदकर्ता थे सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू सनी, कोमल यादव, खैरागढ़ से रविंद्र, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा, दीक्षा, शिक्षा अग्रवाल, मगरलोड से पूनूराम साहू, तेजेश्वरी, राजश्री, राजवीर साहू, बेमितरा से सुरेश, पूर्णिमा सारथी, शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर।
0: दोस्तों, बशीर बद्र कहते हैं कि वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं कि से खूब समझते होंगे।
1: इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझे मेरा महबूब समझते होंगे। दोस्तों, बशीर बद्र बड़े ही महबूब शायर हैं, आदतन जिनकी गजल आप सभी को खूब भाती है।
0: तो आइए इस क्रम में सुनते हैं उनकी ही एक शानदार गजल।

0: दोस्तों आपने सुनी अभी बशीर बद्र द्वारा कही गई गजल, जिसे स्वर दिया था जगजीत सिंह ने।
1: और पसंदकर्ता थे अरमरी खुर्द दुर्ग से चुरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, लच्छनपुर से रामजी, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अर्पणा, अनुराधा यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर से छनूलाल यादव, अनुराम, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव, रानी, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव, सिर्री गातापार से लावण्या, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू, धनेश्वरी, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका, पूनम साहू।

0: दोस्तों, गज़ल शब्दों और सुरों की एक ऐसी दुनिया है जहां हर लफ्ज़ दिल की गहराई से उठती है और हर सुर वहीं ठहर जाता है जहां जुबान चुप हो जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, यही तो है गज़ल। नाम ही इतना मीठा है जैसे कोई पुरानी याद धीरे से होठों तक आकर मुस्कुरा दे। इसमें सिर्फ प्यार नहीं होता बल्कि दर्द की स्याही से लिखी वो कहानी होती है जो हर दिल में कहीं ना कहीं दर्ज होती है। दोस्तों, गज़ल की खासियत यही है कि वो सीधे आपकी रूह से बातें करती हैं। इसके शेर सदियों पुराने दर्द को आज के दिल की धड़कन बना देते हैं।
0: और जब कोई गज़ल गाता है तो लगता है जैसे हर सुर वो चिराग है जो अंधेरे दिलों को धीरे धीरे रोशन कर दे।
1: तो श्रोताओं, आइए आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसी गज़ल जो यादों की गलियों से गुजरती हुई सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी।

ही ज़ुबान होती है, होती है, होती है, होती है, होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गज़ल, जिसके फ़नकार थे शाहिर होशियारपुरी, संगीत था जगजीत सिंह का।
1: और इसे पसंद किया था हमारे श्रोता साथियों ने, पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक सीमा साहू, देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, युवान हाव्या और तनु रजक ने, महादेवघाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारणी सूरज और ज्योति ठाकुर ने, बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, राहुल सविता और स्वाति मखीजा ने, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावे, प्रेमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावे ने।
0: कुछ शामें ऐसी होती हैं जो सवाल नहीं करती, बस रुक जाने की दुआ मांगती है। आज जाने की जिद ना करो, कोई फरमाइश नहीं है, ये तो वो एहसास है जो लफ्जों से पहले दिल में उतर आता है। ये गजल उन अधूरे पलों के नाम है जहां वक्त थोड़ा थम जाए और खामोशी दो दिलों के बीच सबसे मीठी बातचीत बन जाए। इसमें ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस एक मासूम सी गुजारिश कि आज यहीं ठहर जाओ।
1: बिल्कुल काजल, ये गज़ल याद दिलाती है कि कभी कभी किसी को रोकना मतलब बांधना नहीं होता, बल्कि उसे और गहराई से महसूस करना होता है। तो ये गज़ल आपके दिल की आवाज़ बन सकती है दोस्तों।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गजल फरीदा खानम की आवाज में, जिसके शायर थे फयाज हाशमी।
1: और पसंदकर्ता थे बालोद से भगवानी राम कांटे, आशीष मनीष, तनिषा, गोपिका माधुरी देवी कांटे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश, करुणा, प्रियंका, गौरव बंछोर, कोरबा से विपिन, आयुष, अतुल, फलूजी यादव, इंदिरा चौक, तखतपुर से मिश्रीलाल, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। साथियों, गज़ल के एहसास के साथ आज के कार्यक्रम से हम चाहेंगे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल के युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। और अपनों के साथ ठहरिए, पलों को जी भर कीजिए और दिल की मुस्कुराहट रखे रहिए।
0: फिर मुलाकात होगी एक नई सोच, एक नए एहसास और कुछ और खूबसूरत लफ्जों के साथ।
1: साथियों, कभी कभी किसी को जाने से रोक पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उस एहसास को दिल में रोक लेना हमेशा हमारे हाथ में होता है। आज की इस शाम ने अगर आपको अपनों की याद दिलाई है और ऐसा हुआ है, तो समझिए आज की युवाणी अपना मकसद पूरा कर गई।
0: तब तक के लिए हमें, यानी आरव
1: और काजल को, अब दीजिए इजाजत, स्वीकारे हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य

0: रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नज़र शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।

0: सुमित
1: कौन संदीप
0: सुमित देख के
1: हाँ बोल यार
0: सुमित
1: हाँ कब आने
0: अरे देख के सामने
1: ठीक है और कौन आएंगे
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ह आज रायपुर में 112 वाले 400 गाड़ी के संगे संग 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के करें रवाना। बस्तर जिला के गांव नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के करें उद्घाटन। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत। और महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी की जांच के दौरान एक ठिन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात करीन बरामद। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के रवाना करीन। संगे संग 33 ठिन विशेष निगरानी वाहन और 60 ठिन राजमार्ग गश्ती गाड़ी ला घलो रवाना करीन। एकर उद्देश्य राज्य के आपातकालीन सहायता प्रणाली के विस्तार करना और नवा आपराधिक कानून के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता ला मजबूत करना है। अभी तक प्रदेश के सिर्फ 16 जिला मन में यह सुविधा मिलत रहीस, फिर अब राज्य सरकार है डायल 112 सेवा के विस्तार करके जम्मो 33 जिला मन में कर दे है। एक के नंबर सबो पर थीम ऊपर आधारित ये सेवा पुलिस मेडिकल इमरजेंसी आगजनी सड़क दुर्घटना और आपदा जैसन स्थिति में तुरते मदद दे जाही। अब राज्य के नागरिक पारंपरिक दूरभाष काल के अलावा 112 इंडिया अनुप्रयोग, संकट संकेत सेवा, एआई आधारित संवाद प्रणाली, ईमेल, वेब अनुरोध के संगे संग सामाजिक माध्यम ले घलो आपातकालीन मदद मिल सकी। नवा आपराधिक कानून के तहत वैज्ञानिक जांच ला मजबूती देबर 32 ठिन आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन चला जाते। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संगे संग विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री घलो शामिल हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर जिला के गांव नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचीन, जहां ओमन शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के उद्घाटन करीन। ए मौका में ओमन कहिन कि पाछू 6 ले नक्सलवाद के सेती बस्तर के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हो है, जिखर भरपाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार पाछू 5 में करही। ओमन कहिन कि बस्तर के जम्मो 196 में 70 सुरक्षा कैंप ला अवैया 1.5 साल में जन सुविधा केंद्र में बदल के ओला आदिवासी कल्याण केंद्र बनाए जाही। ही दिशा में आज ए जन सुविधा केंद्र के लोकार्पण करेगी। उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री है इमली प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेवत स्व सहायता समूह के माइलोगिन मन ले गोट बात करीन। जन सुविधा केंद्र के खुले ले दूर दराज में रहैया लोगन मन ला शासकीय और डिजिटल सेवा जेमा नवा आधार, आधार अपडेट, KYC, मोबाइल नंबर अपडेट और ई आधार जैसन सुविधा मिल सकी। संगे संग गांव के लोगन मन ला ऑनलाइन प्रमाण पत्र के फायदा मिली। केंद्र में जन्म आय जाति जैसन प्रमाण पत्र बनाए में अब लोगन मल्ला एती होती जाए की जरूरत नहीं पड़ी। केंद्रीय गृहमंत्री है जगदलपुर में स्थित अमर वाटिका में माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में जान देवैया 1000 ले ज्यादा शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दिन। ए मौका में ओमन कहिन कि बस्तर के धरती ला शांति सुरक्षा और विकास को ती ले जाए में ये जवान मन के बड़का भूमिका है। इस दौरान गृहमंत्री है बीजापुर नक्सली हमला में शहीद जवान कालेन्द्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी के परिवार वाले मल्ले मिलिन। केंद्रीय गृहमंत्री है सुरक्षा बल के जवान मल्ले गोट बात करके उखर साहस और समर्पण के प्रशंसा करीन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घलो शामिल हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काली जगदलपुर में होवैया मध्य क्षेत्रीय परिषद के बैठका के अगुवाई करही। इमा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संगे संग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मन घलो शामिल होही। केंद्रीय गृहमंत्री है कहिन कि बस्तर के संगे संग अब भारत नक्सल मुक्त हो चुके हैं। नक्सल मुक्त के अभियान में हजारों जवान मन अपन बलिदान दे है। श्री शाह आज जगदलपुर में राखे गए उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम ला संबोधित करिन। ओमन कहिन कि जब केंद्र सरकार ह नक्सलवाद खत्म करे के संकल्प लिन त ओखर उद्देश्य सिर्फ माओवाद के खात्मा करना नहीं रहिस, भलुक बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासी मन के जिंदगी में जम्मू सुविधा पहुंचाना रहिस जौन ह बड़का शहर मन में होते। ओमन कहिन कि अवैया 5 साल में बस्तर ह देश में सबले विकसित आदिवासी संभाग बनही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़ो 5 समाचार को दी। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के शुरुआत होगी। 25 मई तक चलैया ये अभियान प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन में चलाए जाही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मन शामिल करेगे है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के जम्मू जिला मन में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना मन के लाभ पात्र लोगन मन तक पहुंचाया जाते। अधिकारी मन गांव मन में जन सुनवाई करी और आदि सेवा केंद्र मन में शिकायत मन के निपटारा करे जाही। ऑनलाइन दवाई मन के बिक्री के विरोध में कतकोन केमिस्ट संगठन डहार ले 20 मई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान करे गए है। इला देखत प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन जम्मू जिला मन में अधिकारी मन ला जरूरी जीवन रक्षक दवाई आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पाद और चिकित्सकीय जिनिस मन ला राखे के निर्देश दे है। प्रशासन बतैन कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पताल जन औषधि केन्द्र धनवंतरी मेडिकल स्टोर और आने औषधि केन्द्र मन में दवाई मिली। प्रशासन आम लोगन मन ले अपील करे हवें कि ओमन कोनो प्रकार के दवाई ला सकेल के झन रखें। महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी जांच के दौरान एक ठिन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात बरामद करी है। बरामद सोना के कीमत 9,17,00,000 रुपया आंके गए है। हमार संवाददाता ले मिले जानबा के मुताबिक जिला के सिंघोड़ा थाना पुलिस डहार ले ओडिशा सीमा ले लगे रेहटी खोल नाका में जांच अभियान चलाया जात रहीस। यही दौरान ओडिशा कोती ले आवत एक ठिन कार ला रोक के तलाशी लेगीस। तलाशी के दौरान सोना के आभूषण जब्त करेगीस। पुलिस दस्तावेज पेश नहीं करे के सेती गुजरात के 3 जिन आरोपी मल्ला हिरासत में ले है। आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय ला जानबा दे देगे है। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 1-2 जगह में हवा गरे चले और गाज गिरे के संभावना जताए है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र बने हैं। संगे संग एक ठिन चक्रीय चक्रवात विस्तारित है। एकर असर ले बदली वर्षा की स्थिति बना थे। जगदलपुर के बालिंगा के तीर आज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में बस के पलटे ले 1 जिन यात्री के मौत हो गए। उन्हें 30 जिन यात्री मन घायल हो गए है जिमा ले 7 जिन के हालत गंभीर बताया जाते है। ये बस रायपुर ले कोंटा जावत रहीस और कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र के गांव भादा के जंगल में तेंदूपत्ता टोरे बर गए 2 जिन गांव के लोगन मन ऊपर भालू हमला कर दिन। ये घटना में घायल दोनों मनखेला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय गृहमंत्री आज रायपुर में 112 वाले 400 गाड़ी के संगे संग 32 ठिन फॉरेंसिक मोबाइल वैन ला हरा झंडी दिखा के करें रवाना। बस्तर जिला के गांव नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र के करें उद्घाटन। प्रदेश के जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर आज ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के शुरुआत और महासमुंद जिला में आज पुलिस गाड़ी जांच के दौरान एक ठिन कार ले 7.25 किलो ले ज्यादा के सोना के जेवरात करीन बरामद। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: कहा पुनीता त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनंतपुरम नगरस्य केंद्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य, महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वच्छोर्जायाः, नील अर्थव्यवस्थायाः, हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिमबुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः, स्वीडन देशस्य सर्वकाराय, प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः, विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सदीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनम् पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह 21 सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथितसंस्थागतभ्रष्टाचारस्य महिलाविरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमन्त्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरम् अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मन्त्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रियावाहनानां आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानाञ्च ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थम् अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहस्य उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिमेशियायाः साम्प्रतिक स्थितिविषये अद्य नवदिल्लीनगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवपदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं विद्युद्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद सिद्ध योग यूनानी होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारम्परिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
3: भारत का बना हुआ सामान, भारत से देवी सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देश से जिनोवा नगरे आयोजित 79वें विश्व स्वास्थ्य सभाया अनंतरम विश्व स्वास्थ्य संगठन से महानिदेशक सह मिलितवान। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालय उक्तम यत् श्री नड्डा पुनः दृढ़ीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रीय रक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
4: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:00 30 मिनट हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं शंकर शंभू।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए संगीत शंकर शंभू के स्वर में।

0: सुगम संगीत में अभी आप शंकर शंभू को सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो

0: गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ, कहा कि अगले 1.5 साल में बस्तर में स्थित 70 सुरक्षा शिविरों को ऐसे सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत 400 अत्याधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है ये सेवा। महासमुंद पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से करीब 9 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस जन सुविधा केंद्र को आदिवासी जन नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर स्थापित किया गया है। ये जन सुविधा केंद्र CRPF के सुरक्षा परिसर में बनाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आगामी 1.5 साल में बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के 196 कैंपों में से 70 कैंपों को इसी तरह के सेवा केंद्र में बदला जाएगा।
4: पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की। बस्तर में अभी 196 कैंप है, उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले हैं। हमने कैंपों को अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए NID को प्रोजेक्ट देने वाले हैं, जिसके अंदर बैंकिंग की भी सुविधा होगी, आपका आधार कार्ड भी बनेगा, राशन कार्ड भी बनेगा, सरकार की योजना के पैसे यहीं से आपको मिल जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 371 योजना का लाभ एक ही भवन में से आपको मिलेगा। ढेर सारी गतिविधियां यहां जोड़ी जाएगी। हमारे हर गांव में डेयरी भी आएगी और हर आदिवासी बहन को 2 पशु देने का काम भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री ने इमली प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की और उनसे जाना कि कैसे वे इमली की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। श्री शाह आज जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया था तो उसका उद्देश्य केवल माओवाद का खात्मा करना ही नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के जीवन में वे सभी सुविधाएं पहुंचाना भी था जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हैं।
4: अब हत्यारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा।
3: केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर की धरती पर शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने में जवानों का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले वीर जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान श्री शाह ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवान कालेंद्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों के बीच बैठकर उनका दुख साझा किया और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद कर उनका उत्साह वर्धन किया और उनके साहस तथा समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम में

0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 19 मई को जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 फोरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन भी रवाना किए। अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 आपातकालीन सेवा उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सकेगा। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इस आधुनिक व्यवस्था के तहत अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी विकसित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य और निर्बाध रूप से हो रही है। राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने बताया कि राज्य की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान में हो रही आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है। नागरिकों को आश्वस्त किया गया है कि ईंधन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेल कंपनियों ने नागरिकों से घबराहट में पेट्रोलियम उत्पादों की खरीदी न करने की अपील की है। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आज से जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हो गया है। 25 मई तक चलने वाला ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी गांवों में जनसुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। ऑनलाइन औषधियों की बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों द्वारा 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसे देखते हुए प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने सभी जिलों में अधिकारियों को जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां, आपातकालीन स्वास्थ्य उत्पादों और चिकित्सकीय सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स और अन्य औषधि केंद्रों से दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि घबराहट में अनावश्यक दवाओं का संग्रहण न करें। महासमुंद जिले में आज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 7.25 किलो से अधिक सोने के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद सोने की कीमत 9,17,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले की सिंघोड़ा थाना पुलिस द्वारा ओडिशा सीमा से लगे रेहटीखोल नाके पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान ओडिशा की तरफ से आ रही एक संदिग्ध कार को रोककर ली गई तलाशी में छिपाकर ले जाए जा रहे सोने के आभूषण जब्त किए गए। पुलिस ने वैध दस्तावेज पेश न करने पर गुजरात के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय को सूचना दे दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही एक चक्रीय चक्रवात विस्तारित है। इसके असर से बदली बारिश की स्थिति बन रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के लिए प्रभात फेरी और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जगदलपुर के बालिंगा के पास आज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक

0: इस पर बस के पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 30 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई गई है। ये बस रायपुर से कोंटा जा रही थी। बिलासपुर के कोटा परियोजना मंडल परिक्षेत्र के तहत रतनपुर के जूना शहर क्षेत्र में वन विभाग ने जंगली सुअर के मांस की अवैध बिक्री के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भादा के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए 2 ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। इस घटना में घायल 2 ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के नेतानार में जन सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ। कहा कि अगले 1.5 साल में बस्तर में स्थित 70 सुरक्षा शिविरों को ऐसे सेवा केंद्रों में बदला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत 400 अत्याधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अब प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है ये सेवा। महासमुंद पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से करीब 9 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म ब्रदर्स में सोनू निगम और नीति मोहन को, गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 19 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपने जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह को फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में गीत के बोल मनोज मुंतशिर के और गीत संगीत अमाल मलिक का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और सोनू निगम को फिल्म परिणीता में, गीत के बोल स्वानंद किरकिरी के और संगीत शांतनु मोहित्रा का।

चित्रपट के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म रांझना में श्रेया घोषाल और मीनल जैन को, गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

चित्रपट संगीत में अभी हमने फिल्म ब्रदर्स, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, परिणीता और रांझना के गीत सुने। मीडियम वेव 305.8 आर्थिक मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम सतीश भाई।
1: राम राम भूषण भाई। और संगमा चौपाल सुनिया हमर जम्मो मयारू श्रोता संगवारी मला हमर दोनों के राम राम।
0: सतीश भाई,
1: हाँ,
0: अब गजब दिन में हम दोनों भेंट हो जी है। काय काम बुते चले थे, लुवाई टुरी हो गए थे?
1: हाँ भाई, अभी का है, अब लुवाई टुराई तो हो गए है। काबर आजकल जानथस तें भाई,
0: हाँ।
1: आजकल तो हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, माने आनी बानी के किसी यंत्र आ गएगा जेन चार दिन में काम हुआ तेन एक दिन में हो गए,
0: हाँ।
1: चार घंटे लगे तेन एक घंटे। फिर भूषण भाई एक समस्या आ गए है, दो ठन टेपरी बाज गए है,
0: हाँ।
1: काबर वो थोकन सोलखी होते होती वह कृषि यंत्र कुछ जाबे नहीं करे।
0: अच्छा, देख आप सतीश भाई, ऐसे होते ना कि कतकोन हमन हा आगू बढ़ जान, कथे ना प्रकृति के आगू ना सबुल झुकेल पड़
1: झुकेल पड़ते। बहुत सही कहा,
0: आई अब नरवा खड़ेगा और रद्दा जावे नहीं कैसे करबे। और मैं तो ऐसो ना गर्मी में धान कम लगा रहे हूँ और साग भाजी लगा हूँ, भिंडी लौकी निकलत है।
1: अच्छा,
0: बाजार जाता हूँ बेचे पर, फिर कैसे करबे। बने बाजार के बिरच में ना गुरूर घर हवा धुका चालू हो जाते।
1: अरे झन भाई, जेठ के महीना और काहे दिन भर तो मार तात तात लगते, तवा कस लगते, घर ले बाहर निकलबे था और सांझ के भाई देखबे तो एकदम मतलब झीमिर झामर शुरू से पानी शुरू जैसे भाई।
0: हाँ हाँ, देख सतीश भाई, धान घरों लगा रहे हो और जो कहा थो ना ते ऐसे हुई कि मोर बोर के पानी है ना एकदम कमती हो गए अभी और धान है पोटराए रही से। और देख भाई, पानी है तो हमार जो खेती है और पानी जिनगानी हमार बर घलो है, खेत बर घलो है।

0: हाँ तो मैं कहा हूँ कि जन आगू जैसे हमार दिन है पानी ऐसने चलते रही, पानी की कमी होते रही, तो हमारे बड़ खेती किसानी करना तो एक चुनौती हो जाए,
1: बहुत बड़े चुनौती
0: है ना। तो पानी हमारे खेती किसानी के आधार है,
1: आधार है,
0: ओकर बिना कैसे खेती करबू।
1: देखते हैं समस्या गोहरावा थचमोर में भूषण भाई।
0: हाँ
1: यही समस्या आज सब आदमी में रहा है, है ना। पेयजल रहा है चाहे खेती किसानी के बर पानी रहा है, सब जगन मतलब हाहाकार मचे हवे, है ना। तेकर सेती चाहिए हमला या किसान भाई मला चाहिए कि कम पानी ले वाला जेन फसल हवे तेकर उपयोग करन।
0: हाँ।
1: और हो सके तो सूक्ष्म सिंचाई या ड्रिप सिंचाई जेन हवे हमारे वैज्ञानिक मन बीच बीच में बताते रहते हमारे आकाशवाणी के, ये ला सब अपनावे तो हमार वह मन पानी बाछी जी, एकर से हमला लाभे हुई है।
0: का है प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारे पानी है, जंगल है, जमीन, हवा, जीव जंतु, खनिज, ये सब मन हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारे बड़ महत्ता का है।
1: ये सब के बिना तो हमारे जीवन संभव ही नहीं है भाई।
0: हाँ।
1: खेती किसानी है, पशुपालन है, उद्योग धंधा है, रोजी रोटी, सबो प्राकृतिक संसाधन ऊपर निर्भर हवे। फिर आज के समय में बढ़त जनसंख्या है, अंधाधुन उपयोग के, जंगल के कटाई हो गए, प्रदूषण और रासायनिक जन खेत हवे तेकर कारण से ना संसाधन मन तेजील खराब हुआ भाई। ये स्थिति कहूँ बने रही तो भविष्य में ना उत्पादन घट जही और हमारे जो पर्यावरण के संकट है दिनों दिन बढ़े लगी गहराए लगी और हमला लंबा समय तक जिन उत्पादन करना है या उत्पादन जिन मिल ही वो नहीं मिल सके। काबर आदमी आजकल ऐसे हाय हाय हो गए है जिन चीज हम 10 साल में प्राप्त कर सकते एक बार में होगा तो ये ऐसे नहीं होना। प्राकृतिक नियम है, प्रकृति के नियम है
0: तो तेहा बने गोठला कर था सतीश भाई। अभी मोर कर जैसे मैं बताया समस्या पानी के है, तो खेती में सबले ज्यादा तो उपयोग पानी का होतेगा। और आज भूजल जो स्तर है वो तेजी से नीचे जावत है, नदियां तरिया कुआं सुखावत है ना। ये समस्या के समाधान करना है ना, तो पानी के सही उपयोग जरूरी है। एक बार हम जो है वर्षा पानी के संचयन जैसे वर्षा हुआ थे,
1: हाँ हाँ डबरी तरिया बना के ये बना के,
0: हाँ हाँ गा और इसने जरूरी हवे खेत में मेड़ बनावन, काबर पानी ले अमर माटी घलो सुरक्षित रखना है।
1: हाँ।
0: तो माटी कटाव भी जरूरी, मेड़ बनाना जरूरी है। ये सब माध्यम ले हम जल के जोन पानी के जोन समस्या आते ओकर संरक्षण कर सकथन। गांव में जैसे पुराना तरिया कुआं रहते आप कुआं में नंदावत जात नहीं का, तबोल कतको कुआं हमारे गांव में पाबे घूम जाबे था फिर ओकर उपयोग नहीं करत आदमी है। ये सब के संरक्षण बहुत जरूरी है। और तो अभी जैसे गोठियाए कि पानी और समस्या है तो वो कम करना है, तो आजकल सूक्ष्म सिंचाई है, ड्रिप विधि है, टपक और अपन स्प्रिंकलर हो गए, ये मन में कम पानी की जरूरत पड़ते। पहाटा पुलों में बहुत पानी बर्बाद होते,
1: चाहे ये खेती किसानी की बात रहा है, चाहे हम कोनो चीज ला धोवन धोथन कोई यंत्र है या कोई घर में कोई सामान है वो सामान धोथन तो सीधा सीधा हम पानी में कहूँ धोथन ना भूषण भाई तो ओकर खपत ज्यादा होते है।
0: हाँ, हाँ।
1: ना तो चाहिए कि हम बाल्टी वाल्टी या कोई पात्र में पानी ले लेना ओकर से हम नहवन और धोवन ये सब करन। तो बात तो बने कहा था भूषण भाई, वैसे भूइया के उपजाऊ शक्ति बचाए रखना घलो जरूरी हवे। रासायनिक खाद और दवाई के उपयोग ले घलो ये माटी जो है खराब हो जात हवे। आदमी जो है अंधाधुनी कर रासायनिक के माने खाद के उपयोग करत है।
0: हाँ।
1: और माटी खेती के आत्मा कह जाते
0: हैं। हाँ, हाँ।
1: ये कर संरक्षण बर कदम उठाना हमला बहुत जरूरी होगी भाई आज।
0: हाँ, हाँ।
1: रासायनिक खेती जगह कहूँ जैविक खाद और जैविक या प्राकृतिक खेती डहर हम जावन तो ज्यादा अच्छा रही और हमला लंबा समय तक हमारे भविष्य में अच्छा हमला हमार माने खेती कर सकथन और अच्छा हम उत्पादन ले सकथन। और एकर साथ साथ एक बात का ध्यान रखन है ना, संरक्षण करते करते हमला फसल चक्र के घलो का मोला हमला अपनाना चाहिए, बदल बदल के फसल लेना चाहिए, एक ठन फसल नहीं देना चाहिए। फसल चक्र अपनाए ले कहा कि जमीन के जो उर्वरता है वो बढ़त जाते।
0: जैसे धान लगाए तो अब आगु जो फसल आई जल दलहन तिलहन फसल लगाबो तेकले का है जमीन की उर्वरता शक्ति जो है वो बने रही है। और देख सतीश भाई जंगल धरती के गहना है कथे, अब ते अभी माटी गोट करे ओकर पहले पानी गोट करे, अब हम जो हमारे जंगल है ओहुल बचाना बहुत जरूरी है। काहे जंगल ले हमें लकड़ी औषधि चारा और शुद्ध हवा मिलते है। जंगल पानी चक्र ला घलो संतुलित रखते और वर्षा में घलो मदद करते। एकर संरक्षण खातिर घलो हम ये उद्यम कर सकथन। कैसे उद्यम कर सकथन? अनावश्यक जो पेड़ के कटाई होते अभी रोड बनत जावत है, पेड़ काट देते। और तो हमार गांव में हमन देखथन ते गांव में चूल्हा जलाथन, आगे बारे बार घलो लकड़ी ला काट देते पेड़ लगा। तो ये सब ला हम ला बंद करना जरूरी है। वृक्षारोपण के जो अभियान है गांव में, वृक्षारोपण ग्राम सभा जैसे होते, ये सब के
1: पंचायत स्तर में,
0: पंचायत स्तर में एक बात उठाना बहुत जरूरी है। काबर पेड़ हमारे पर बहुत जरूरी है, फलदार छायादार पेड़ लगान। काबर देखबे खेत जा रहे थन, पसीनम थप थप आ रहे थन, और खेत में कोनो एक ठन रुख रही नहीं रही, तो कहाँ छैया पाग।
1: ओतके बेरा समय आते समझ में आते भूषण भाई, जब है ना, जब हम पेड़ नहीं लगावन तो हम कौन हिसाब से सोचथन कि हमला छाया मिल जाए। ये हमारे स्वार्थीपन है ना, जब हमला मार हफरत तो पसीना लथपथ रहते ना, तो देखथन कोनो मेरे छाव मिल जती कहाँ, है ना। मोटरसाइकिल में जाथन या साइकिल में जाथन तो कहीं कोनो मेरे छाव रहते, मेरे बैठ के थोड़ा पानी पीऊं, तो हम का बार सोचथन। ये हमारे स्वार्थीपन है, मतलब मानव की प्रवृत्ति है कि अपन स्वार्थ थे, स्वार्थ के साथ साथ हमारे पर्यावरण के संरक्षण करन ता हमला अच्छा भविष्य मिली।
0: जैसे हमारे संगवारी में स्वार्थ नहीं कहा है, काय बर काट देते हैं, एक तो जलाए बर, दूसरा चीज हो गए छैया हुई तो धान नहीं हुए कथे, आई तो भाई छैया कतेक कन में हो जाही, ओकर ले ज्यादा तो फायदा होत भाई।
1: सबूल देखे लगते,
0: सबूल देखे लगते है नी। जंगल में अभी देखबे आग ही ढील देते खेत में, वो बहुत नुकसान है खेत में।
1: अभी गागी भैया इसे है कि कहूं ते ढील देना, आग ही पानी हवा एक पार नहीं पावत। कतको मन के मन, अब भाई अब देखो पैरल जलाना चाहिए, अभी गर्मी फसल बहुत झन मन ले हवे संगवारी मन है, पैरल जला देते, तो पैरल जलाना नहीं चाहिए। पैरल जलाए से का होते, पैरा तो अलग खत्म हो गए, माटी उमेर के पूरा माटी को उर्वरा शक्ति जो है पूरा खत्म हो जाते,
0: आसपास के वातावरण घलो प्रदूषित हो गए, चिड़ै चिरगुन मन है, आई पेड़ पौधा मन है, वो तो कुल मिला के एक हन कि आगी लगाए से खेत में आगी ढीले ले बहुत अकन नुकसान है। पेरल जर आवे तो भाई वो पेरा चारा बनी, पशुपालन करत हन तो कट्टी वट्टी कटवाबे ओकर, तो है नहीं का, तो नरेल घलो जलाबे, नरेल पानी ढील के अगर उनमें
1: पानी ले सड़ी सड़ी
0: खातु बन ही है ना, तो ये आगी लगाए से घलो बाचन। संगे संग जो जतका वन जीव है जंगल में जो रहते, बेंद्रा भालू मन है तो जंगल के गा, वही मन तो जंगल के रक्षा कर रहे
1: हैं। अधिकतर जंगली पशु जिन है इतनी तो दिकावर भगत है, कई बार देखता कि हिंसक जन जानवर हमें ढिला गए सब जगह जाते, हम ही आमंत्रण देते रे भाई, काबर भाई ओकर रहे आवास ला चारा ला पानी डोलाबो तबे नहीं आही गांव ढा नहीं आएगा
0: है ना, तो ये सब आदमी नुकसान पहुंचे ही
1: चाहिए। सही बात है,
0: जंगल के जीव जंगले में रही तब बने हैं,
1: बने बने
0: गांव में ही तक कहाल गए
1: है ना। और भूषण भाई पानी और जमीन के प्रदूषण जैसे प्राकृतिक संसाधन ला खराब करते, और कारखाना ले गंदा पानी प्लास्टिक और धुआं जो पर्यावरण ला नुकसान घलो पहुंचाते है ना। ऐसे में प्रदूषण कई प्राकृतिक संरक्षण हमला प्रदूषण ला छोड़ के प्रकृति जो संरक्षण है वो तरफ हमला योगदान देना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग कम करन, जैविक खेती बढ़ावा देवन, गांव में सफाई अभियान चलावन, जैसे भी बोले ना पंचायती स्तर में अपन गांव स्तर में मित्र मंडली संग बैठ के एक योजना बनावन। का है पढ़े लिखे आदमी मन जब आगे आही हमारे समाज में कुछ आदमी बताही तब एकर आगे होएगा कदम तो बढ़ाया लगी उठाए लगी है ना। तो वही तरह से गाँव गवई तीर कोनो कारखाना खुला थे तेकर बारे में हम जानना, एकर कतका हमला फायदा है, का हो सकते एकर का नुकसान है, एकर बारे में हमला घलोक मंथन करना चाहिए। तो ये किस्म ले प्रदूषण वो कर परिणाम के अंदाजा हम सब मिलके हम लगा सकते हैं रे भाई।
0: सही के सतीश भाई, कारखाना खुले ले अब दोनों प्रकार के हाँ भाई, आज हम अतका घंटों काम ला मिनटों में करत हन के है ना, मोबाइल चलाथन अतका तकनीकी हमला सुविधा मिल गए, ये सब काकर बदौलत ये सब कारखाना उद्योग खुले एकरे द्वारा ही बने है। तो अपन अपन जगह में सब बनेगा है, अब कारखाना खुली तो रोजी मंजूरी घलो मिल जाते कभी। फिर हमला ये देखना है कि भाई अब कारखाना पर अलग जगह सरकार चुने रही थे, वो जगह में कारखाना सूट करते नहीं गा, वैसने ढंग के बात है। और प्राकृतिक जो संरक्षण है हम ये ढंग से घलो कर सकथन, ऊर्जा संसाधन है एकर सही उपयोग कर सकथन, जैसे अभी ये जो कोयला पेट्रोल आई और डीजल ये सब संसाधन मन भैया सीमित मात्रा में है, एकर ज्यादा हम दुरुपयोग करबो या ज्यादा अंधाधुन उपयोग करबो ना तो सिराज ही ये खत्म हो सकते हैं। एकर बर वैकल्पिक ऊर्जा अपनाना जरूरी है, काबर जैसे सौर ऊर्जा हो गए एकर उपयोग ला हम बढ़ावा दे सकथन, और आज बहुत स्तर में सौर ऊर्जा जोन है ना
1: बढ़ा थे उपयोग करते खेती खेती के बारे में कहान चाहे घरों घर में कहान, आजकल सरकार एक बार बहुत सब्सिडी घलो दे छूट देवत हबे, वो लोगन मन बहुत एकर उपयोग करते थे, अच्छा भी है।
0: हाँ ये बिजली पर सौर ऊर्जा हो गए, घर में गैस के है तो ओकर पर हम बायोगैस प्लांट लगा सकथन है ना, बेवजह जैसे बिजली के उपयोग है एकर में हम अपन आप में खुद सुधार करबो तो हो सकते, काबर फालतू घर में टीवी पंखा चलत है और कोनो घर में है नहीं, तो यहू अच्छा बात नो हरे। तो ये सब ऊर्जा संसाधन के संरक्षण घलो जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है भाई, सही कहा था। तो जैसे भूषण भाई अभी अभी गोट कत रहे ना भाई कि प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक है खेती पर और पर्यावरण पर बहुत घातक होते
0: हैं,
1: है ना, न सड़ा

0: नगल आए और बल्कि जमीन के अंदर चल दिए तो पानी में रिस रिस के पिए पानी माथे तो पेयजल घलो खराब करते नान मुन झिल्ली है कतका नक्सकानी करते एकर डहर ध्यान देवन हमर एकर अंदाजा नहीं लगा सका है ना। आजकल हर जिनिस प्लास्टिक के झिल्ली में उपयोग प्लास्टिक के झिल्ली में भरा के आते और यही मन कहूँ हम उड़ाया थे कभी कभी जैसे गर्मी के दिन है बड़ोरा चला थे बवंडर चला थे उड़ावत उड़ावत नाली में चल दीजिए नाली ले अब अभी तो बने हैं ओकर बाद जब धर्रा पानी चलते ना तो नाली ले वह बहावत बहावत नदिया नरवा में जात जा समुद्र में जाते कई बार तो ऐसे होते कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होते है ना। तो ये प्रकार से ये प्लास्टिक के जो झिल्ली जो हवा ये है बड़ा खतरनाक होते ना सड़ा है ना गला है और खेती बाड़ी बर तो और बहुत नसकानी खावे पानी घलो के पेयजल में घलो भीतरे भीतर रस के आ जाते वो हमारे शरीर खराब करते
1: है। ये तो बने बात की है काबर झिल्ली का उपयोग बड़ बढ़ाते है नहीं और जैसे किसान प्राकृतिक संसाधन के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हम किसाने मन है काबर पानी के पेड़ पौधा के और माटी के सबले जरूरत हम किसान उपयोग करत हैं प्राकृतिक संसाधन के और ये हमार एकर संसाधन जो है सुरक्षित हम ही मन कर पाबू है नी
0: काबर की ये काम सिर्फ सरकार के नो है समाज के सब मन के मिल के जिम्मेदारी लेबो कर बीड़ा उठाबो तब प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हो ही है ना। भगवान के दे अमृत मूल्य धन है ये प्राकृतिक संसाधन है और कहूँ एक हम अगर संरक्षण नहीं करबो तो भविष्य हमर में पानी भोजन और शुद्ध हवा के संकट बहुत जल्दी हमला देखे मिली ये बात लग हलो सोचन हम और दीर्घकालीन जिन उत्पादकता बनाए रखे बर पानी जंगल जमीन और ऊर्जा जो संसाधन हवे एक बचाना जरूरी है तभी हम भविष्य ला हमर जो आगामी जो पीढ़ी हवे तेला हम कुछ खुशहाल जीवन दे सकते हैं।
1: बिल्कुल और ये आज अगर हम समझदारी ले संसाधन के उपयोग करबो ना सती भाई तो अवैया जो हम पीढ़ी है ओकर सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकती है। प्रकृति बचाना मतलब अपन भविष्य बचाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो संगवारी हो ये हम सब मिलके बीड़ा उठाना है प्राकृतिक संरक्षण करना है कम से कम एक पेड़ जरूर लगावा और हमारे प्राकृतिक जो चीज हवे ओकर संरक्षण करो और गोट बात तो भाई भूषण आगे करबो फिर सुनथन ये संदेश ला।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भूषण भाई,
3: हाँ हाँ,
2: अभी ये भाई हमन गोठियात रहे भाई कि प्राकृतिक जन संसाधन के बचाव कैसे करना चाहिए, कौन विशेष करना चाहिए, है नहीं?
3: सही भैया, और गोठियावत तो रहे फिर, और सही माँ आज हमारे जो पर्यावरण ला देखा थोपे थे यहाँ कि पेड़ पौधा जो है ना पहले जैसे नहीं है, सिरावत जाते हैं, पहले से ही रूख राई नहीं है भैया,
2: कम त्याग है ना। सोलाना बात कहे भाई भूषण, आज रूख राई सिरतोन कमती आवत जाता है, और जगह जगह सड़क बना थे, बने बड़े बड़े मकान बना थे, ये सब के सेती कतको बेरा हरियर हरियर पेड़ पौधा मतलब मनखे मन काटा थे, और ओकर भरपाई करे बर एको पेड़ नहीं लगावती, ये गलत बात हो जाती है थोड़ा
3: भैया। ऐसा में तो ना दिनों दिन हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण ले जो है बढ़त जाही, और जीव जंतु मनखे मन ला कतको रोग रही जोन है,
2: रोग राई पकड़ ही
3: हाँ। एक का है हमारे जो पर्यावरण है घलो असंतुलित
2: असंतुलित होते, बिल्कुल असंतुलित हुई है। अब ऐसा होने ले पहली हमला चाहिए भाई भूषण कि हमर पर्यावरण ला रूख राई ले परिपूर्ण करण, और हम सब अपन जिंदगी में कम से कम एक ठन रूख लगाए के हमला माने प्रण करना चाहिए।
3: भैया ये तो बने के है, एक ठन समस्या आतेगा
2: का भाई? कौन समस्या भाई?
3: अधिकतर मनखे मन पेड़ लगाते और कुछ दिन पानी कांजी देते, देख रेख करते, फिर कुछ दिन बाद में देख रेख जैसे छोड़ देते, पेड़ जामते दहन गए तो जाग गए कही के, फिर नान्हे पेड़ पौधा मन के देख रेख करना ज्यादा जरूरी है।
2: जरूरी है, बस सही बात कहे भाई, यही मेरा हमला सोचना है कि सबला समझना है कि केवल पेड़ लगा के छोड़ दे ले पेड़ लगाना नहीं हुए, वृक्षारोपण नहीं हुए, हजारों पेड़ लगा लेकिन कतका कन पेड़ जामत है एला भी ध्यान देना चाहिए, वही असली पेड़ है कि हम अतका कन पेड़ लगान।
3: हाँ।
2: पेड़ लगा के पूरा जिम्मेदारी ले, ओकर देखभाल करन, पानी देवन, और ओला एक बच्चा की तरह जैसे अपन बच्चा की सुरक्षा के करथन वैसने ओकर सुरक्षा करन, अब तभी वो पेड़ लगाना हमारे सार्थक है, तभी वो पर्यावरण संरक्षण कर सकथन और वृक्षारोपण करें ऐसे की हम कही सकथन।
3: बड़ सुघर बात लगे है सतीश भाई, और पर्यावरण संरक्षण बर अभी जोन गोट कहा था ना, तो सबला चेत लगाए बर पर ही हमार ये जोन पेड़ पौधा के जैसे गोट करें, ते यहाँ हमरे कहे ले और सुनेल बात हुए काबर कहा थन सुना थन तो ओला करना जरूरी
2: करना जरूरी है। एक झन के नहीं हुए जी, काबर एक झन करबे तो कुछ नहीं हुए। हमार आस पड़ोस समाज देश ला सबला बीड़ा उठाल पड़ी तब होई, खेत खार के हरियर हरियर पेड़ पौधा मा कभू हम झन काटन, जरूरत पड़त है तो सूखा पेड़ ला काटन, मानत हो की लकड़ी बर छेना बर है ना मने जलाए बर करते तो वो पेड़ ला काटन जेखर आवश्यकता नहीं, सूख गए वहां हरियाली नहीं है तेन ला, और कोशिश करन की खेत खार या पर्यावरण में अपन मन के में लमेरा कई ठन पेड़ जाम जरे थे कई किस्म के, ओकर रक्षा करन बीच बीच में ओला छीन देवन, छीन में का होते पेड़ है और बढ़िया आगू बढ़ते, तो ऐसे करन ताकि हरियाली बढ़े रहा है।
3: अब पेड़ पौधा जतका हमार पर्यावरण में रही ना उतके हम सब ला शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन मिल पाही, और संगी हो हम सब मिल के संकल्प लेवन और पेड़ पौधा लगाए ले धरती के जो श्रृंगार है वह बढ़ते, तो ये श्रृंगार हमार धरती माता ला घलो बनाए,
2: तभी हमन अपन अवैया पीढ़ी ला शुद्ध सुघर शुद्ध हवा दे सकथन और ऑक्सीजन पाए बरोला हमन ये कर, और रोग राई के रोग राय होते या पर्यावरण में जो समस्या होती वो है नहीं हुई। और भूषण भाई गोट बात तो बड़ कनकर डेनगा, फिर अब मनोरंजन बड़ सुन लेथन एक ठन गीत ला, जेला स्वर देवा था भाई पंचराम मिर्जा और कुलवंती मिर्जा मन।

0: संगवारी हो ये सुघर गीत सुनत रहिन पंचराम मिर्झा और साथी मन ले और सतीश भाई अबड़ कन आज गोट बात हमन करें जी पेड़ पौधा लेके है ना और गोठे भर से नहीं हो कथन ये तो हमार तरीका है जिन कहे थे अपन तरीका से बताए नहीं गा वैसे पेड़ पौधा जो संरक्षण है ना उकर वैज्ञानिक घरों तरीका
1: है विधि होते हुआ
0: तो वैसे ढंग ले पादप जो संरक्षण है तो आज की जो सलाह ये क्रम विषय है पौध संरक्षण है ना और ये विशेषज्ञ हमारे तीर जो है ये पी रजनी राव पादप रोग विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले है तो आओ सुनथन आज के क्रम आज के सलाह और गोट बात करे है हमारे सतीश भैया।
1: किसान संगवारी हो पौधा हा हमारे जिंदगी पर बड़ आवश्यक होते और एकर देखभाल घलो बहुत जरूरी होते यही बात ला बताए बर आज हमार स्टूडियो में पधारे है पी रजनी राव तो जानथन मैडम ले पौध संरक्षण का होते मैडम राम राम
2: राम राम सर
1: मैडम पौध संरक्षण का होते तेला विस्तार ले बताते हो।
2: देखिए सर मैं अपने किसान भाइयों को दो प्रकार से पौध संरक्षण के विषय में बताना चाहूँगी। अगर हम सामान्य रूप से बात करें कृषि के परिप्रेक्ष्य में तो कृषि उपज में वृद्धि करने के लिए और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम कीटों और रोगों पर जो नियंत्रण रखते हैं वो पौध संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब इसका महत्व पहले तो पौधों की कीट बीमारी और खरपतवारों से रक्षा हो जाती है और नई नई जातियों का भी विकास होता है और पौध संरक्षण के लिए हम यांत्रिक रासायनिक जैविक और कृषि वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। और अगर हम पौध संरक्षण के विषय में व्यापक रूप से बात करें तो ऐसी गतिविधियां आती है जिनका उद्देश्य होता है पौधों को विलुप्त होने से रोकना। इसके अंतर्गत जंगली किस्मों का संरक्षण करते हैं आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण करते हैं बहाली का कार्य करते हैं अनुसंधान कार्य करते हैं प्रशिक्षण कार्य करते हैं तो ये सभी पौध संरक्षण के अंतर्गत आते हैं।
1: मतलब ये कहान की जो पौधा नदावत है या समाप्त हो या बहुत कम दिखते उला संरक्षित करके रखना ताकि उला
2: और पौधों को होने वाले नुकसान से पहुंचाना।
1: मैडम ये बताते हैं कि वर्तमान समय में पौध संरक्षण हमारे ऊपर काबर जरूरी हो गए।
2: देखिए पूरे मानव अस्तित्व और संतुलित विकास के लिए पौध संरक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कारण क्या है तो सबसे पहले पौधे की प्राकृतिक प्रक्रियाएं ही हमारे ग्रह अर्थात पृथ्वी की रक्षा करती हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पीने के लिए पानी खाने के लिए भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। तो पौधे क्या करते हैं मृदा क्षरण को रोकते हैं मरुस्थलीकरण मतलब रेगिस्तान बंजर होने से रोकते हैं जमीन को और पौधे अनेक उत्पादों के निर्माण के लिए भी हमको कच्चा माल प्राप्त करवाते हैं और आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं स्वस्थ बनाते हैं। कितने ही जीव जंतु हैं जिनका वो आवास है उनके प्रजातियों की रक्षा करते हैं। सजावटी पौधों का बाजार भी विश्व में बहुत बड़ा बाजार है जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है और पेड़ पौधों से ही जीवन है मनुष्य इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगर हम कृषि के परिप्रेक्ष्य में बोलें तो अगर हम पौध संरक्षण ना करें तो एक खरपतवार कृषि उपज की 100% लॉस कर सकता है और वैसे ही जो पेस्ट होते हैं रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं कीट होते हैं वो 20-25% उपज में कमी कर देते हैं। तो पौध संरक्षण बहुत आवश्यक है।
1: अच्छा मैडम जैसे पौध संरक्षण करना है तो एकर पौध संरक्षण करे बर का हम उपाय कर सकते हैं।
2: अगर हम घर खेत बाड़ी के इस विषय में बात करें तो पौधों को जितना हो सकता है ढककर रखें और शोभाकारी पौधों को घर के अंदर रखें उनको सीधी धूप से बचाएं पर्याप्त पानी दें उनमें नमी बनाकर रखें पाले सर्दी है ना भारी बारिश से बचाएं गर्मी में लू से बचाएं उचित स्थान पर रखें। और कृषि के विषय में अगर हम बात करें पौध संरक्षण के विषय में तो फसल चक्र का उपयोग करें है ना जीवाणु उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई जैविक और सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं।

0: गर्मी के मौसम में अगर खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो सारे कीट नष्ट हो जाते हैं, जिससे रोग और कीट फैल नहीं पाते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं, पौधों और बीजों का इन सिटू संरक्षण कर सकते हैं, ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, जिसमें कीट जो होते हैं वो चिपक के मर जाते हैं और रोग नहीं फैला पाते। और वैसे जैविक नियंत्रण के लिए परजीवी और कीटजीवी जो मित्र कीट होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। अति आवश्यक है जैविक और नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग करके हम जैविक विकल्प को भी बढ़ावा दे सकते हैं।
1: मतलब ये कहान जो जो पौधा ला एक मापदंड चाहिए बढ़वार हो बार ओला हमला पालन करना चाहिए। मैडम ये बताते कि पौध संरक्षण करे ले हमला एकर का लाभ मिल सकत है।
0: देखिए पौधे जो होते हैं वो जीवन का आधार है और कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के आय का भी एक बहुत बड़ा स्रोत उनका कृषि उपज ही है, तो और इससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है और पौधे पूरे मानव अस्तित्व को बनाए रखते हैं, इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए पौध संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जैसे हम पौध संरक्षण करते हैं तो माटी में एकर का सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इहूल हमारे किसान संगवारी मतलब बताते हो।
0: पेड़ पौधे जैसा कि आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिससे मृदा कटाव में कमी आती है और ये जड़ें अतिरिक्त पानी को भी सोख लेती हैं और मिट्टी भुरभुरी होने के कारण जो जल अवशोषण बढ़ता है जिसके कारण मृदा जल स्तर भी बढ़ता है ना, और जैसे कि जो मरुस्थलीकरण भी रुकता है और ये जो पेड़ पौधे होते हैं समुद्र तट के कटाव को भी रोकते हैं और बाढ़ से बचाने के लिए भी हमारे सहायता करते हैं, तो मिट्टी का बहुत बड़ा इसमें भूमिका है।
1: माटी घलोक बंधारी थे ओकर से हवा भी मिलते, मतलब एक पंथ दो काज एक काम करबो सबो काम हो गया इस ढंग से। मैडम आगू मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ आप मतलब कि पौध संरक्षण करे बर सामान्य नागरिक के का जिम्मेदारी होना चाहिए।
0: हमें सर्वप्रथम सर जंगलों को बचाना होगा क्योंकि अभी जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं और जिससे दुर्लभ प्रजातियां जो हो रही हैं वो भी नष्ट होती जा रही हैं, इसलिए पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, जैसे कि इस गर्मी में सभी ने अनुभव किया होगा जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, तो वो सब देख ही रहे हैं, तो इसलिए जितना हो सकता है अपने आसपास पेड़ लगाइए और अभी वर्षा ऋतु भी आने वाली है तो ये सबसे अच्छा मौसम होता है, ये पौध संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है और उनकी देखभाल करिए।
1: अच्छा मैडम आखिरी प्रश्न हमार किसान संगवारी मल बताते हो कि ज्यादा घाम ले हमन पौधा ला कैसे बचा सकते हैं, एकर सरल उपाय बताते हो।
0: सर जैसे मैंने पहले भी बताया तो उसमें कुछ कॉमन ये है कि सबसे पहले उन्हें सीधी तेज धूप में ना रखें, उन्हें गीले पेपर या फिर कपड़े कार्टन आदि से ढक के रखें, और आजकल तो ग्रीन नेट भी आने लगा है जिससे लोग पौधे ढक कर रखते हैं और इन्हें लगातार पानी देते रहे जिससे नमी बनी रहेगी। आप धूप से पौधों को बचाने के लिए उनपे व्हाइट क्ले और एक टेल्क फॉर्मुलेशन आता है जिसको हम पत्तियों या तनों पर छिड़क सकते हैं, इससे तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना कहते हैं या फिर क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन भी आप उपयोग में ला सकते हैं, और जो एक कार्नोबा वैक्स होता है वो कुदरती पौधों के लिए सनस्क्रीन का काम करता है, तो ये सारे उपाय से हम।
1: मैडम जैसे ये बतावा था जिन चीज से हमला ढक के रखना चाहिए उपाय करना चाहिए, का ये सामान्य बाजार में दुकान मन में उपलब्ध हो जी किसान
0: सर, आसानी से उपलब्ध है, किसान भाई इसको आसानी से किसी भी कृषि आधारित या फिर ऐसे सामान्य दुकानों से भी खरीद सकते हैं।
1: तो मैडम आज आप मन हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान संगवारी मल्ला पौध संरक्षण के बारे में सुघर जानकारी देव, एकर खातिर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: संगवारी हो सुनत रहिन अभी क्रम आज के सलाह और विषय रही से पौध संरक्षण, विशेषज्ञ रही से पी रजनी राव पादप रोग विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले, अब एक संग गोट करत रही से सतीश भैया हा, तो सतीश भैया ये सूचना पढ़ देते।
1: तो संगवारी हो अवैया मंगलवार 19 मई 2026 के प्रसारित होइया हलो किसानवाणी कार्यक्रम के विषय हो ही धान में स्त्री विधि अपनाए उत्पादन बढ़ाए, आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होई मनीष कुमार वर्मा विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग, आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमन ला फोन कर सकता हो, हमर फोन नंबर हवे 400-3482 400-3483 और 400-3484 रायपुर के एसटीडी कोड हवे 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही, ए कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के उही दिन संझा 7:30 में करे जाही। संगवारी हो हमला आप मन के फोन कॉल की इंतजार रही और सूचना यही मिर्सी रावत है।

0: सतीश भाई, अब बेरा हो गई आज के प्रश्न के, तो संगी मतलब बता दे थन आज के प्रश्न ला। संगवारी हो, आज के हमारे जो प्रश्न है तेला लिख ले। व्हाइट क्ले और टैग फार्मुलेशन का होते, प्रश्न है घाऊ बता देता हूँ। व्हाइट क्ले और टैग फार्मुलेशन का होते, एकर जवाब आप मन हमार तीर पाती के माध्यम ले और ईमेल घलो भेज सकता हूँ। अब बता देता हूँ मैं पाछू हफ्ता के जो प्रश्न रही थे ला। पाछू हफ्ता मन प्रश्न पूछे रहे नील हरित काई कह रहे, अब एक सही उत्तर आए प्रकृति उत्पन्न खाद आए। और सतीश भाई जो सही जवाब लिखे हमार संगवारी तेकर मन के नाम बता दे।
1: हमार संगवारी मन सुगर सुगर ईमेल भेजे, देखो जैसे मदन पुर कमरधले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू आर्यनगर कोहका भिलाईले उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुषी जंघेल और नंदी जंघेल मन बठेना पाटन जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा ज्योति वर्मा अंजलि वर्मा नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा लोरमी चचड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी ग्राम बंगला मटिया बालोद ले श्री कुमार अंगारे अंजलि त्रम्बिका लीना अंगारे देवरी भाटापारा ले गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री गर्रा पार बांधा बाजार जिला राजनांदगांव ले गंगाराम साहू सुलोचना साहू मानवेंद्र साहू राकेश साहू तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेंद कुमार निषाद देविका पोषण महेश्वरी नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर और किशन निषाद। संगवारी हो अतिक सुघर आप मन ईमेल हमर तीर पठो है तेकर सेती आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसने आगू गलोग वार्ता सुनू और ईमेल ला पठवत रही हो।
0: अब सतीश भाई अब बेरा हो गया एक ठन गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो आओ संगवारी हो सुनथन सिघर गीत ला जिनला स्वर देहे तीरेंद्र यदू और साथी मन।

0: हाँ संगवारी हो, वार्ता सुने, गोट बात करें और गीत संगीत गलोक सुने, अब और शिक्षा हो मनोरंजन सब होंगे। अब होगे कार्यक्रम ले विदा लेके बेरा, तब तो बता देवन काली के कार्यक्रम। काली आज की बात मैं सुनूँ, वनोपज के गुणवत्ता पूर्वक संग्रह है ज़्यादा आमदनी के आधार, और संगमा सुनूँ गीत संगीत तो देवा विदा। जम्मो संगवारी मल्ला सतीश कुमार यदू
1: और भूषण निषाद के
0: राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत सोनू निगम की आवाज में, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और फिल्म है कल हो ना हो।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8

लीजिए अब सुनिए फिल्म कभी अलविदा ना कहना में सोनू निगम और अलका याग्निक को गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अंबर कुमार देव। आइए सुनते हैं अंबर कुमार देव के स्वर में ये संगीत।

सुगम संगीत में अभी आप अंबर कुमार देव को सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए क्लेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ। अब आपसे रोज मुलाकात होगी इसी समय पर, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो खेल की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। भारत की सीनियर पुरुष टीम ने CASA रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। महिला टीम चौथे स्थान पर रही। हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। सलीम टेटे को सौंपी टीम की कमान। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 प्रतियोगिता कल से शुरू।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है इस समय हैदराबाद की टीम और वो चाहेगी कि और करीब पहुंचा जाए पहले और दूसरे स्थान के, जबकि चेन्नई की नज़र है कि पांचवें से छलांग लगाई जाए और चौथे स्थान पे अपना कब्जा बनाया जाए। इससे पहले लीग में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया, जबकि दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया।
1: आईपीएल के 62वें मुकाबले में कल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53, कप्तान रियान पराग ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क को 4, वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 सफलताएं हाथ लगी। जवाब में दिल्ली की टीम की शुरुआत शानदार रही। पहले विकेट के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने 105 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 51, वहीं केएल राहुल ने 56 रनों का योगदान दिया। अंत में कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने 5 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं कल खेले गए एक और मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और पंजाब के लिए ये लगातार 6वीं हार है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स के।
0: पंजाब की 6ठी हार और रोज़ बढ़ता उसकी जीत का इंतज़ार। प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ आईपीएल का सबसे रोमांचक हिस्सा होती है, अगर कहा जाए तो 11वें खिलाड़ी की तरह काम करती है। प्लेऑफ पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय विशेष मौजूद हैं हमारे सहयोगी। विशेष, प्लेऑफ जो है आईपीएल को रोमांचक बनाने में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। इस 4 सीटर गाड़ी की पहली सीट पर कल आरसीबी बैठ गई है। कौन से 3 यात्री हैं जो सबसे आसानी से इस गाड़ी में पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी आपको?
2: शक्ति, जैसा आपने बताया कि आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, गुजरात टाइटंस अभी दूसरे स्थान पर मौजूद है और वो 16 अंकों को प्राप्त कर चुकी है। अगर वो एक जीत सुनिश्चित करते हैं तो उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए मुकाबले जीतकर, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को भी एक एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो हमें इस आईपीएल में देखने को मिल सकता है कि टीमें 14 या 15 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगी। इस स्थिति में पंजाब के लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है जो वो अंतिम मुकाबला खेलने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल, तो अंतिम मुकाबलों तक ये लाइन चलेगी और शायद आखिरी दिन जाके कहीं तय हो पाए कि हमारे 4 प्लेऑफ के खिलाड़ी कौन होंगे। और अब आईपीएल से चलते हैं टेनिस के कोर्ट की तरफ, जहां पे कुछ और इतिहास बनते और बिगड़ते नजर आए। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे 1976 में एंड्रियानो पनाटा के बाद इस खिताब को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए।
3: सिनर ने फाइनल मुकाबले में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार 6ठा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता। इस सत्र में सिनर ने पेरिस मास्टर्स, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत कर इतिहास रचा है। 1 घंटे 44 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके नोवाक जोकोविच के बाद सिनर एटीपी इतिहास में करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने अब सभी एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतने के बाद ये कामयाबी हासिल की थी। मैदान में दर्शकों की भारी समर्थन के बीच सिनर ने धीमी शुरुआत से वापसी करते हुए अपना 10वां मास्टर्स 1000 खिताब और रोम में पहला टाइटल जीता। शुरुआत में कैस्पर रूड ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन लगातार सटीक शॉट्स लगाकर सिनर ने फाइनल मैच का रुख पलटा और ये यादगार जीत हासिल की। इससे पहले एलेना स्वितोलिना ने महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता था। एलिना ने फाइनल मुकाबले में कोको गफ को 6-4, 6-7 और 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जब भी कभी हम टेनिस खिलाड़ियों का जिक्र करते थे तो रोजर फेडर और राफेल नडाल की वो बैटल्स याद आती थी, और आज ये युवा खिलाड़ी इटली से निकल करके उसी तहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। और अब टेनिस के बाद इसी गेंद को ले चलते हैं रग्बी के मैदान की तरफ, जहां उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित CASA रग्बी सेवन्स में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने लगातार अपने शुरुआत के चारों मैच जीते, जहाँ भारत ने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। हालांकि फाइनल मुकाबले में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सीनियर महिला टीम ने पहले दिन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया था। इसके बाद किर्गिस्तान और मंगोलिया के खिलाफ शानदार जीत के साथ इस टीम ने वापसी की और चौथे स्थान के साथ इस प्रतियोगिता से लौट रही है भारतीय महिला रग्बी टीम। और महिलाओं की बात चली है तो अब बात करते हैं महिला हॉकी की, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली श्रृंखला में चार मुकाबले होंगे, जो कि 26 मई से खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 26 मई, दूसरा 27 को होना है, तीसरा मैच 29 मई को, जबकि अंतिम मुकाबला 30 मई को खेला जाना है। और इस सीरीज़ के सभी मुकाबले जो हैं वो पर्थ हॉकी स्टेडियम में होने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अगर देखा जाए सलीम टेटे को टीम का कप्तान बनाया गया है, यहाँ पे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ से महिला टीम की जो सबसे अधिक नज़र होगी वो एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर होगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन कल से शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं भारत को इस प्रतियोगिता में अपने किन किन बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस शानदार सुपर 500 टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
3: पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत और फ्रांस के बीच एक नई जंग का इंतजार है, और भारतीय शटलर्स अपनी हालिया थॉमस कप सेमीफाइनल हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से हारने के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत तीनों सिंगल्स मैच हार गया था। भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य इंडोनेशिया के मोह जकी उबैदिल्ला के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तरुण मन्नेपल्ली फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज सातवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स लानियार का सामना करेंगे और HS प्रणॉय का मुकाबला क्रिस्टो पोपोव से होगा। S शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना होगा। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा कारुनन और एम

0: आर अर्जुन का साथी वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव से सामना होगा। भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ियों में तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड की पिचामोन ओपटनिपुत से होगा। उन्नति हुड्डा का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। मालविका बंसोड़ जर्मनी की यवोन ली से भिड़ेंगी और अनमोल खरब का मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजार्क कर्जसफेल्ड से होगा। रक्षिता श्री संतोष राम और ईशारानी बरुआ भी चुनौती पेश करेंगी। देविका सिहाग क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। वहीं महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा रुता पर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा की जोड़ी भारत की ओर से चुनौती रखेगी, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे भारतीय दल का हिस्सा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि उबर कप के ब्रॉन्ज मेडल की चमक और धारदार करने के लिए और शानदार और चमकदार करने का एक मौका भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए इंतज़ार कर रहा है, और थोड़ी सी कसक जो गोल्ड ना आ पाने की थाईलैंड ओपन में थी वो भी शायद यहां पर कुआलालंपुर में मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं भारतीय युवा मुक्केबाजों के प्रदर्शन की, जो उन्होंने ताशकंद में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी की चमक बॉक्सिंग रिंग से निकलकर विश्व पटल पर चमकती हुई नजर आई। भारत ने कुल 44 पदक जीते इस दौरान, और इन्हीं पदकों में से एक स्वर्ण पदक विजेता हंसिका हैं। हंसिका इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और जो हमें बताएंगी कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। हंसिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की तरफ से, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का देश का मान बढ़ाया। हंसिका, देश के बाहर जाना और इतना शानदार प्रदर्शन करना, आप सभी श्रोताओं को बताइए कि ये पूरी प्रतियोगिता का अनुभव आपके लिए किस तरह का रहा?
2: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एंड मैंने पहली बार खेला तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दूसरी कंट्री में जाना, एरोप्लेन में बैठना, और ये टोटली एकदम नया एक्सपीरियंस है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हंसिका, बहुत लोगों को आपसे उम्मीद थी घर परिवार से लेकर के आपकी एकेडमी तक, तो स्वाभाविक है बहुत दबाव रहा होगा, तो आपने आखिर इस दबाव को किस प्रकार हैंडल किया है पूरी प्रतियोगिता में?
2: मेरे जो कोचेस थे वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे इस चीज के लिए कि मतलब कि डायलॉग था एक कि अब तुम फौजी की बेटी हारना, मतलब मेरे पापा ऐसी आर्मी में है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को देते रहते थे इस वजह से।
1: जी बिल्कुल, आपके लिए
2: डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ मैं मैच में, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई थी जो कि रिंग में उतरने के बाद मेरी खत्म हो गई थी बेसिकली।
1: जी बिल्कुल, आपके रिंग में उतरने के बाद आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों में वो नर्वसनेस नजर आई हमें। अब ये भी बताइए कि इस उपलब्धि के बाद अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है हंसिका?
2: अब मुझे आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जूनियर में मेरे को कोशिश करनी है कि मैं उसमें भी नेशनल में गोल्ड लाऊं, एशियन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड लेके आऊं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। हंसिका के पिता प्रमोद अत्री भी हमसे जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, हंसिका ने हमें बताया कि वो फौजी की बेटी हैं और हर तरह का दबाव जो है वो झेल सकती हैं।

0: है सर, इतना प्राउड फील हो रहा है कि पूछो मत। है नहीं सर, हमें ये उम्मीद है कि सर ये आगे ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे और आगे चल के ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेके आए सर।
1: जी बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद है और हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि ये खिलाड़ी भविष्य में ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करे और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आए बॉक्सिंग में। और हंसिका के कोच से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया, जितेंद्र टोकस ने, कि किस तरह से ये खिलाड़ी जो है अपने आयु वर्ग से बड़े खिलाड़ियों के साथ लड़ती रही हैं, जीतती रही है, तो देश को एक मजबूत खिलाड़ी मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
2: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
3: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
2: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यू

0: यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ
2: द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग

0: आयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र

0: सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway Space Agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V.

0: talks this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
2: कुछ यादें अतीत की।
3: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
2: कुछ बातें वर्तमान की।
4: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
2: कुछ सपने भविष्य के।
5: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
2: कुछ किस्से अनकहे।
6: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
2: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11:00 मन की बात।
1: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीत जतिन ललित का और फिल्म है चलते चलते।

दुल्हन हम ले जाएंगे। लीजिए सुनिए इस फिल्म में अलका याग्निक और सोनू निगम को सुधाकर शर्मा का लिखा गीत और संगीत हिमेश रेशमिया का।

चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म हम तुम में, गीत के बोल प्रशून जोशी के और संगीत जतिन ललित का।

0: संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और गणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़ी जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112341444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: हाँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, अब मैं अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में

0: हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने तीन सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
2: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
2: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी।
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
2: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रुशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
2: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
2: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
4: जी नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
4: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
2: नमस्ते। प्रणाम।
4: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
2: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
5: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
5: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
2: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर QR कोड होगा, QR कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
2: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन

0: कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं
1: जी। अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं, एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा अभी ज्वालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पर डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अभी कॉल इसने हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे कि अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं, रहते हैं, तो

0: को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता, लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है
1: जी। तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-04-81 और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है
1: जी। अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए, और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए
1: जी। बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। विकास जी,
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा, जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाल, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी, और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कौन लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी।
4: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
4: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गाँव में स्कूल बनाने हैं या किस गाँव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.8 एक मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। सुरों का सफर आज आप तय करेंगे आपकी रेडियो दोस्त योग्यता के साथ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म छाया में। आवाजें लता मंगेशकर और तलत महमूद की, गीत के बोल राजेंद्र कृष्णन के और संगीत सलील चौधरी का। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, ग्राम भिलौरी बावनलाग बेमेतरा से रोहिणी डागेश्वर साहू, खुलाशा देवी साहू, देवव्रत राघवेंद्र राज साहू, हेमनत कुमार साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, कविता सृष्टि साहू, रिंग छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बाजार पारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, कोटा रायपुर से योग्यता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा, यहीं से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे, पावर हाउस भलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा और ग्रंथ वर्मा, जनवानी दुर्ग से सूरत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, कुमारी सुनीता ऋषवंत साहू, हिरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास संजीव त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू, खट्टी महासमुंद से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदिनी शर्मा और ओमकार शर्मा, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, अहिवारा दुर्ग से डबल कुमार डब्बू धीवर, जतिन हेमन राज बाबू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत और राजू धीवर, लक्ष्य धीवर, आचल माही, नानू पार्थ, भावना अनमोल और राजा धीवर, अछोटा धमतरी से बिसत राम देवांगन, मानकी बाई, गणेश राम, रोहित राम, राजेश कुमार, गीतेश और सेजल धवल, लवन काव्या और तेजस्वी देवांगन। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर फिल्म छाया का ये गीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म असली नकली से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत और संगीत शंकर जयकिशन का। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं, मेरी तरह से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार साहू, लक्की सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी और कमलकांत सारथी, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही पूजा, छुटकी शरद कुमार माखीजा, सिमगा से मोनिका जैन, बीना जैन और आदिश जैन, बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, नर्मदा धाम सुरसुरी से कैलाश यादव, सुरेश यादव, दिकेंद्र यादव और योगेश यादव, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, रुआ बांदा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, शुभम जैन और शौर्य जैन, पट पर डोंगरगढ़ से रामगोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, भाटापारा से श्याम रतन मुंद्रा, रजनीकांत मुंद्रा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, बठेना पाटन से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी और ज्योति वर्मा, भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, चोवाराम वर्मा और दुलारी वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर फिल्म असली नकली का गीत।

लीजिए सुनिए अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। सिमगा से भारती सेन, सुनंदा सेन, सुष्मिता सेन, विनीता सेन और पिंकी सेन। जय मां कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरी गातापार से लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव और अमीन कुमार यादव। यहीं से अमृता यादव, लक्ष्मी यादव, पार्वती यादव और ईश्वरी यादव। चुड़ीलाइन भाटापारा से अब्दुल मजिद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद। शिव चौक साकरा भूमिया से मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी निषाद, खुशांत निषाद। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। बाजार पारा बेमेतरा से सनत कुमार यादव, राजू दिलीप यादव, परातु यादव और आदित्य यादव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और लवि श्रीवास्तव। हरदेवलाल पारा वार्ड समगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन और आशीष देवांगन। रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म अनाड़ी का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत और संगीत शंकर जय किशन का।

आइए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं पलारी रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम साहू, अलका जाह्नवी, नूतन साहू, वर्धमान रेडियो श्रोता परिवार सिमगा से सभी श्रोता साथी, गंडे टिकरोपारा से जागेश्वर देवांगन, श्रीमती कचिर देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जय श्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन, ग्राम मुलमुला बेमेतरा से सिकन राम साहू, अमृकाबाई लेखनी, रोशनी चहक साहू, यहीं से नेत्राम साहू, मनी राम, लक्ष्मी साहू, बिंदु, डिम्पल, रमेश्वर साहू, मलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, महामाया पारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, दरचुरा से ही ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, पाहरा हिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मनी रावत, नीरज रावत और शुभम सौरभ रावत। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म तीन देवियां में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत एस डी बर्मन का।

सुरों का सफर अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म जंगली में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को हसरत जयपुरी का लिखा गीत और संगीत शंकर जयकिशन का, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं अमली बदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी और ममता तिवारी, पेंशन बाड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश यादव, शीला यादव, कनक गुनगुन यादव, बेबी अदिति और तन्मय यादव, भाटापारा से बजकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगो, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, करीबदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा गिन्नी लल्ली भाविका और झावेंद्र विश्वकर्मा, खैरागढ़ से रविन्द्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा, हटरी चौक बिलाईगढ़ से रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन, रेणु देवांगन और जुड़वा चौक सरंगपाल से रामचंद्र देवांगन, शीतल, सुनैना, पिंकी, यश, युवराज सिंह, गीता देवांगन, बंगला मटिया जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष

अंगारे। सिरमुंडा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई दामले और राजेंद्र कुमार दामले। महादेव घाट से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश और तारिणी ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। अमलेश्वर से सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, रियांश ठाकुर। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर अशरफ खान, अल्फैज खान, सादिया खान, अयाज खान। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू ऋतु सिंह और ऋषभ सिंह। सहारनपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असलम अंसारी। बक्सर बिहार से ही शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और आसमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। नलेश्वर नगर नखेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशेल नहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले। सहसपुर लोरमी से मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद, बड़कू साहू और दुर्गेश कुमार। दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म जंगली में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत में लीजिए आज सुनिए पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया ताल थमार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित पृथ्वीराज कुमार का पखावज पर बजाया ताल धमार सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ग्यारह बजकर 10 मिनट हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।